करे कम आनस करास जे एक अर चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक।

सांवला ना मार नैना दे तीर। अख्तर अली मतोई हुण तुसी अख्तर अली मतोई दी आवाज गुलाम फरीद दा एक कलाम सुनिया। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जना दाना जगते कोई ओह भी पुत्तर पलदे देखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नी गलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जना ने कदर ना कीती रब दी, बोलिया हथ खाली ओ मलदे देखे, हथ खाली ओ मलदे देखे। ते आओ हुण सुनदे आं सरबजीत दी आवाज विच शाह हुसैन दा कलाम। दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन ला लिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी

हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलो हर्ट्ज़ तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फील्ड ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कवरराम साहिब में जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तफ़सील ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ अॼु जे महिमान कोविंद भारती ऐं वीनर सिंह जी आवाज़ ॿुधंदा। आख़िर में ख़ासि ख़बरूं नाशिर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त असां भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

0: پیشهه تبصرو
1: Ich möchte Richard Murarji und die Said National Institute of Yoga Halhi me Chhatarpur Madhya Pradesh je Khajuraho me saal 2026 Western Group of Temples me Yoga Mahotsav Antarashtriya Yog Divas je countdown jo aayojan kayo Ayush Mantralay je Kendriya Mantri Sehat aur Parivar Kalyan Mantri Shri Pratap Rao Yadav खजुराहो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दींदे कहने चाहिए था कार्यक्रम में खजुराहो लोकसभा इलाके में पार्लियामेंट मेंबर श्री विष्णु दत्त शर्मा ए राजनगर विधानसभा इलाके में विधायक श्री अरविंद पटेरिया पर भाषण दरमियान मौजूद हुआ मीडिया से बयान दींदे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव यादव चयत योगा महोत्सव 2026 इन बारे अंतर्राष्ट्रीय योगा डी जो सजे मुल्क में तैयारियों थियण सबब एक अहम पड़ाव हासिल थिए थो जेको मुल्क में योग जी पहुंच के वधारे लाए सरकार जे वादे के जाहिर करे थो हुन बुधायो त आयुष मंत्रालय 100 हंधन ते 100 संस्थान जे सहकार सां 100 डीएन जे सॼे मुल्क में काउंटडाउन मुहिम हलाई रही आहे त जीअं 2026 जे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खां अग वधीक जागरूकता अचे सघे ऐं सभिनी जी भागीदारी ऐं वधीक आम माण्हुनि खे शामिल थियण लाइ हिमथायो वञे मंत्री अॻियां चयो त योग जेको भारत ऐं सांस्कृतिक ऐं आध्यात्मिक वरिसे जो हिकु लाज़मी हिसो आहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शुरूआती 2014 खां पोइ संयुक्त राष्ट्र पारां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खे अपनाइण खां पोइ इहो समूरी सिहत ऐं तंदुरुस्ती लाइ इहो हिकु विश्व आंदोलन में बदिलजी चुको आहे हुन अॻियां चयो त योगा 365 डीएन जे शुरूआती तहत आयुष ऐं हैबिट मंत्रालय जे सहकार सां 21 जून ताईं 100 डीएन जी मुफ़्त योगा सेखारण जो अभियान हलाई रहियो आहे जंहिं में 2,00,000 खां वधीक भाग वठंदड़नि अॻु में ई योगा मित्र तौर रजिस्टर कयो आहे हिन कार्यक्रम जी अहमियत ते जोर ॾींदे श्री प्रताप राव यादव चयो योगा भारत जे प्राचीन ज्ञान परंपरा जो हिकु अनमोल तोहफ़ो आहे जंहिं दुनिया खे हिकु संतुलित समूरी सिहतमंद जीवन शैली जो रस्तो ॾेखारियो आहे बदिलजंदड़ जीवन शैली सां राकपियल चैलेंजन जे वक़्त में योगा हिकु असरदार साइंसी तौर ते बुनियादन हल कढण लाइ उभरी रहियो आहे खजुराहो भारत जे समृद्ध सांस्कृतिक वरिसे जी हिकु जिंदा मिसाल तौर बीठो आहे ऐं अहिड़ी तारीख़ी जॻह ते योगा फेस्टिवल जो आयोजन भारतीय रवायत ऐं जदीद तंदुरुस्ती जे विच में तालमेल खे ख़ूबसूरती सां ज़ाहिर करे थो हुन भरोसो ॾियारियो त फेस्टिवल योगा जे पूरे विश्व में स्वीकृति खे वधीक वधाइण ऐं माण्हुनि जे विच में उन जी पहुच खे वधारो ॾियण में अहम किरदार अदा करे थो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस खां पहिरीं हर साल हिकु जागरूकता वधाइण लाइ ऐं मुल्क में योगा जे प्रदर्शनी अभियान लाइ ऐं बरादरी ते बदल कार्यक्रम ज़रिए आम जनता खे शामिल थियण लाइ हिमथायो वञे प्रोग्राम सुबुह जो 6 वॻे शुरू थियो ऐं मुल्क जी मुख़्तलिफ़ हिसनि मां योगा एक्सपर्ट शागिर्दनि आफ़िसरनि ऐं सिहत जे शौक़ीननि जे वध में वधि हिसो वरितो जिन गॾियल तौर ते आम योगा प्रोटोकॉल खे अंजाम ॾिनो हिन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव यादव मध्य प्रदेश सरकार में आयुष खाते जे राज्य मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार शामिल हुआ जॉइंट सेक्रेटरी आयुष मंत्रालय मोनालिसा दास डॉक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ समागंधी मंत्रालय जा आला अलमदार योगा एक्सपर्ट आयुष सिस्टम ऐं जदीद दवाउनि जा नुमाइंदा ऐं मुल्क जी मुख़्तलिफ़ हिसनि मां योगा एक्सपर्ट पिणु प्रोग्राम में हिसो वरितो प्रोग्राम जे दरमियान हिसो वठंदड़नि में आयुष आहार विरिहायो वियो पंहिंजे शानदार वास्तु कला ऐं शांत माहौल लाइ दुनिया में मशहूर 2026 खजुराहो योगा महोत्सव लाइ हिकु बहितरीन स्थान साबित थियो हिन कार्यक्रम भारत जे क़दीम परंपराउनि में संपूर्ण कल्याण सां गॾु तालमेल खे उजागर कयो त जीअं 2026 जे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जी रफ़्तार खे वधीक वधाए सघिजे

आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ से। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्रीडिश ते सुनी सघंदा आहियो।

0: ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे हीर अचो तासा मीरा सिंह जी द्वारा वर्तल गोवर्धन भारती जो इंटरव्यू बुधू
1: अज असे स्टूडियो में नींढ डी है मानवल सगर गोवर्धन भारती जी के सब का पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो के सिंधी सर्विस पारा पेंदे पारा बेशुमार हिंद ए सिंधी के सामने तरफा अवे मुबारकबाद पेश करा थी अवे साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजो वो है जो असाजे बायस फख्र जड़ी गाल यो भी बुधाया पैं बुधन के इनाम अवे तवाजे शेर के मजमू शीशे जा घर किताब से अदा कर वरी भी मां चंद लफ्ज में पैंजे बुधन के बुधाइंदस जनाब गोवर्धन भारती जन जी संगीत में पैंजे कलाम जरिए ताब डो है झूना कलाम भी संगीत रूप जी शाह लतीफ जो सुरमियों आन उनके मुख्तलिफ ये संगीत रूपक असाखे या सिंधी जाति के आवाज जरिए तारी देन है वह सचप चित्र का कीमती असा ला सरमायो है हेल तीन घड़ा मजमू अची चुका छो जो अस जान चाहिंदी अवे
2: माता कुल बवी मजमू शायद थी चुका में कविता या शेर जहा मजमू
1: सतन
2: सतन मजमू में नयू कविताओं भी गजल भी गीत बहन वायु बहन भजन बहन नाला बहन ये कहीं चाहिए तो पोट्री जहा अनेक फॉर्म जिनते नवाज नहीं कई है
1: जैसे अवार्ड वो ऐलान थो नवाजो वो उनो रदे अमल कड़ो हो
2: मेरा हकीकत यह है हर कें गाल उम्र थी
1: जी
2: ये इनाम जदी मुख्य मिलो तो समझद इनाम में तस्लीमी तो बराबर
1: है
2: मान्यता चूं था
1: जी
2: रिकग्निशन चूं तो रायो यो है इनाम से असा शौर में को वाधारो को थे इनाम लड़ने का एक अग मुझे शौर जै हद ते हो
1: उन
2: इनाम लड़ने का शौर तो उतर ही रहे हो हि तकड़ी जैमल पढ़ाई थे थी तो ओडी मल या पक्की गाल है तो असा के मान्यता मिले थी असा के तथ्य में मिले थी उन खुद मुल है इनाम जो साल अग मिले हाँ तो शायद सिंधी समाज ए सिंधी साहित्य लाइ उत्साह अचा अदा करो कुछ कर सकता हाँ अग मुझी उम्र सठ का वधिक थी हुई है कुदरत मां ओतरो न कर सकंदस को मुख्य उत्साह है जो थे को साल अग में
1: जनाब गोवर्धन भारती किताब जैसे अवार्ड से नवाजो वो है उनके बारे में जानना चाहिंदस उनमें जो है सो कड़े तरीके जहा शेर या तहड़ा पसंद उनमा
2: बिना मुझी जी जिंदगी है सो ये चंदस रचना मुझी जो तखलीक है वह सतपत कुदरत का वी शुरू थी है कुदरत अनोखी है अद्भुत है जहा कायनात असीम है जी का हद का लाहद है उन आम इंसान जिंदगी तीन अची पहतो ये जहा रचना है मुझी मुझी जहा तखलीक है शिष्या घर इन मजमू में अजे के अजोके दौर के तहादन तलक्षण सियासी समाजी धर्मी अखलाकी मुहन की गिरावट इंसान की परेशानियत रिश्त की गिरगिलाई सहनशीलता करुणा के कमी में जो बेसलामती बेहसी असि महसूस क्यों था ये सब गाल नए युग जो नए दौर जो किताब पे अची वन थे कर ये चाह थोड़े में सिगरेट जो बेमाना सूटो जीवन खाली खाली जाम आज नशे के गोरियन सबा बेफिक्रन की निंड हराम रक्त थी विया सब रिश्ता नाता रक्त थी विया सब रिश्ता नाता मोतिन जेड़ा मुल थिया मात मोतिन जेड़ा मुल थिया मात याद आई गालियन गालियन में काफी जेड़ी कारी रात पैसे जी गुंदे चाने चपन ते मुल में का बेगानी बात
1: कोई सवाल जनाब गोर्धन भाटी से फिल्मी संगीत में के गीत से तमाम ही सुना लिखा बरअस वरी कुछ अड़ा हल्का फुल्का गीत लिखा उन वक्त मन जो शायर के इजाजत दी है कलम खान ला अड़न गीत लिखण
2: ला मुझी जिंदगी शुरू थी लिबरी बीमारी जे करे रंगमंच जूं जेके सरगर्मियूं हुयूं ॻाइण नचण अदाकारी करण मूंखे मना कई वई कतई मना कई वई त मां लोकनि लाइ आराम कयां ऐं इहे सरगर्मियूं बिल्कुलु छॾे ॾियां मुंहिंजे अंदर में जो कलाकार हो सो निहायत ताक़त वारो सदारो हो सबल हो बरजुस्त हो हुनखे को माध्यम खपंदो हो को मीडियम खपंदो हो जंहिंजे ज़रिए हू पाण खे ज़ाहिर करे इज़हारे इहे करे मूं सम्झो त बिस्तर ते लेटे लेटे कविता ई जेका आहे सा अहिड़ो माध्यम आहे जंहिंजे ज़रिए मां पंहिंजो पाण खे विहारे सघां थो त कविता त हिकड़ी अहिड़ी कला आहे जंहिंमें कलम ऐं कागज़ जी ज़रूरत कान पवंदी आहे के बि वीचार अचनि उन्हनि खे शब्दनि में ऐं अर्थ जे लय सां काफ़े तारीफ़ में या वज़न में या बिना वज़न जे जेकॾहिं असीं पंहिंजनि ख़्यालनि खे पंहिंजनि वीचारनि खे पंहिंजे फिक्र खे हुन फन में पूरी तरह ॿधी सघूं था त उहो कविता जो रूप वठे थो उहो शहर जो रूप वठे थो हिकु नैसल कविता आहे शहर जंहिंखे मां पंहिंजनि उमंगनि ऐं उदमनि जो छो भरियो इनहार सम्झां थो का चीज आहे जंहिंमें असीं बिल्कुलु खोइजी था वञूं असांजे का बि सुख सां कोन थो रहे पंहिंजो पाण का चीज पैदा थिए उहा तुंहिंजे लाइ कला आहे आर्ट आहे फन आहे जेसिताईं फिल्मनि जा गीत या रेडियो ऐं टीवी या रंगमंच लाइ रूप लिखणा आहिनि मां हुननि खे आर्ट न पर क्राफ्ट सम्झंदो आहियां जेका सिचुएशन आहे जेको पात्र आहे जेको किरदार आहे उन सां मां पाण खे आइडेंटिफाई करे छॾियां मां हुन सां हिकु थी वञा ऐं हुनखे परखे पोइ मुंहिंजो माउ खे गीत लिखां ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ में हिकिड़ो तज़ाद बि थई कॾहिं कॾहिं छा थियो आहे त जॾहिं मां तमामु गंभीर मूड में हूंदो आहियां सीरियस मूड में ईंदो आहियां त हिन सिपर स्वादु बदिलाइणु चाहींदा आहियूं तीअं मूंखे लॻंदो आहे त मां को माउ खे गीत लिखां पोइ को न को मूं हॾियो ईंदो आहियां पंहिंजे भेण खे ॾिठो पंहिंजे भाउ खे ॾिठो चयो पेकी हली वेंदीसीं मोटी मोर लहींदीसीं ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे ॿुधो ईंदो आहे हिननि मां साॻियो त जॾहिं मज़ाकी ॿियनि मूड में हूंदा आहियां उनमें हिकदमि कोन का दुख जी ॻाल्हि जेका असां मुंहिंजे जीवन मां निकिरी ईंदी आहे
1: हिते असीं चवंदासीं तव्हां खां हिकु ॿिए सवाल कंदासीं त शायर ते या हिकु अदीब ते वॾियूं जवाबदारियूं रहनि थियूं त इहो त तव्हांजो थियो कमर्शियल पहलू पर तव्हां ॾिसो था हिंदुस्तान में अॼु जेका सिंधी अदब सिंधी ॿोली या शायरी जे तरफ़ कदम वधाए रही आहे त उन खे रोकण या उन जे तरक़ीअ लाइ तव्हां कहिड़ो किरदारु अदा करे सघंदा पंहिंजी तरफ़ खां
2: पहिरीं ॻाल्हि आहे त शायर या लेखक उहो ई आहे जेको पंहिंजे ज़माने सां हम कदम थी हले ऐं ज़माने में जेकी वही वापरे थो जेकॾहिं हुन सां असीं सोले सुर मिलाए नथा हलूं

0: ଆଉ ନେଇ ତର୍ଜମା ନେ ନଥା କରିଆ ତ ପୋ ସେ ସଚ୍ଚା ଶାୟର ଆ ଥା ଚାଲି କା କାହି କୋ ନକେ ତ ମା ହୁନ କେ ଏହି ସଲା ଦିନ ଜସ ତାକି କୋ ନେ ଯୋ ଦୌର ଅବ କୋ ନେ ଯୁଗ ଦେ କୋ ହେ ତମେ ଜେ କି କୁଛ ହେ ତ ହେ ଏ ଖାସ କରେ ଇନସାନତ ସା ଦେ କନୁରତ ହି ରହେ ହେନ ଉନେ ବାରେ ମେ ହୁ ପଞ୍ଜା ଆବାଜ ହୁ ଉଠାରି ତ ଜେ କି ନକାଦ ସମଟ ପୈଦା ଥେ ହେନ ସେ କା ନକା ଏନ କା ପାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ଟ କି ତରାକନ
1: ଜି
0: ନକାଦ ସେ ପଚ ହୁ ଆହେ देखो खीरों पाई अलग करे बिहार
1: बिहार
0: भी उन्हें जिम्मेवारी उन्हें जवाबदारी यह है कि देखो लेखक है उन्हें जो कि खूबियों हैं उनके चंगी तरह आवाज नहीं करे खुले देखा रहे तो उन्हें जो कि खामियों हैं ना मैं पेश ऐडी ऐडी शब्द में चले जो पाठक यानी पढ़ंदर यानी को बंसल मत है यह गलत तमाम जरूरी है कहीं भी गलत है तो असा टंकी का जोर वे इन लाइन जरूरी है तो घट में घट के दह पंद्रह वी नकाद तो पैदा थन ये मुझे अर्व जेके वर्कशॉप थे या जेके सेमिनार थे इन दिस में मु कोशिश कई है तो टंकी के लेख लिखा मकाला लिखा मजमून लिखा अलग अलग जेके मकसद हैं जे रचना है कुंजा है इनमें मु भी टंकी कई है पर पान के तो सुठो नकाद या सही नमूने का नकाद न तो समझा पर एतो चंद पान सा ईमानदार रहो हाँ लेखक से भी ईमानदार रहो हाँ पहली गाली कभी भी लेखक के कमजोर करने की कोशिश कोशिश न कई है जो खूबी है तंखे वादे खामी जी इशारे में उन्हें बुधाने जरूरत है
1: तवे शायरी के लिखण कर गीत कलाम से बेशुमार फनकार गाता तो असि हाँ उन पहलू तरफ संगीत तरफ इंदी तो उनमें तसो था अजकल जी नवा फनकार से एतरा पैदा नथा थन तो इनजो कड़ो सबब है
0: अफसोस मुख्य यो है पारन का कटिज इन सुध में अदब जो पैदा थे तो शख्स जमीन से माहौल से वानस्त उत जिंदगी उत रीत रस्मू उत पसगिरदाई आसपास जो वही वापरे तो निज सिंधी है इतने असि सिंधी जो घो कर शहर में खपी खाई
1: व्यू
0: ये सबब है जो मुझे जिंदगी में या मुझे कविता में शहरी जिंदगी एक किस्म की किरायत या किड़ा पैदा थी है किरायत न चवा किड़ा पैदा थी वही है किताबी जो चो तो शहर सजो ही पत्थर पत्थर तबू जोड़ा शीशे जा घर शहर मशीनू मानू शोर इतने हले तो दिल जो जोर अड़ी एक तरह को चीज चवण तो एक कूड़ो इकरार शहर आ कहीं वैशा जो प्यार शहर आ सही भजाए वो सीताऊं रावण जो अवतार शहर आ जिंदगी या जो लिटरेचर सिर्फ नीचे के तबके से ना तो ऊंचे तबके से ना हलंद सिंध जो अदब पंजे जमीन से वाबस्ता है सिंधी सिंधी बुनियाद सिंधी जो जड़ों जेके सिंधी जो से पंजे जमीन में ते करे उन्हें जो जेको अदब है सच्चो अदब नए युग में जेका मॉडर्नाइजेशन असि चाहूं था जेको नओ युग थे उन्हें जे बारे में असा हिंदुस्तान जे लेखकन शायरन मजमून निगारन वधीक लिखा बनस्पति ने जे जेतरो
1: इजाजत वठण का अग तक जिंदगी आहे एडी मंजिल तय कई आहे उनके आजमूंद में कुछ अस बुधन से वंडन चाहिंद कुछ पैगाम दियन चाहिंद
0: पैगाम चाहस खास कर हिंदुस्तान के सिंधुन के
1: जीबानी
0: कर बोली पंजी तमदन पंजी संस्कृति इनके बिल्कुल हंध न छो ये असो वर्सो आ पर जी अस पुराना लेखक आयु या पुराना कलाकार आयु से बराबर जी जान दई

0: के हृदय रखी वेठाई हूं तमाम लाई हुई तरफ है तो मेहरबानी करे जेके कुछ असा सलाह लगाया है उन फलन के पानी दींदा अचन
1: असा तव्हां खे अर्ज़ कंदासीं त जेकॾहिं चंद इशार असांजे सामान खे ॿुधे न त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी
0: कुझु शइ पेश कयां थो
1: इशार
0: कीअं पंहिंजनि में बि कीअं पंहिंजनि में बि अॼुकल्ह गुम थिए थो आदमी रोशनीअ में बि न ॾेखारे ॾिए थो आदमी ख़्वाहिशुनि जी कशमकश ख़्वाहिशुनि जे कशमकश ऐं भीड़ जे दुख दौड़ में टुकड़ा टुकड़ा बण जी किस्तुनि में जीए थो आदमी बोतलनि में खीर कैदी बोतलनि में खीर कैदी ऐं गोदामनि में अनाज उमिरि खाई रोज़ कोलाहल पीए थो आदमी शींहं जा ख़ुदार बणजण जो ज़मानो वियो लॾे बस किथे कुतो किथे लूमर भरे थो आदमी
1: हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे साहित्य अकेडमी अवार्ड सां तव्हांखे नवाज़ियो वियो आहे उन ते मुबारकबाद पेश कयूं था ऑल इंडिया रेडियो जे सिंधी सर्विस पारां पंहिंजे बेशुमार हिंद ऐं सिंध जे सामिन पारां तव्हां वक़्तु कढी स्टूडियो में आया तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी
2: गोवर्धन भारती जो इंटरव्यू ॿुधी रहिया हुआ हींअर पेश आहे ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात ऐं दमन में केतिरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कया साल 2025-26 में इकनॉमी में मज़बूत तेज़ी हासिल थियण खां पोइ मुल्क जी GDP ग्रोथ रेट 7.5% रहण जो अंदाज आहे पाकिस्तान जे कब्ज़े वारे गिलगित बाटलिस्तान में चूंड कराइण जे प्लान ते सख़्त विरोध ज़ाहिर कयो ऐं हाथी में भारत जापान जे काफ़नीघारा में थियल सेमीफाइनल में पाकिस्तान खे 5-3 सां हराए करे मैन अंडर 18 एशिया कप जे फाइनल में पहुची वियो

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो अघु वक़्तु पूरो थी रहियो आहे, वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी। सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे तेसिताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमन में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना स्तुति तिवारी के गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 होने के हैं और पूरे 25 सेकेंड हो चुके हैं। यह समय है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के गीतों भरे इस सफर में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट
1: सुषमा। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज थोड़ा सा दिन तो बदला ही है, आवाज थोड़ी सी अलग है आज, क्योंकि शो तो रोज होता है सिद्धार्थ, आपने भी देखा है, लेकिन रोज हमारे अंदाज बदल जाते हैं, आवाजें बदल जाती हैं। और सुबह का जो मौसम होता है, सुबह सुबह की जो बात होती है वो अलग ही होती है। उसमें कहते ना कि जोश बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: कहते हैं कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन, यानी शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो आपका दिन खूबसूरत रहता है, अच्छा रहता है। और कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग करने के लिए जब हम किसी से गुड मॉर्निंग या सुप्रभात बोलें तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है तो वो दूसरों को के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर देता है। क्या सुषमा?
1: बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात बोली। और एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, और ये भी कहा जाता है कि जिंदगी की खूबसूरती इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं और किस नजरिए से आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। और देखिये, ये आपने देखा होगा सिद्धार्थ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि आज दिन भर हमें क्या क्या करना है। तो कई बार हम सोचते हैं कुछ भी काम, अरे ये करना है, तो पहले से इतना बोझ मान के चलते हैं, अरे आज ये भी करना है, बहुत सारी और टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं तो यही करूंगी कि भाई, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के सुबह की शुरुआत करिए। और सुबह जितनी खूबसूरत होगी, जिंदगी को जितना खूबसूरती के साथ और हल्के फुल्के अंदाज में देखेंगे तो उतनी ही अच्छी लगेगी।
0: बिल्कुल, सुबह बहुत खूबसूरत है, और जैसा कि दिल्ली का मौसम भी पिछले 2 दिनों से बेहद खूबसूरत और खुशनुमा बना हुआ है, क्योंकि बारिश के बाद अब इस समय सुबह जो है, किस तरह का मौसम है, इस मौसम को हम आए आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के माध्यम से।
1: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है, और सभी श्रोताओं का हम एक बार स्वागत भी कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम में, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल भी जी हमारे साथ।
0: गुड मॉर्निंग
1: जी।

0: कोयल बोली दुनिया डोली, सुबह सुबह का वक्त और पक्षियों की ये चहचहाट और सामने से एक जिस तरह का पूरा दृश्य भर कर आता है, जैसे कि हमने बात करी कि सुबह का वक्त एक सकारात्मक सोच का है, एक एक एक खुश रहने की वजह आपको देता है और जरूर मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए कोई बड़ी वजह का होना आवश्यक नहीं है, हम अपने आप में भी खुश रह सकते हैं और कई बार तो बहुत छोटी छोटी बातों पर अगर हम खुश हो सकते हैं तो यही जिंदगी का सार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ, क्योंकि मैंने जिससे पहले भी कहा था ना कि लोग हमारा ये स्वभाव बन गया है सब लोगों का कि छोटी छोटी बातों को लेके ना हम टेंशन में आ जाते हैं, हम कहते हैं अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है ऐसे करके, बट छोटी छोटी खुशियां अगर हम आसपास देखते हैं तो छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों में ही हमें खुशी मिलती है, जो कि हमने शायद अब जीना छोड़ दिया है, वो जो सीख मिलती थी हमें आसपास पहले हमने बड़े बूढ़ों से, वो शायद उनकी वो कमी, क्योंकि हम बड़े बूढ़ों के साथ नहीं रहते, क्योंकि उनसे हम सीखते थे पहले कि छोटी छोटी बातों में ही कैसे आप खुश रह सकते हैं, तो छोटी छोटी बहाने ढूंढिए खुश रहने के लिए, हम यही कहेंगे क्योंकि आप समय गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम अपनी अपनी आपकी अपनी दोस्त सुषमा और
0: सिद्धार्थ के साथ। और जैसे कि सुषमा ने कहा कि छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं, तो आज सुबह सुबह से ही प्लान करते हैं कि पहले तो किसी और को खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि पहले हम खुद को खुश करें, तो सबसे पहले एक बार आईने में देखिए, खुद मुस्कुराइए और बोलिए आज मैं बेहद खुश रहने वाला हूँ इस गीत के साथ।

जीवन जो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं।

0: जी हाँ, ये तो बात थी खुशी की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब दुनिया में आते हैं तो सबको खुशी दे जाते हैं, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने जीवन में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उनको हम हमेशा याद रखते हैं, याद करते रहते हैं। और कुछ इसी तरह की एक शख्सियत है जिसको आज हम याद कर रहे हैं, राजेंद्र कृष्ण का जिनका पूरा नाम है, वो उनकी आज जयंती है, जो कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक थे। उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्मों की, उन्होंने जो इस तरह के गीत गीत लिखे और उन्होंने पटकथा लेखन किया। कुछ फिल्मों का नाम अगर हम आपसे शेयर करें तो जंजीर, प्यार की जीत, अलबेला, अनारकली, आजाद, भाई भाई, देख कबीरा रोया, छाया, पतंग, बहुत सी ऐसी फिल्में थी जिसके लिए उन्होंने मतलब उनको याद किया जाता है। और इस तरह की शख्सियत जब भी आती है, आपको एक पड़ोसन फिल्म याद होगी, क्या आपको याद है?
1: और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी,
0: जी
1: आप राजेंद्र जी की बात कर रहे थे तो
0: जी
1: उन्हें खानदान फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसके लिए उन्होंने उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था उस फिल्म के लिए। और अगली जो फिल्म आपने निकाली हुई है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते
0: जी बिल्कुल। ये
1: हैं?
0: पड़ोसन फिल्म की हम बात कर रहे थे, 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और जिसके डायरेक्टर थे ज्योति स्वरूप, और ये फिल्म महमूद और एनसी सिप्पी ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन इससे

0: देखा था राजेंद्र कृष्ण ने। और इस फिल्म में, क्योंकि जब भी हम हंसते मुस्कुराने की बात करते हैं तो पड़ोसन फिल्म सबको पीछे छोड़ देती है, जिस तरह का अभिनय का अंदाज इस फिल्म में देखने को मिला सुनील दत्त और किशोर कुमार साहब को, महमूद का जो अंदाज था, तो उसने इस फिल्म ने सबके दिलों में राज किया।
1: तो मैं बताऊं आपको सिद्धार्थ कि आज भी अगर ये टीवी पर आ रही होती ना तो मैं तो इवन से यूट्यूब पर भी हम ढूंढ ढूंढ कर कोशिश करते हैं कि इस फिल्म को कभी देखें और अपना मूड जो है वो लाइट कर ले थोड़ा सा।
0: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत।

0: दोस्तों इस समय प्रोग्राम चल रहा है गीतों भरे गुड मॉर्निंग का और आज हम बात कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग कैसे हो सकती है बिना मुस्कुराहट के, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुरा ही देता है और सबसे बड़ी खुशी जीवन की वो होती है जिसमें सुषमा हम अगर हम कहते हैं कि जीना उसका नाम है जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे, आपकी कोई बात से कोई मुस्कुरा दे, आपको याद करके कोई हंस पड़े, कोई खुश हो जाए,
1: बिल्कुल सही,
0: अच्छी बात होती है सुषमा।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक फर्स्ट मतलब सामने वाले को भी सहज कर देता है जब आप मुस्कुरा के उससे बात करते हैं या फिर एक स्माइल पास करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सीरियस रहते हैं तो हर कोई दूर दूर भागेगा, नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना है। और सुबह की शुरुआत जितना मुस्कुरा के करें और तो हर चीज आपको खूबसूरत नजर आएगी। वैसे तो सुबह ही नहीं पूरा दिन भर मुस्कुराते, ऐसा नहीं कि आनंद ससुर मुस्कुराते रहे, लेकिन हाँ जब आप एक एटिकेट भी है कि आप किसी से मिलते हैं तो आप एक हल्की सी स्माइल हमेशा मुंह पर लाकर आप चेहरे पर अपने रखें और फिर आप बात करें।
0: बिल्कुल, कहते भी हैं कि ऐ गमे जिंदगी ना हो नाराज, मुझको आदत है मुस्कुराने की, क्योंकि कई बार मुझे लगता है सुषमा वॉरियर या योद्धा वो नहीं, सिर्फ वो ही नहीं होता जो युद्ध के मैदान में होता है, योद्धा वो भी होता है जो दिल में दर्द रखकर अपने होठों पर मुस्कुराहट भी रख सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत आपने तो लाख टके की बात बोली है ये, और हम तो सुबह सुबह अपने सारे श्रोताओं को यही कहेंगे कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो जिंदगी के, हमेशा मुस्कुराते हुए हर एक पल और हर एक क्षण को आप फेस करिए, उसका सामना करिए, क्योंकि लड़ना आपको है, जूझना आपको है उस चीज से, पर मुस्कुराते लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: सुषमा मैं तो यही कहूंगा कि तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो आते हैं, किसका गम कहाँ का गम, फजूल बातें हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, तो भाई ये सब तो दुनियादारी है, चलती रहती है, संघर्ष भी करना है, जीवन को भी जीना है, लेकिन मुस्कुरा के जिएंगे तो हजारों यादें साथ रहेंगी।

0: जी हाँ, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मुस्कुराहट की, जिंदगी की, कि किस तरह से हंसते गाते जब हम जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ते हैं तो सफर का पता ही नहीं चलता है। और कहते हैं कि जिंदगी कभी सपाट नहीं होती, इसमें उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि इसी का नाम तो जिंदगी है। सुषमा, कभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कोई मुसीबत आती है, तो कहीं हमारा सफर बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह से उतार और चढ़ाव को जब हम एक ही तरीके से लेते हैं ना, बहुत ज्यादा जब हमारे पास खुशी होती है तो हम उड़ते नहीं है, और जब हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम एकदम गिरते नहीं है, हम दोनों को बराबर से फेस करते हैं, तभी हमारी जिंदगी को जीने का जो हौसला होता है वो मजबूत रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सारे श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि जिंदगी में देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि जिंदगी तो इसी का नाम है ना, उतार चढ़ाव आएंगे, खुशी गम सब कुछ होगा, बस अपने आप को सहज करके हर एक चीज को सहना है, उसे उसका मुकाबला करना है और आगे बढ़ते जाना है।
0: बिल्कुल जिंदगी का, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर इस सफर में कोई हम सफर मिल जाता है तो कहते हैं कि जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाती है, क्योंकि जिंदगी जब और ज्यादा हसीन होती है हम सफर मिलने के बाद, तो कुछ दिल के ख्याल इस तरीके से होते हैं।

0: और सिद्धार्थ, इस खूबसूरत गीत के साथ अब हमारा ये गीतों भरे गुड मॉर्निंग का सफर यहीं खत्म होने को है।
1: तो इजाजत लेते हैं, विदा, नमस्कार।

0: श्रोताओं में आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अमिताभ से आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,00,000 से अधिक

0: रोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: नेपाल वी हैव एन एक्सपेंसिव एजेंडा।
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल है। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
6: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना

0: की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयरट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्पलेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. more than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan to balance fertilizer use and sustain

0: کے انجمات کو خط کرنے سے جوڑ دیا ہے جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچاتا رہا ہے کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات کا ایک اہم پہلو سمجھتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر لانے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: اب تک کے کیرل میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ منگلاپرم، کوئی کوڈ، وائنار، کنور اور کاسرگاڈ اضلاع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ البتہ کوئی کوڈ اور وائنار میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر اور پرگانند ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگانند نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر ایک کھلاڑی میگنس کارلسن کو 2 مرتبہ ہرایا ہے۔ گوا کے شہر مرگاؤں میں جاری سیف فٹ بال خواتین چیمپئن شپ کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر بھارت فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت اب تک 5 بار اس خطاب کو جیت چکا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فریم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے گجرات کے شہر سورت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک عوامی ریلی سے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار کی شہ سرخی ہے، بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، دلی میں 18 نمو پارکوں کی شروعات، اسی سال لگیں گے 15 لاکھ پودے۔ اخبار انقلاب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انسانیت اور انصاف کے سامنے اے آئی سب سے بڑا چیلنج، مصنوعی ذہانت کے ذمہ داری کے ساتھ استعمال پر زور۔ اخبارات نے صنعتی ہفتے کے اس رد عمل کو اہمیت دی ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے اعلانات سرمایہ کاری بڑھانے والے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے میناکشی مدن رائے کی پٹنہ ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس کے طور پر حلف لینے کی خبر کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تنسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے۔ کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت میں پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے، وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
3: آکاشوانی دلی کا انتربس چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈیارم 810 کلو ہرٹز پر۔ پرست ہے سوستھ پترکا ہماری صحت۔
4: آکاشوانی دلی سے پرست ہے کارکرم سوستھ پترکا ہماری صحت۔ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति का नाम नहीं है बल्कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की एक अवस्था है। आज के इस विशेष अंक में पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के पोषण तथा गर्मी की छुट्टियों में स्वास्थ्य संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी देंगे। स्वस्थ जीवन की कल्पना एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के बिना नहीं की जा सकती। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरियाली और संतुलित प्राकृतिक संसाधन हमारे अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। यही संदेश लेकर हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज का बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरा और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। सांस संबंधी रोग, हृदय रोग, गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और जल जनित बीमारियां कहीं न कहीं पर्यावरणीय असंतुलन से जुड़ी हैं। आइए सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष संदेश।
5: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर एवं चिंताजनक विषय पर कुछ चर्चा करूंगा। दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वाधान में हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण यानी हमारी पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन का आधार। पृथ्वी का पर्यावरण ही इसे हमारे सौर मंडल में उपस्थित अन्य ग्रहों से अलग बनाता है और इसी वजह से यहाँ जीवन संभव हुआ है। लाखों वर्षों से पृथ्वी के पर्यावरण ने जीवन को संभाल कर रखा है, परंतु मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में पिछले एक शतक में हमने पृथ्वी के जीवनदायी पर्यावरण को इस प्रकार से चुनौती दी है कि इसकी प्राकृतिक क्षमताएं निरंतर कमजोर होती जा रही हैं। इसी पर्यावरण का एक अंश जलवायु। जलवायु यानी हमारे वातावरण का तापमान, बरसात, आर्द्रता, हवा की गति और सौर्य विकिरण। हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन यानी पृथ्वी एवं समुद्र का बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात, अत्यधिक गर्मी और शीतलहर की बढ़ती हुई घटनाएं। दोस्तों, औद्योगिकरण, शहरीकरण और निरंतर बढ़ते यातायात के बोझ से कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में बढ़ोतरी, ओजोन की परत में सुराख और धरती के सतह पर ओजोन की मात्रा के बढ़ने जैसी घटनाएं जीवन के लिए विभिन्न रूप में हानिकारक साबित हो रही हैं। मसलन पृथ्वी एवं समुद्र के तापमान का बढ़ना एवं परिणाम स्वरूप जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन एवं आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं से जैसे बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बवंडर जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि होना। इसी तरह से मौसम की आवृत्ति में बदलाव जैसे असामयिक बारिश का होना, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडे दिनों की वजह से फसलों पर कुप्रभाव, बीमारियों और असामयिक मृत्यु की दरों में वृद्धि जैसी अवांछनीय घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह परिवर्तन हानिकारक है और सभी जीवों के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है। प्रकृति के विरुद्ध जाकर उन्नति का ये मार्ग आने वाली पीढ़ियों और अधिक कठिन एवं शरीर को रोगी बना देगा। पृथ्वी के बढ़ते तापमान से मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस और अन्य संक्रामक रोगों की चपेट में नए क्षेत्र शामिल होते जा रहे हैं। वह कहीं से भी मानवता के लिए शुभ एवं वांछनीय नहीं है। इसका प्रभाव सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, यह पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक संपदाओं पर निरंतर दुष्प्रभाव डाल रहा है। इसलिए मित्रों, समय आ गया है जब हमें जलवायु परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सिर्फ रोकना ही नहीं है बल्कि इसे विपरीत दिशा में मोड़कर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से सुरक्षित एवं जीवन योग्य बनाना है। साथ ही वर्तमान में वह सभी उपाय करने होंगे जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के साथ साथ हमें भी इसके कुप्रभावों से बचाकर रख सके और ये जिम्मेदारी हमने से हर एक को व्यक्तिगत रूप से उठानी होगी। हमारे व्यक्तिगत प्रयास ही देश के और विश्व के संस्थागत प्रयासों को मजबूत बनाएंगे और हम सामूहिक रूप से इस त्रासदी का सामना कर पाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन लाएं जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से आपको सुरक्षित रखेंगे और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने में मददगार होंगे। इस मुहिम में सबसे पहला कदम हमारा, हम पैदल चलें, साइकिल चलाएं और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्राथमिकता दें। खनिज ईंधन के उपयोग को कम करना जलवायु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कार्बन और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी, पैदल चलने और साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ शहरों में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। बिजली का इस्तेमाल कम करें, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, सूर्य की रोशनी से घर में उजाला रखें, एयर कंडीशनर के बजाय ताजी हवा से घर को ठंडा रखें, ठंडे पानी में कपड़े धोएं और प्राकृतिक हवा में सुखाएं। जितनी बिजली की खपत ज्यादा होती है उतनी ही बिजली उत्पादन करने में खनिज तेल का उपयोग होता है, मशीनें चलती हैं और वातावरण में तापमान बढ़ता है। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। ये हमारी संस्कृति में एक प्रचलित पुरानी कहावत है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल जलवायु को प्रतिकूल बनाता है। यह सभी उपकरण आज जिंदगी के अभिन्न अंग है, परंतु इनके उपयोग को आवश्यकता अनुसार सीमित किया जा सकता है। सभी उपकरणों का इस्तेमाल ऊर्जा पर आधारित होता है और जितनी ऊर्जा हम खर्च करते हैं उतनी ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया में जलवायु पर कुप्रभाव पड़ता है। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में खाने पीने की वस्तुओं का चुनाव महत्वपूर्ण साबित होगा। पेड़ और पौधों से मिलने वाला खाना जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और मेवा इत्यादि को उगाने और इनको प्रोसेस करने में कम पानी और जमीन की जरूरत होती है। वहीं जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन को पकाने में ज्यादा ईंधन और पानी की जरूरत होती है। इसलिए अपने भोजन की शैली को बदलना, अधिक से अधिक पेड़ पौधों से मिलने वाला खाना खाना और प्रोसेस्ड और पैकेज फूड के इस्तेमाल को कम करना जलवायु परिवर्तन रोकने में मददगार साबित होगा। आखिर में दोस्तों, दुनिया भर में जितना भोजन पकाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा खाया नहीं जाता, कंज्यूम नहीं किया जाता और इससे भोजन बर्बाद होता है। इसलिए जरूरत से अधिक भोजन बनाना और फिर उसका उचित सेवन न कर पाना भी पानी और ऊर्जा की बर्बादी है। जितनी ऊर्जा हम बचाएंगे, जितना पानी हम कम खर्च करेंगे, प्रकृति और जलवायु उतनी ही सुरक्षित रहेगी। हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की हरियाली को सुरक्षित रखें, जंगलों को काटने न दें ताकि प्रकृति अपने संसाधनों से अपने आप को अक्षुण्य रख सके। शहर की हरियाली और ग्रामीण इलाकों के जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं। इन्हीं की बदौलत हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी जिंदगी का आधार है। उत्पादित सामग्री का उपयोग हम कम करने का प्रयास करें, हम कम खरीदें और उनका इस्तेमाल जहां तक संभव हो सके लंबे समय तक करें। जल्दी जल्दी चीजों को बदलना यानी नई चीजें खरीदना उत्पादन बढ़ाती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा पानी और प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत। इसलिए वहां पे संयम बरतना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। वायु प्रदूषण एक जटिल समस्या है। शहरों में, खास करके हमारे देश के बड़े शहरों में प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है और यह प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक घटनाओं को बढ़ाता है। हमारा हर कदम जो ऊर्जा बचाता है, पानी को संरक्षित करता है, प्रकृति को सुरक्षित रखता है, वह जलवायु परिवर्तन को भी रोकता है। हमारे व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए यही छोटे छोटे कदम सामूहिक स्तर पर क्रांतिकारी साबित होंगे। धरती फिर से जीवंत होगी, जलवायु अनुकूल होगी, जीवन की खुशहाली लौटेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, हम हमारे जीवन की सार्थकता को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।
4: अभी आप विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, UCMS और GTB अस्पताल नई दिल्ली का ये विशेष संदेश सुन रहे थे। आइए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, जल और ऊर्जा का संरक्षण करेंगे और स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। याद रखिए, स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। श्रोताओं, पर्यावरण और स्वास्थ्य का संबंध जितना गहरा है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सही पोषण। कहा जाता है कि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ जीवन की नींव है और इस स्वस्थ बचपन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है उचित पोषण। बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले तो न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनते हैं बल्कि उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी बेहतर होता है। आइए सुनते हैं बच्चों में सही पोषण विषय पर भेंटवार्ता जिसमें विश्व कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे के संदर्भ में भी जानकारी शामिल है। हमारे विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और IAP वेस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राधिका सचदेव। भेंट करता है रश्मि गुप्ता। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद
4: मैम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पोषण क्या है और बैलेंस डाइट से हमारे लिसनर्स क्या समझें।
6: पोषण या फिर बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सही मात्रा में एज के हिसाब से हर चीज होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जिससे बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट एडिक्वेटली पूरी हो सके और बच्चे की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उस पर सब कुछ का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो अच्छे से हो सके।
4: जी जी।
6: इतनी मात्रा में कितनी चीज कैसे दी जाए।
4: तो किस उम्र से बच्चों को सही पोषण मिलना चाहिए और किस उम्र तक माता पिता को पोषण का खास ख्याल रखना चाहिए।
6: सही पोषण तो एक गर्भवती स्त्री से ही स्टार्ट हो जाता है।
4: जी जी।
6: क्योंकि अगर बच्चा अच्छा पैदा होगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। और हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं शुरू के 1000 दिन।
4: अच्छा।
6: मतलब जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हुए प्लस 2 साल, वो पोषण अगर सबसे अच्छा हुआ, माँ ने आयरन कैल्शियम की गोली ली, अच्छा आहार लिया, अच्छी नींद ली और फिर बच्चा अच्छा होगा, सही टाइम पे होगा, बच्चे का वेट अच्छा होगा, फिर 6 महीने तक बच्चे ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया,
4: जी
6: सिर्फ माँ का दूध पिया, कुछ भी और नहीं, उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वहां से लेके बच्चे की नींव जो बनती है वो इसी टाइम पे बनती है, उससे लेके एडोलेसेंट तक, एडल्ट तक। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो बच्चे खाते हैं, हम शुरू में बोलते हैं कि पहले 1 साल नमक नहीं देना, चीनी नहीं देनी, 2 साल तक चीनी नहीं देनी, क्योंकि आगे देखा जा रहा है कि जो पहले हमारी जनरेशन में जब डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता था, ओबेसिटी होती थी, वो आजकल जल्दी हो रहा है। तो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट तो प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता
4: है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी से ही बच्चे का जो पोषण है वो स्टार्ट हो जाता है, जब नवजात शिशु की यदि हम बात करते हैं तो उसको पोषण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, और खासतौर पर जो शुरुआत के 6 महीने आपने बताया कि माँ का जो दूध होता है वो संपूर्ण आहार की तरह काम करता है, ऐसा किस लिए?
6: क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ के अंदर इतना सुरक्षित होता है तो बाहर निकल के भी उसको ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो वो सुरक्षित रहे आगे भी। माँ के दूध में जैसे तत्व होते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, नेचुरली की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होता है, उसमें ऐसे एंटीबॉडीज, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे तत्व होते हैं जिनसे ये सब बच्चा फाइट कर सकता है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। प्लस उसमें इतना पानी होता है, इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट, वो अपने में ही एक बैलेंस डाइट है। तो पैदा होते ही चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे ऑपरेशन से हो,
4: जी
6: 1 से 4 घंटे के अंदर माँ की छाती पे लगाकर इसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। और उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग शहद चटाते हैं या पानी पिला देते हैं,
4: जी
6: घुट्टी दे देते हैं,
4: जी
6: ग्राइप वाटर दे देते हैं, तो प्लीज याद रखें पहले 6 महीने में माँ के दूध में इतना पानी होता है,
4: जी
6: इतनी पौष्टिक तत्व होते हैं कि उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जो माँ के दूध में शुरू में आता है उसको बोलते हैं 4 मिल्क।
4: अच्छा।
6: उसमें होता है पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ होता है।
4: अच्छा।
6: तो वो बच्चे की थर्स्ट को पूरा कर देता है। और अगर गर्मी है, बच्चा बार बार प्यासा हो रहा है तो वो बार बार दूध पिएगा तो 4 मिल्क ज्यादा जाएगा। और लास्ट के कुछ मिनट में जो मिल्क आता है वो हाइंड मिल्क होता है, उसमें फैट होता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गर्मियों में पानी ना शुरू करें 6 महीने तक। दूसरा प्री लैक्टियल फीड्स वो नहीं दे। तीसरा एक बार में एक तरफ से पिलाएं, फिर दो से तीन घंटे बाद जब बच्चा दूध डिमांड करता है तो दूसरी ब्रेस्ट से पिलाएं। 6 महीने के बाद बच्चे के आहार में क्या बदलाव करना चाहिए और किस तरह का ठोस आहार देना चाहिए। आज लकीली मैं बहुत अच्छे दिन आई हूँ। आज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे मनाती है। तो पहले कंसेप्ट था वीनिंग का कि आप बच्चे को ब्रेस्ट से वीन ऑफ कर दीजिए और ऊपर का खिलाना शुरू करिए। अब कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का कि आप ऐसा आहार शुरू करें जो ब्रेस्ट मिल्क को कॉम्प्लीमेंट करे। ब्रेस्ट मिल्क आप स्तनपान 2 साल तक चला सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही 6ठा महीना खत्म हो। 6ठा महीना क्यों चुना? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चे की गर्दन संभल जाती है, बच्चा बैठने को तैयार हो जाता है
4: जी,
6: सपोर्ट से या बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है। बच्चे के जो जीभ के मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जो जबड़े के मसल्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा स्वॉलो करना सेमी सॉलिड चीजों को और निगलना थोड़ा दांत आने शुरू हो जाते हैं 6 महीने से, चबाने की प्रक्रिया ये सब सीखना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं 6 महीने से। अब क्या शुरू करें? घर की चीजों से शुरू करें, बाहर के सामान से नहीं शुरू करें। अनलेस आप ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में, घर का क्या सामान? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दाल का पानी, चावल का पानी, दूध में बिस्किट डाल के या रोटी को दूध में गला के या छनी हुई चीजें,
4: अच्छा
6: हल्के जूस छान के, सब्जियों को मिक्सी में पीस के ये ना दें।
4: अच्छा, ये नहीं देना?
6: बिल्कुल नहीं देना। तो पहले बात करी जो नहीं देनी। अब देना क्या है? पूरी दाल दीजिए, मूंग दाल दीजिए, खिचड़ी दीजिए, दलिया दीजिए। दलिये को आप ग्राइंड करके रख सकते हैं, दाल और सब्जी के साथ बना सकते हैं। जैसे 6 से 8 महीने का बच्चा है तो 2 बार खाना, 1 बार सीजनल फल।
4: अच्छा,
6: 9-10 महीने का बच्चा है, 3 बार खाना, 1 बार फल। 11 और 12 महीने पे 4 बार खाना, 1 बार फल। मतलब 1 साल का बच्चा जितना हम खाते हैं उससे अप्रोक्सीमेटली आधा खा सकता है। एक ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में स्नैक। और स्नैक में आप उबला हुआ आलू दे सकते हैं, उबली हुई शकरकंदी मैश करके दे सकते हैं। सीजनल फल खिलाएं, केला बहुत अच्छा है, एक सेब को मैश करके घिस के खिला सकते हैं
4: जी,
6: पपीता खिला सकते हैं, चीकू है, सूजी है, सूजी की खीर बना सकते हैं। देन दलिया दाल के साथ जैसे ना बनाया, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए आप फैट डाल सकते हैं। बट प्लीज ये याद रखे, ऊपर से नमक नहीं डालना
4: जी
6: 1 साल तक, और चीनी का प्रयोग 2 साल तक नहीं करना। जो नेचुरल शुगर्स हैं जैसे फलों में मिल रहा है या जैसे खजूर है
4: जी,
6: जिस नेचुरल शुगर्स आप दे सकते हैं, बट एडेड शुगर चीनी ना डालें
4: जी।
6: जिन बच्चों को चीनी जल्दी शुरू करी जाती है आगे जाके तकलीफ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे का नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है सिर्फ मीठा खाने की, वो बाकी चीजें नहीं खा पाता आराम से, उसकी प्रेफरेंस हो जाती है
4: जी।
6: और नमक से ये होता है कि हमारे बच्चे, यही बच्चे आगे जाके हाइपरटेंशन इनको जल्दी होगी
4: जी। मेरा अगला सवाल यही था कि यदि बच्चों को सही पोषण ना मिले तो कौन कौन सी समस्याएं उनमें हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं?
6: मैल न्यूट्रिशन, जिसमें कि बच्चों का वजन नहीं ठीक से बढ़ रहा
4: जी,
6: मतलब बच्चा कमजोर है, उसमें प्रोटीन की कमी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, वो बहुत दुबला पतला, उसके साथ साथ एनीमिया भी हो जाता है
4: जी।
6: खून की कमी आयरन की वजह से, फॉलिक एसिड या B12 की वजह से, देन विटामिन डी की कमी, डिफिक्स हो जाता है, हड्डियां इफेक्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया पोषण बहुत कम मिलने से। और एक है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी आज का मेल न्यूट्रिशन है क्योंकि इसमें भी पोषक खाना तो जा नहीं रहा
4: बिल्कुल।
6: तो ओबेसिटी एज वेल एज मेल न्यूट्रिशन, ये दोनों बैलेंस डाइट नहीं होने की वजह से होते
4: हैं। माता पिता कैसे पहचाने कि बच्चे में पोषण की कमी है?
6: अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो मैलनरिश बच्चे होते हैं वो उतने खुशमिजाज नहीं होते।
4: अच्छा,
6: वो थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए खान पान किस तरह से योगदान देता है? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे की हम थाली बना रहे हैं उसमें सब तरह का सामान हो
4: जी।
6: जैसे गो फूड्स जिनसे एनर्जी मिलती है, जैसे कि चावल है, रोटी है, मिलेट्स है, रागी ज्वार बाजरा है, फिर ग्रो फूड्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, प्रोटीन वाली चीजें, राजमा, दालें, चने, सोया, पनीर। और तीसरा होता है ग्लो फूड जिसमें सब्जियां, हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद की चीजें और फल आते हैं। तो ये तीनों चीजों की एडिक्वेट अमाउंट में मात्रा होनी चाहिए, मतलब हमारी थाली पूरी रंगीन होनी चाहिए, दाल भी हो, चावल भी हो, हरी सब्जियां भी हो, फल भी हो, सब कुछ हो।
4: बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, गो ग्रो एंड ग्लो
6: बिल्कुल, तो कुल मिला के भी हमें बच्चों को स्वस्थ बनाना है और अपने समाज के का निर्माण स्वस्थ बच्चों के साथ करना है, तो हमें उनके पोषण का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैम आज आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन चलते चलते उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप जो अपने बच्चों को शुरुआत से कम उम्र से ही अच्छा पोषण देना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली क्या सुझाव आप देना चाहेंगे?
7: अच्छा खाना, और एक निमोनिक बना है जंक्स, JUNCS, जंक्स मतलब जे से जंक फूड, जिसमें कि बहुत फैट शुगर और सॉल्ट होते हैं। यू से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे बर्गर पैटी पिज्जा पास्ता। एन से नॉन न्यूट्रिशियस चीजें, इनअप्रोप्रिएट चीजें जिसमें न्यूट्रिशन ना हो। सी से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, मीठी चीजें, और एस से एक्सेस शुगरी, ये सारी चीजें ये अवॉइड करें तो आपका बच्चा अपने आप एक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बच्चा हो जाएगा।
6: जी आप यहाँ आई, आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर,
7: थैंक यू सो मच।
8: सही पोषण, अभी आप इस विषय पर भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारी विशेषज्ञ थी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका सचदेव, आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। निश्चित रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संतुलित पोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। गर्मियों की छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित करना बेहद आवश्यक है। इस समय का उपयोग न केवल विश्राम और मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है। आज की वार्ता में हम आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं। छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन यानी हेल्थ रिजुविनेशन इन समर वेकेशन। हमारी वार्ताकार है साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना।
7: आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कंपटीशन, सोशल मीडिया, करियर अनसर्टेनिटी, इन सब का असर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। कई बच्चे वेकेशंस में भी मेंटली स्ट्रेस रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि हर समय प्रोडक्टिव नहीं रहे तो वो पीछे रह जाएंगे। इस लगातार प्रेशर का असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, जैसे स्लीप साइकिल, ईटिंग हैबिट्स, इमोशनल बैलेंस और कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे समय में समर वेकेशन सिर्फ छुट्टियां नहीं है बल्कि बच्चों के लिए रिकवरी, इमोशनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ इम्प्रूवमेंट का एक सुनहरा अवसर है। आज के स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन रिच है लेकिन इमोशनली ओवरलोडेड भी हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी दिमाग पर लगातार इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन का दबाव। जब ब्रेन को लगातार स्ट्रेस मिलता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, स्लीप डिस्टरबेंस होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और एंजाइटी बढ़ सकती है। यानी मानसिक दबाव केवल इमोशंस तक नहीं सीमित रहता बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आज WHO और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार यह कह रहे हैं कि स्टूडेंट वेलबींग इज एन इम्पॉर्टेंट एज एकेडमिक अचीवमेंट। समर वेकेशन बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिकल रिकवरी पीरियड और साथ ही साथ मेंटल रिस्टोरेशन फेज हो सकते हैं। पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान लंबे स्टडी हार्स, स्क्रीन एक्सपोजर, एग्जाम प्रेशर और इरेगुलर रूटीन से बच्चों के नर्वस सिस्टम और बॉडी दोनों को थका देते हैं। इसीलिए वेकेशन के दौरान प्रॉपर स्लीप, इमोशनल रिलैक्सेशन, फिजिकल मोमेंट और फैमिली बॉन्डिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन, यानी आपकी इमोशंस और स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से मैनेज करना। आज CBSE और NEP भी फोकस कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट और ब्रेन ग्रोथ, जिसमें शामिल है AI लिटरेसी, इंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन फ्यूचर रेडी बनने का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि बच्चों में क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी बच्चों को नए आइडिया सोचने और अलग तरीके से प्रॉब्लम को देखने में मदद करती है। यह इनोवेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों को बढ़ाती है, जो फ्यूचर करियर में बहुत जरूरी है। आज की बदलती दुनिया में अडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखते हैं वे स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं।
6: प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों को चैलेंजेस से घबराने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढना सिखाती है, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से मैनेज करना, वही इमोशनल इंटेलिजेंस है। मेंटल फिटनेस उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस। कुछ हेल्दी समर हैबिट्स जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, जर्नलिंग, नेचर वॉक, योगा एंड स्ट्रेचिंग और लिमिटेड टाइम स्क्रीन, ये एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम को काम कर देती हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग में रोज कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करने से माइंड शांत होता है और एंजाइटी कम होती है। यह कंसंट्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। जर्नलिंग में आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखने से इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। यह स्ट्रेस को रिलीज करने और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक हेल्दी तरीका है। प्रकृति के बीच समय बिताने से ब्रेन रिलैक्स होता है और मूड बेहतर होता है। नेचर एक्सपोजर मेंटल फटिगनेस को कम करने में मदद करता है। योगा और स्ट्रेचिंग की बात करें तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मेंटल कामनेस भी बढ़ाते हैं। यह स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। लिमिटेड स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम एक्सपोजर अटेंशन स्पैन और स्लीप दोनों को प्रभावित करता है, तो स्क्रीन टाइम लिमिट करने से फोकस, मूड और सोशल इंटरेक्शन बेहतर होते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होती है तभी ब्रेन इफेक्टिवली लर्न कर पाता है। साथ ही साथ हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। समर में बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, सीजनल फ्रूट लेने चाहिए और एक्सेसिव जंक फूड कम करना चाहिए। न्यूट्रिशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके मेमोरी, मूड, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल और ब्रेन को भी तो प्रॉपर फ्यूल चाहिए ना। कई स्टडीज यह दिखाती है कि पुअर स्लीप और अनहेल्दी फूड मिलकर स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स का यह समझना भी बहुत जरूरी है कि वेकेशंस केवल एक्स्ट्रा ट्यूशंस का समय नहीं है। बच्चों को चाहिए रेस्ट, इमोशनल कनेक्शन, हॉबीज, फिजिकल एक्टिविटीज और सेल्फ एक्सप्लोरेशन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सपोर्टिव इमोशनल एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जहां बच्चा प्रेशर नहीं बैलेंस महसूस करे। आज भी भारत के कई हिस्सों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लिमिटेड है, काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स और स्टूडेंट गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आकाशवाणी जैसे प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है क्योंकि वो मीनिंगफुल हेल्थ और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कई स्टूडेंट्स पहली बार ऐसे प्रोग्राम सुनकर समझते हैं कि स्ट्रेस होना नॉर्मल है, मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का हिस्सा है, हेल्प लेना कमजोरी नहीं है। याद रखिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी इमोशंस, यही है ट्रू फ्यूचर रेडीनेस। नमस्कार। इन सुझावों का पालन करके आप गर्मियों की छुट्टियों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं। स्वस्थ रहना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता हेल्थ रिजुनोवेशन इन समर वेकेशंस, यानी छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन। वार्ताकार थी साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिए। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
9: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आर के कोटनाला, आप चेयरमैन हैं न्यू साइंस क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट के। आपने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम किया है और सिलिकॉन सोलर सेल पर आईआईटी दिल्ली से सबसे पहले पीएचडी करने वाले आप ही हैं। प्रोफेसर कोटनाला, आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर कोटनाला, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सिलिकॉन सोलर सेल पर आपने रिसर्च किया था, ये क्या था?
3: मैंने जब सोलर सेल बना रहे थे, क्योंकि हम पहले ये बन चुका था तो हम उसको एक तरह से नए ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने जो सोलर सेल बनाया था वो P+NN+ करके एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें बोलते थे BSF इफेक्ट, मतलब बैक सरफेस फील्ड, जो आजकल पर्क सोलर सेल इसका मॉडिफाइड फॉर्म है आज की डेट में। ये हमारा काम है 1985 का, तो 1985 से जो था वो देखिए कि अभी पर्क सोलर सेल को आए हुए 8-10 साल हुए। तो पर्क सोलर सेल इसमें हाईली एफिशिएंट है। उस समय हमने क्या किया कि एक छोटा सेल 10 mm का साइज से लेकर के हम उसको 2 इंच डायमीटर, मतलब बेसिकली 2 इंच 5 सेंटीमीटर का बनाते रहे, और उससे हमने छोटी सी एक मतलब मोटर चलाई, थोड़ा सा लाइट जला लेते थे, एक बड़ी पैनल बना ली थी,

0: और उसके बाद हम उस पर आगे कार्य करते रहे।
1: ये बताएं कि ये जो आपने सोलर सेल पर काम किया, ये आजकल के जो सोलर सेल है उनसे कितने अलग थे?
0: मूल रूप से सोलर सेल आज भी वही है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी सेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी गई थी, उन्होंने ये काम भी किया, इस पे भी किया। और अभी मैंने आपसे कहा कि पर्क सोलर सेल इसका ही एक नया रूप दिया गया है, जो इस समय 22% एफिशिएंसी पे दिखाता है। उस समय हम इसको 12% बना रहे थे 1990 में।
1: प्रोफेसर कोटनाला, सौर ऊर्जा पर सरकार का भी बहुत ध्यान है और इसमें अच्छी बात यह कि हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में कुछ समय को छोड़ दें तो धूप रहती रहती है, और खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब धूप अच्छी खिली रहती है, तो इसको लेकर हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें कही जाती है कि एक तो हमारे यहाँ सोलर सेल और सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं है, और सोलर सेल्स भी जो है वो बाहर से बनकर आते हैं विदेशों से। इन बातों में एक तो कितनी सच्चाई है, और क्या सोलर एनर्जी को लेकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं?
0: जब हम सोलर सेल यहाँ पे बना रहे थे देश में, मैं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कार्य कर रहा था दिल्ली में, फिर IIT दिल्ली भी, तो अब उस समय हम अपने यहाँ सोलर सेल बना रहे थे, सिलिकॉन हम बाहर से खरीदते थे तब भी, और कुछ केमिकल भी। लेकिन आज की जो स्थिति है, हम जितने भी सोलर के बड़े बड़े मतलब हमने पावर स्टेशन बनाए एक तरह से, तो वो जो पावर स्टेशन है मतलब वो सारे के सारे बाहर से खरीदे जाते हैं, तो इसमें आत्मनिर्भरता तो चाहिए। आज की डेट में ये हो रहा है कि वो सोलर सेल ही पूरा बन के आता है, इवन की पैनल भी बन के आते हैं, और ये बहुत महंगा है, ऐसा भी नहीं है, और हम आयात करते जा रहे हैं, तो इतना आयात करते हैं कि यदि हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं सरकार और बाहर, तो $6 बिलियन का हम आयात करते हैं आज भी। तो इसके लिए आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि आत्मनिर्भरता हो, उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऐसे कदम नहीं उठाती है, या तो सरकार उनके ऊपर कुछ जोर देगी तब होता है, लेकिन तरीका ये है कि इसको सरकार पे कदम उठाना चाहिए था। जब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि जो ये जो एनर्जी निकल रही है, इसके प्रोसेस में जब मतलब ये एनर्जी के लिए जो डिवाइस बनाया है, फाइनली हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल ना हो जो हमारी सेहत के लिए खराब है या मिट्टी पानी के लिए खराब है, तो हमें उसके लिए एक नया रास्ता देखना था। तो ग्रीन एनर्जी इसीलिए कहा गया कि इसके सारे स्टेप्स, प्रोसेस के स्टेप्स भी हैं, वो कैसे हो कि उसमें कोई भी ऐसी हमारी सेहत के लिए, अर्थ की सेहत के लिए ना हो खराब।
1: तो कौन कौन सी एनर्जी ग्रीन एनर्जी हुई?
0: ग्रीन एनर्जी में जब बात करते हैं तो आमतौर पे सोलर सेल का भी नाम लिया जाता है। वैसे तो देखा जाए विंड एनर्जी भी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड जगह ही होती है, और विंड एनर्जी के साथ साथ लोगों ने कोशिश करते हैं कि और कोई हम ग्रीन एनर्जी के लिए विकल्प ढूंढते रहे, तो उसमें जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन का था, तो इसमें आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक अद्भुत आविष्कार है जो हमने और हमारे स्टूडेंट ने डॉक्टर ज्योति साह ने किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, जिसके प्रोसेस में कहीं पर भी हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, सब देश का ही है, और उससे हम हाइड्रोजन भी जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं।
1: इसीलिए इसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल।
0: हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल तो इसलिए किया गया कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जी। और ये सेल स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए इसका हाइड्रो सेल रखा। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि इसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन ऑल्सो दूसरे फॉर्म में, तो ये दोनों की दोनों बहुत ही वो क्लीन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया कोई केमिकल। उधर से जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो आपको मालूम ही है कि जब हाइड्रोजन इससे प्रोड्यूस कर दिए, पानी डाला डिवाइस पे और आपको हाइड्रोजन मिल गई, जैसे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स है, तो हाइड्रो डैम्स में हम क्या करते हैं, पानी रोकते हैं ऊंचाई पे, फिर पानी गिराते हैं टर्बाइन्स पे, तो टर्बाइन पे पानी गिरता है, तो उसको भी हम बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी भी मानते हैं, बशर्ते कि आसपास में हमने वहां पेड़ न काटे हों लाखों करोड़ों में, जो कि जब कोई भी डैम बनता है तो ये होता है, तो अदरवाइज ये भी एक बहुत अच्छा रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन वो लिमिटेड है, जहां पानी होगा और कुछ ऊंचाई आप करनी है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल है जिसको हम कहीं पर भी कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, लैब में बनाते हैं, अभी हम इसको इंडस्ट्री की तरफ भी ले जा रहे हैं।
1: प्रोफेसर कोटनाला, ये सबसे पहले आपको विचार कब और कैसे आया कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल भी बनाया जा सकता है और इससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है?
0: देखिए, हाइड्रो सेल यदि मैं इसका श्रेय दूं तो पहला श्रेय यही जाता है कि जब हमने उस पर काम कर रहे थे सोलर सेल पे, तो हम चाह रहे थे कि एक बहुत बेहतर सोलर सेल बनाएंगे, लेकिन हमें दिखाई दिया कि हम पश्चिम देशों पे मतलब वेस्ट की तरफ से जितने उनका इक्विपमेंट थे, जितना फंड फंड्स थे उसके हिसाब से हम उतनी फैसिलिटी नहीं बना पा रहे थे, और इसके अंदर हमने कोशिश करने के बाद देखा कि ये हम इस पे नहीं कर पा रहे और सब कुछ बाहर का है मटेरियल भी ये भी। तो फिर हम उस समय से बड़ी खोज में थे शुरू से यंग एज से कि एक ऐसा डिवाइस बनाए। तो फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल तब किया शुरू जब 2001 में हमने नैनो मटेरियल पे काम शुरू किया, और हमने ये नैनो मटेरियल ली जो है ऑक्सीजन डिफिशियंट

0: नैनोपोरस मैग्नीशियम फेराइट बनाया जो पानी को बिना किसी एनर्जी के स्प्लिट करता है H+NO2 में, तो आपको बिजली भी मिलती है और हाइड्रोजन भी मिलती है।
1: ये बताएं कि फिर इस पर आपने कब शोध शुरू किया और कब इसका रिजल्ट मिला?
0: शोध हमने इस पर एक्चुअल में हमने 2002 में कॉन्सेप्ट बना लिया रियलाइज करने के लिए ये होगा और हम इस पर काम करने लग गए। तो 2002 से हम लगातार चलते रहे और वो 2016 में हमने पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल छोटा सा जिसमें बहुत कम करंट और वोल्टेज थी वो हमने पब्लिश किया एक एनर्जी के जर्नल में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है एनर्जी में। और उससे पहले ही हमने जब ये तैयार हो चुका था हाइड्रो सेल तो हमने क्या किया उसके ऊपर एक इंडियन पेटेंट डाला और एक यूएस पेटेंट डाला, दोनों हमें मिल गए और वो पेपर पब्लिश हो गया। तो हमारी जो आविष्कार थी वो दुनिया के एक्सपर्ट्स जो भी हैं उस एरिया में उन्होंने वैलिडेट कर दिया कि नहीं इसको आप पब्लिश कर सकते। तो जब पब्लिश हो गया हमारा आविष्कार 2016 से वो हो गया।
1: प्रोफेसर कोटवाला, ये सुनने में तो बहुत छोटा लगता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक आगे सही भी आ रहा है, लेकिन शोध में फिर इतना समय कैसे लग गया?
0: ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है जो थॉट प्रोसेस है, मतलब पानी को कैसे आप H+NO2 में तोड़ेंगे, ऐसा कौन सा जादू होगा। तो इसलिए हम जब मटेरियल पे काम कर रहे थे और नैनो मटेरियल से हमने देखा कि हम कुछ कोशिश करेंगे, किसी ने भी आज तक दुनिया में ऐसा मटेरियल नहीं खोज पाए कि जो मटेरियल पे पानी गिरे और वो H+NO2 में टूट जाए। तो ये इसको करने के लिए सोचने के लिए फिर उसको फाइनली कैसे डिवाइस फॉर्म में करेंगे, तो हम जबकि रात दिन एक काम करते हैं, मतलब हमारा ये है कि हम लैब में 12 घंटे पिछले 25 साल से आते हैं लैब में और रात को भी घर में जाके 2 घंटे काम करते हैं और मंडे टू सैटरडे, तब भी आप देखिए हमें 14 साल लग ही गए उसको एक फाइनल शेप देने में कि ये डिवाइस है वर्केबल है ना, अब इसको कोई बना नहीं कर सकता।
1: ये बताएं कि जब ये डिवाइस आपका बन गया तो आपको कितनी संतुष्टि मिली और आप क्या आशान्वित हैं कि भविष्य में इसके जरिए भारत में भी मास स्केल पर एनर्जी डेवलप की जा सकती है?
0: जैसे ये हाइड्रो सेल वो हुआ तो हमें दो चीजें ध्यान में आई, एक ये आई कि हमने अपना वैज्ञानिक होने का रोल पूरा अदा किया, दूसरा हमें ये हुआ कि देश से पिछले 108 साल में कोई भी बड़ी इतनी आविष्कार नहीं बना, इतनी बड़ी रिसर्च नहीं हुई जो नोबेल प्राइज के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि इस पे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये दो हुए कि एक तो देश ने ये कह सकता है कि देखिए हमने एक ग्रीन एनर्जी डिवाइस बनाया है हाइड्रोजन सेल जो हाइड्रोजन भी देता है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। और मुझे लगा कि वाकई मैंने जो अपनी पढ़ाई करी या एज ए वैज्ञानिक के पद पे मैं बहुत ऊपर ऊपर भी जाता रहा वो हमने उसको एक तरह से अहम रूप दे दिया।
1: शोध एक चीज होती है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन या उसका एक तरह से रियलिटी में आना या अमल में आना एक अलग चीज होती है। एडिसन ने बल्ब बना दिया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर बाद में उसमें क्या क्या चीजें हुई, किन किन लोगों ने बल्ब उत्पादन शुरू किया, अभी तक लोग बल्ब बना रहे हैं, तो आपका जो ये उत्पाद है बाद में इसका कमर्शियल क्या क्या उपयोग कब से हो सकता है, कब चालू हो सकता है और उसके बाद उसके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं?
0: जब आपने ये बात करी कि सर एडिसन ने जब बल्ब बनाया सबको मालूम है कि इतना बड़ा बल्ब था उसको इतनी बिजली दे के जलना होता था, टिमटिम जलता था, तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हीटर हीट करेंगे वायर को और आपको बिजली मिलेगी और वो उन्होंने किया। तो उस बिजली के साथ जो लाइट मिल रही थी वो उसको भी डेवलप करने में कि वो कई सालों लग गए उनको कि उसमें वो जल जाता था हीटर जल्दी, जो वायर है हीटिंग रेजिस्टेंस वायर टंगस्टन का था, तो उसको उन्होंने वो भी देखा, कई सारे अलग मटेरियल भी यूज किए थे मेटल, लेकिन फाइनली टंगस्टन में आए और ये देख लिया उन्होंने कि हाँ वाकई ये हो सकता है। तो ऐसा ही जब हमारे उसमें आपने कहा हम इसका प्रोजेक्ट के लिए ये रेडी है क्योंकि हमने प्रोटोटाइप में 1 इंच सेल से लेके 4x4 इंच का सेल बनाया हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल और इसको हम ये चाह रहे हैं कि अब इसकी प्रोडक्शन नंबर्स बढ़े। तो नंबर्स बढ़ने के लिए पायलट प्लांट लगाना होता है और इसका पायलट प्लांट में कम से कम 8 से 10 करोड़ का खर्चा है। और ये जो आपका दूसरा सवाल था कि ये कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, ये तो एक ऐसा भगवान का ईश्वर का वरदान है कि ये किसी भी सेल की जगह हटा दो, कोई भी सेल बात कर रहे हैं, सोलर सेल हटाओ, फ्यूल सेल हटाओ, ये सबका एक बहुत अच्छा सटीक बेहतर और सस्ता, आप भूल जाइए लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी जो कि हमारे लिए कैंसरस भी हैं, वैसी भी हैं, तो ये हमारा वो करने के सारे सारे गुण रखता है।
1: प्रोफेसर आरके कोटनाला, आप स्टूडियो आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका हृदय से आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।
2: भारत सरकार स्वास्थ्य, खेलकूद और फिटनेस को लेकर फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं पर काफी ध्यान दे रही है। इन सब में विज्ञान किस तरह सहायक हो सकता है, जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर CSIR के अनिरुद्ध तिवारी।
3: विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार को बल देता है, यह किसी विषय के बारे में जानने और सीखने की प्रक्रिया है। विज्ञान के आविष्कारों से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। विज्ञान का

0: के साथ अटूट संबंध रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला होता है। स्वास्थ्य विज्ञान, जिसे हम चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं, ने मानव को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे समाज में पहला सुख निरोगी काया जैसी संकल्पना रही है। मानव के उद्भव के समय से ही स्वास्थ्य विज्ञान हमारे समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन काल में जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हो पाया था, उस समय में भी स्वास्थ्य विज्ञान ने बीमारी, महामारी एवं युद्ध के समय में लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता तथा महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अत्यंत समृद्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त कुछ उन्नत डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से शरीर में पनपने वाली बीमारियों का पता पहले ही लगाया जा सकता है, जिसका समय पर इलाज करवाकर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों ने चिकित्सा जगत को और अधिक सशक्त किया है। इन सब के बावजूद हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे कार्यों को अत्यंत आसान बना दिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने के समय तक हम अनेक उपकरणों, साधनों, मशीनों के उपयोग पर निर्भर रहते हैं। यानी मशीनों पर हमारी निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। हमें विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का सम्यक एवं संतुलित प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अनेक बीमारियों का शिकार बनता जा रहा है। दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े संसाधन जैसे मोबाइल और इंटरनेट ने तो मानव जीवन में अपनी जगह कुछ ज्यादा ही बना ली है। टेक्नोलॉजी समर्थित ई कॉमर्स के कारण आप घर बैठे अपनी जरूरत के सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं और उन सामानों की डिलीवरी चंद घंटों में आपके पास हो जाती है। यदि हम गौर करें तो यह देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे लिए सुविधाओं का अंबार तो लगा दिया है और हमारे कार्यों को भी आसान बनाया है, लेकिन उनके अधिकाधिक प्रयोग से हमने स्वयं को कमजोर बना लिया है। स्वास्थ्य के इसी संकट से उभरने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। इसमें जन जन की भागीदारी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक क्षमता को कमजोर बना दिया है तथा हमारे दैनिक फिटनेस रूटीन को भी प्रभावित किया है। हम अपने पारंपरिक अभ्यासों एवं जीवन शैली से अनजान बने हुए हैं, जो हमें स्वस्थ रख सकता है। बदलते समय के साथ हमारे समाज में स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता दी जा रही है। पहले व्यक्ति साइकिल से मीलों तक चलता था, लेकिन अब चलते समय कदम की गणना मोबाइल ऐप से करने लगा है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भारत में तीव्र गति से बढ़ रही हैं और इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा भारत में छोटे बच्चों में यह समस्या आम बात हो चुकी है। लेकिन हमारी जीवन शैली में छोटे बदलाव जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट इसी छोटे बदलाव के लिए एक प्रयास है। किसी भी व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति यदि स्वयं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रखता है तो वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकता है। फिटनेस केवल एक शब्द मात्र नहीं है, यह समृद्ध जीवन का एक मुख्य स्तंभ होता है। जब हम अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार करते हैं तो लोहे की भांति हम राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार तथा एक स्वस्थ समाज न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के लिए आवश्यक है।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में सामीन आसमात फरमाइए। पंडित कुमार गंधर्व से ये भजन।

0: सुबहदाई प्रोग्राम में सामने भी आप समाज सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व से भजन। इसके साथ ही आज का सुबहदाई प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: देश और दुनिया के इतिहास में 6 जून के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज सबसे पहले बात उस काले इतिहास की जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाए। 6 जून 1981 को बिहार के मानसी स्टेशन से एक ट्रेन सहरसा जा रही थी। ट्रेन में 1000 से अधिक यात्री सवार थे। रास्ते में बारिश होने लगी तो यात्रियों ने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और ट्रेन के अंदर ही सफर खत्म होने का इंतजार करने लगे। ट्रेन बागमती नदी के पुल से गुजर रही थी तभी अचानक से एक झटका लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता ट्रेन के 7 डिब्बे पुल से नीचे नदी में जा गिरे। बरसात की वजह से लबालब भरी बागमती ने 7 डिब्बों को अपने अंदर समा लिया।
2: लेट्स टॉक अबाउट द ईयर 1961 व्हेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन अ डीम्ड यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई टू इम्पार्ट पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेनली टू द इन सर्विस फिशरीज पर्सनल ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड ट्रेन्ड मैन पावर फॉर द फिशरीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज।
1: और श्रोताओं इतिहास के अगले अंश में बात अब जीन्स की। टी शर्ट शर्ट कुर्ता और लगभग सभी तरह के कपड़ों के साथ पहने जाने वाली जीन्स का इतिहास आज के दिन से जुड़ा है। वर्ष 1850 में लिवाई स्ट्रॉस ने आज ही के दिन पहली जीन्स बनाई थी। 1853 में स्ट्रॉस गोल्ड माइनिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को चले गए। वहां जाकर स्ट्रॉस कपड़े बेचने का कारोबार करने लगे और अपनी दुकान को उन्होंने नाम दिया लिवाई स्ट्रॉस एंड कंपनी।
2: In the year 2004, former President APJ Abdul Kalam granted the status of classical language to the Tamil language.
1: वर्ष 1999 में लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। श्रोताओं अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है। आज पुण्यतिथि है मास्ती वेंकटेश अयंगार की। वे कन्नड़ कहानी के प्रवर्तक और कन्नड़ की संपत्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कवि कहानीकार उपन्यासकार नाटककार अनुवादक और आलोचक थे। इनके लगभग 15 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं।
2: एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ शंभूनाथ पंडित द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ सिटिंग जज ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ इन ब्रिटिश इंडिया। शंभूनाथ पंडित वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ईश्वर चंद विद्यासागर एंड वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ फीमेल एजुकेशन एज वेल।
1: आज हिंदी सिने जगत के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त की जयंती है। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। सिनेमा की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर सुनील दत्त के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत उन्होंने श्रीलंका में रेडियो सिलोन में एक अनाउंसर के रूप में की। आवाज अच्छी थी, देखने में भी वो हैंडसम थे, तो किसी ने कहा मुंबई जाकर किस्मत क्यों नहीं आजमाते। वे मुंबई पहुंचे, संघर्ष किया, टिकट चेकर की नौकरी भी की। पहली तनख्वाह उनकी अगर हम बात करें तो थी 120 रुपए और पहली फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म। फिल्मों में वे ज्यादा नहीं चले मगर संघर्ष जारी रहा और फिर वो दिन भी आया जब मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने के बाद सुनील दत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके अलावा यूं तो सुनील दत्त पर कई खूबसूरत गीत फिल्माए गए हैं लेकिन हम आपके लिए चुनकर ये गीत लाए हैं और आज सुनील दत्त की जयंती पर इन कभी ना भूलने वाले गीतों से उन्हें आपसे रूबरू कराएंगे।

श्रोताओं, आज प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण की भी जयंती है। कई ऐसे खूबसूरत गीत हैं जिनकी रचना राजेंद्र कृष्ण ने की। उनके फिल्म खानदान के गीत तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिला।

श्रोताओं, भारत की विविधता का जैसे हमने जिक्र किया कार्यक्रम में इससे पहले, तो उसी तर्ज पर उन्होंने ये गीत भी लिखा जो आपके सामने प्रस्तुत है।

0: बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये शेर है शायर शौक बहराइची का, आज इनकी भी जयंती है। उनके शेरों को संकलित कर तूफान किताब की शक्ल दी गई है।
1: सभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह 9:50 हुए हैं, खबरें नष्ट होंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमसुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने

0: और दिल में कुछ और। लोग एक दूसरे की कामयाबियों और फरावानियों से खुश तो क्या होते, एक दूसरे के तई दिलों में नफरतें और अदावतें बिठाए हुए हैं। मुनाफकत और मुनाफरत को हर दीन और मजहब, कबीला व कौम और मुआशरे व समाज ने न सिर्फ ये के मजमूम समझा है, बल्कि इन दोनों बीमारियों को एक सेहतमंद मुआशरे की तरक्की में बड़ी रुकावट भी करार दिया है। मुनाफकत और मुनाफरत बजाते खुद नफसियाती बीमारियां तो हैं ही, मजीद ये के इनके नतीजे में बहुत सी दीगर मुआशरती और समाजी बुराइयां भी जन्म लेती हैं। मसलन हसद, कीना, बूज, झूठ, धोखा, गीबत, चुगलखोरी, खयानत वगैरह। इसीलिए मजहब इस्लाम अपने पैरोकारों को मुनाफकत और मुनाफरत से न सिर्फ ये के दूर रहने की पुरजोर ताकीद करता है, बल्कि इन दोनों को गुनाह अजीम भी करार देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फी कुलूबिहिम मरव, तर्जमा, उनके दिलों में रोग और बीमारी है। इस्लाम मुनाफकत को एक बीमारी से ताबीर करता है और जाहिर है कि हर बीमारी अपने कुछ अलामात से पहचानी जाती है और इस बीमारी के कुछ नुकसानात भी होते हैं। उस बीमारी की एक अलामत अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई, युखादिउन अल्लाह वल्लजीन आमनू, तर्जमा, वो लोग अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जबकि नुकसान से मुतालिक इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफल मिनन नार, तर्जमा, बिलाशुबा मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफकत की कुछ अलामात बयान फरमाई हैं। मसलन, मुनाफिक जब भी बात करता है झूठ बोलता है, जब बहस करता है तो गाली गलौज पर उतर आता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है, जब वो किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निफाक से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि वो हर एक के मुंह पर उसे खुश करने के लिए उस जैसा कलाम न करे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बदतरीन आदमी वो है जो दो चेहरों वाला हो। ऐसा आदमी जब एक के पास जाता है तो उसके मतलब की बात करता है और जब दूसरे के पास जाता है तो बयान बदलकर उसके मतलब की बात करता है। अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि ये वो तमाम खराबियां हैं जो आज हमारे मुआशरे का हिस्सा बनी हुई हैं। अगर हम अपने मुआशरे को तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो हमें मुनाफकत और मुनाफरत की जगह खुलूस और मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा, ताकि हम, हमारा समाज और मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सके।
1: सरंगी आप सब सुन रहे थे अकमाल जरिए पर मबनी प्रोग्राम शमे फरोजा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। हुस्न गजल प्रोग्राम में सामीन समात फरमाई शोभना राव और चंदन दास की गाई गजली। लीजिए पहले समात फरमाई शोभना राव से शकील बदायूनी का ये कलाम।

0: वक्त इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे, किसी को कुछ मालूम नहीं। जब वक्त मेहरबान होता है तो वो आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा देता है और दुनिया की हर दौलत, इज्जत, शोहरत, चाहत आदमी के कदमों में बिछा देता है। और यही वक्त जब किसी का बिगड़ा हो तो वो दुनिया की हर खुशी उसे छीन लेता है। वक्त का ये मजाक कभी कभी आदमी के साथ लगातार चलता रहता है और आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए ये मिसाल मशहूर हुई कि कभी किसी का वक्त एक सा नहीं रहता।
1: हिंदुस्तान की आजादी अपने दामन में इस वसी और अरीज मुल्क की तकसीम भी ले आई और 18 बरस के नौजवान बल्लाज दत्त को पंजाब के अपने गांव खुर्द जिला झेलम से बेदखल होकर हिंदुस्तान में सूबे हरियाणा के जन्नानगर के गांव मंडोली में आना पड़ा। बल्लाज दत्त 6 जून 1929 को पंजाब के जिला झेलम, जो पाकिस्तान में है, उसके एक छोटे से गांव खुर्द के एक जमींदार खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था और वो आर्मी में मुलाजिम थे।

0: बलराज दत्त बचपन से ही बहुत शरारती और नटखट थे और छोटे दीवान कहलाते थे और एक मुलाजिम के साथ घोड़े पर बैठकर स्कूल जाया करते थे। अपनी माँ श्रीमती कुलवंत देवी को वो प्यार से वंतु कहते थे। बचपन में बलराज को गुस्सा बहुत आता था। एक बार वो अपनी माँ पर इतना गुस्सा हुए कि घर का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगाकर चले गए। गांव वाले इन्हें पूरे गांव में ढूंढते फिरे और आखिर में वो अपने ही मकान की छत पर एक खुली चारपाई पर सोते हुए मिले।
1: अभी वो 5 बरस के ही थे जब उनके सर से बाप का शफीक साया उठ गया, बल्कि तकसीम के नतीजे में उस खानदान का सब कुछ खत्म हो गया और ये सब महाजरीन बनकर हिंदुस्तान में हरियाणा के एक गांव मंडोली में आबाद हो गए, जहां उनको हुकूमत की तरफ से कुछ जमीन दे दी गई।
0: छोटे भाई सोमदत्त, माँ और एक छोटी बहन रानी की जिम्मेदारी अब पूरी तरह बलराज दत्त के कांधों पर थी, लिहाजा वो माँ से ये वादा करके कि वो बीए तक की तालीम जरूर हासिल करेंगे, रोजगार की तलाश में बंबई चले आए और रीगल सिनेमा के पीछे एक नाई की दुकान में रात को सोने का इंतजाम कर लिया। यही नाई मुफ्त में इनका शेव भी करता था और कभी कभी बाल भी काट दिया करता था।
1: बंबई आकर बलराज दत्त ने बड़ी जद्दोजहद की और किसी तरह बेस्ट यानी बीईएसटी में वर्कशॉप रिकॉर्डिस्ट की मुलाजमत 100 रुपए महाना पर हासिल कर ली। मुंबई में एक रिफ्यूजी कॉलेज कायम किया गया, इसमें मॉर्निंग क्लासें हुआ करती थी। बलराज दत्त सुबह 7:30 बजे कॉलेज जाया करते और फिर दोपहर को 2:30 बजे से रात 11:30 बजे तक कुनावा के डिपो में मुंबई की बसों का हिसाब किताब लिखते।
0: कुछ दिनों बाद बलराज दत्त ने रेडियो सैलून के एक प्रोग्राम लिप्टन के मेहमान के लिए फिल्मी अदाकारों और फिल्म साजों और हिदायतकारों से इंटरव्यू करने शुरू किए। इस प्रोग्राम के लिए उन्हें बहुत मामूली सी तनख्वाह

0: इसके बाद आपकी फिल्म में काम करूंगा। रमेश सहगल मान गए और इस तरह उन्होंने तकरीबन एक साल इंतजार किया और फिर सन 1954 में शुरू हुई इस फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से बलराज दत्त ने सुनील दत्त के नाम से फिल्मों में अदाकारी की शुरुआत की।
1: ये फिल्म एक साल में बनकर सन 1955 में रिलीज हुई, मगर इस फिल्म को ज्यादा कामयाबी हासिल न हो सकी। सुनील दत्त फिर भी मायूस न हुए। उसी साल उनको तीन फिल्में और मिली, जिनमें से एक बी आर चोपड़ा की, एक ही रास्ता थी।

0: काफी।
1: बीआर चोपड़ा उस वक्त तक एक कामयाब फिल्मसाज और हिदायतकार के तौर पर अपने आप को कायम कर चुके थे और उनकी फिल्म में काम करना सुनील दत्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस फिल्म को कामयाबी भी मिली। फिल्म एक ही रास्ता के बाद सुनील दत्त बीआर चोपड़ा के मुस्तकिल अदाकार बन गए और बाद में उन्होंने चोपड़ा की हमराज, साधना, वक्त और गुमराह जैसी कामयाब फिल्मों में काम करके अपनी अदाकाराना सलाहियतों को मनवा लिया।

0: आए भी।
1: फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त की जिंदगी का एक सबसे अहम वाकया भी जुड़ा हुआ है, जिसने सुनील दत्त की जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया। इसी फिल्म में उस वक्त की मकबूल अदाकारा नरगिस कॉमेडी रोल अदा कर रही थी और सुनील दत्त ने उनके छोटे बेटे का रोल अदा किया। फिल्म के एक मंजर में

0: दौरान नरगिस को बिरजू तो नहीं मिला, मगर वो खुद हकीकतन चारों तरफ लगी आग में घिर जाती है। तब सुरेंद्र को मालूम होता है कि नरगिस आग और धुएं में घिर गई है। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस आग में कूद जाते हैं और नरगिस को जिंदा बचा लाते हैं। अल्लामा इकबाल के इस शेर के मुताबिक के बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, आकर है नहरे तमाशाए लबे बाम अभी।
1: इस वाक्य से नरगिस इतनी ज्यादा मुतासिर हुई कि उन्होंने अपने सारे मामलात पसे पुश्त डालकर और बहुत से लोगों की मुखालफत को नजरअंदाज करते हुए खुद से उम्र में काफी छोटे सुनील दत्त से शादी करने का फैसला कर लिया। सुनील दत्त ने बड़े तजब्जुब के साथ नरगिस के सामने शादी की तजवीज रखी और आखिरकार 11 मार्च सन 1958 को दोनों ने शादी कर ली।
0: नरगिस के बड़े भाई अख्तर हुसैन इस शादी के खिलाफ थे, मगर छोटे भाई अनवर हुसैन को कोई एतराज न था। शादी के रोज नरगिस अपने घर से ये कहकर निकली कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम शादियां उस वक्त और भी ज्यादा मुश्किल थीं, चाहे वो फिल्म स्टार ही क्यों न हो।
1: सुनील दत्त से मिलने का वक्त शाम 7 बजे का था। लिंकिंग रोड पर आर्य समाज के करीब सुनील दत्त खड़े हुए नरगिस का इंतजार कर रहे थे। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हत्या की रात के 10 बजे तक नरगिस का कहीं पता न था। वहां से हटकर सुनील दत्त फोन करने नहीं जा सकते थे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वो वहां से हटें और नरगिस आ जाएं और सुनील को खास मकाम पर न पाकर लौट जाएं। वो इसी उधेड़बुन में रहे कि कहीं नरगिस ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया।
0: दूसरी जानिब नरगिस ट्रैफिक में फंस गई। उसी दिन पोप जॉन पॉल हिंदुस्तान आए हुए थे। बम्बई में उससे कबल इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम कभी नहीं हुआ। नरगिस टैक्सी भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से दूसरी टैक्सी न मिली तो, और न ही वहां पार्किंग की गुंजाइश थी। यह सुनील दत्त का ही हौसला था कि वो अपने मकाम पर डटे रहे और इंतजार करते रहे। तो खुदा खुदा करके 10 बजे के बाद नरगिस वहां पहुंची और ये शादी हो सकी।
1: बाद में सुनील दत्त और नरगिस की ये शादी फिल्मी दुनिया की एक मिसाली शादी साबित हुई और नरगिस ने हर अच्छे बुरे वक्त में सुनील दत्त का साथ एक बेहतरीन दोस्त और एक गमगुसार बीवी के रूप में दिया।

और जिससे शादी के बाद सुनीलदत्त की कामयाबियों का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ। उनकी एक के बाद एक फिल्म कामयाबी हासिल करती चली गई। साधना, सुजाता, इंसान जाग उठा, एक फूल चार कांटे, मैं चुप रहूंगी और गुमराह जैसी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें हीरो से स्टार

0: फिल्म मुझे जी ने दो में तो उन्होंने डाकू के किरदार को इस तरह जिंदगी बख्शी कि आज भी फिल्म दीनों के जहनों में वो किरदार महफूज है।
1: सुनील दत्त एक बाहिम्मत जवा हौसला और मर्दाना शख्सियत का नाम था। मदर इंडिया की आग के वाकये की तरह ही एक फिल्म हिमालय से ऊंचा की लद्दाख में शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन बर्फानी तूफान में घिर गई। सुनील दत्त ने हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए उसी बर्फानी तूफान में हीरोइन को तलाश किया और उसकी जिंदगी बचाई।
0: फिल्मों में अदाकार के बतौर अपनी शख्सियत मनवाने के बाद सुनील दत्त ने अजंता आर्ट ग्रुप के नाम से न सिर्फ फिल्म साजी और हिदायतकारी शुरू की बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए बहुत से चैरिटी प्रोग्राम भी पेश किए और सन 1962 में हिंद चीन की जंग के वक्त मुल्क की सरहदों पर जाकर अपने फौजी भाइयों की हौसला अफजाई दिलजोई और तफरीह के लिए दिलचस्प प्रोग्राम भी पेश किए। हालांकि कई बार उनको खतरनाक बर्फीले इलाकों में भी ऐसे प्रोग्राम करने के लिए जाना पड़ा जब मुल्क पर कोई मुसीबत आई। सुनील दत्त हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए पेश रहे।
1: फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त ने नेगेटिव रोल निहायत कामयाबी के साथ अदा किया मगर अपने हीरो की इमेज को तोड़कर फिल्म पड़ोसन में पहली बार सुनील दत्त ने कॉमेडी किरदार अदा किया। हालांकि इस फिल्म में महमूद और किशोर कुमार जैसे कॉमेडियन भी मौजूद थे मगर अपने भोलेपन और अहमकाना हरकतों वाले इस किरदार में सुनील दत्त ने बेहतरीन अदाकारी की।

मणिकार थी रणधीर किशन, वंशीकार मदन मोहन, फिल्म थी देख कबीरा रोया। रणधीर किशन के लिखे के नगमों की अगर बात की जाए तो एक नगमा उनका किसी जमाने में बहुत मकबूल हुआ था और उसको सुनने में का जब लुत्फ का एहसास होता था, वो लुत्फ आज भी यहां बरकरार है। वो फिल्म थी पतंगा, जिसका नगमा था मेरे पिया गए रंगून, और इसे मौसीकी सजाया था सी रामचंद्र ने, और इसमें शमशाद बेगम का साथ दिया था चितलकर ने।

0: आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम इस वक्त आप सुन रहे हैं राजेंद्र किशन के लिखे गीत उनके यौम पैदाइश के हवाले से। राजेंद्र किशन की फिल्मों की अगर बात की जाए तो यानी उनकी जो नगमा निगारी से सजी फिल्में हैं उनमें एक फिल्म थी गोपी, जिसने राजेंद्र किशन की नगमा निगारी को चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम की गई पेशकश इसी फिल्म से कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी सजा
1: तेरी तो जरूर सुनेगा। अच्छा बाबा बुलाते हो, काम तो मत खाओ।

रहे हैं राजेंद्र किशन के लिखे गीत आज मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत। आज उनका यौम पैदाइश है। प्रोग्राम की अगली पेशकश तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसिकारों शंकर जयकिशन।

Ой, мужик.

शोले शोले।

इस प्रोग्राम के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशे खिदमत है, जहां बड़ी सिमरूवी की तहरीर का द फ्यूचर मसीहा दर्द का ये दूसरा हिस्सा।

0: मेरे साथ।
1: पुलिस के इंतकाल के बाद उन्होंने एक बार फिर अपने इमेज को तोड़ा और विलन और एंग्री मैन के किरदार अदा किए। फिल्म जख्मी इंसान और भाई भाई में उन्होंने एंग्री मैन का किरदार अदा किया और बीआर फिल्म्स की फिल्म 36 घंटे में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया। इसी तरह फिल्म गीता मेरा नाम में भी वो एंग्री मैन और विलन के मिले जुले किरदार में नजर आए। ये सब कोशिश उन्होंने अपनी किरदार निगारी और अदाकारी में तनाव पैदा करने के लिए की थी।

0: राजस्थान की खुश्क जिंदगी पर एक तजुर्बाती फिल्म रेशमा और शेरा बनाई। इन दोनों फिल्मों की तारीफ दिलीप कुमार ने भी की थी।
1: सुनील दत्त हर किरदार में अपने आप को ढाल लेते थे, चाहे गांव का नौजवान हो या फिल्म गुमराह का मायूस आशिक या मुझे जीने दोगा शेर दिल डाकू जिसकी आंखों से शोले लपकते हैं। फिल्म मिलन का गोपी नाव वाला जो अपनी मालकिन बीबी जी को कॉलेज के फंक्शन के लिए सावन का महीना पवन करे शोर गीत याद कराता है। फिल्म वक्त का वकील जो अपने भाई राजू को फांसी के फंदे से बचा लेता है। फिल्म हमराज का वो मशहूर गीतकार जो अपनी आवाज से फजाओं को मुअत्तर कर देता है। फिल्म पड़ोसन का भोला जो अपनी महबूबा सायरा बानो को हासिल करने के लिए अपने उस्ताद किशोर कुमार की आवाज का सहारा लेता है। इसी तरह सुनील दत्त ने फिल्म साधु और शैतान, मेरा साया, खानदान, सुजाता, मेहरबान, गीता मेरा नाम और गजल वगैरह फिल्मों में अपनी जिंदगी के बेहतरीन किरदार अदा किए।

0: किरदार बाप का किरदार अदा करते हुए सन 1981 में अपने बेटे संजय दत्त के लिए फिल्म रॉकी बनाई। उन्होंने संजय दत्त से साफ अल्फाज में कह दिया था कि इसके बाद वो संजू बाबा की कोई मदद नहीं करेंगे और उसे खुद अपनी सलाहियतों के सहारे ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना होगा।
1: नरगिस दत्त की बड़ी तमन्ना थी कि वो फिल्म रॉकी मुकम्मल होने पर अपने बेटे को पर्दे सीनी पर देखें, मगर रॉकी मुकम्मल होने से कबल ही नरगिस दत्त की जिंदगी मुकम्मल हो गई और वो ये फिल्म नहीं देख सकी।

0: हालांकि रॉकी उसके बाद की कई फिल्में संजय दत्त को ज्यादा कामयाबी न दे सकी, मगर बाद में जब उन्होंने नशे की आदत से तौबा कर ली और अपनी सारी तवज्जो अदाकारी पर मरकूज की, तब वो एक कामयाब अदाकार के तौर पर खुद की पहचान कायम कर सके।
1: अदाकारी के अलावा सुनील दत्त ने फिल्म साजी और हिदायतकारी के मैदान में भी अपनी अलग शनाख्त कायम की। ये रास्ते हैं प्यार की, मुझे जीने दो, यादें, रॉकी, रेशमा और शेरा, डाकू और जवान, दर्द का रिश्ता और ये आग कब बुझेगी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ समाज की आईनादारी की बल्कि नाजरीन की पसंदीदगी और दाद भी हासिल की।
0: दिलीप कुमार के बाद सुनील दत्त ही फिल्मी दुनिया की दूसरी शख्सियत हैं जिनको बॉम्बे के शरफ के ओहदे के लिए नामजद किया गया। उन्होंने सच्चे दिल और लगन के साथ अपने फराइज अंजाम दिए। उनकी बीवी नरगिस दत्त को राज्यसभा का मेंबर नामजद किया गया और वो भी उनको कौम की खिदमत में अपने शौहर के शाना बशाना हिस्सा लेती रही। नरगिस को हुकूमत हिंद की तरफ से सन 1980 में पद्मश्री का एजाज भी मिला और साबिका वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके जाती ताल्लुकात भी थे। श्रीमती दत्त को जब कैंसर के इलाज के लिए अमरीका जाना पड़ा तो सुनील दत्त ने उनकी खिदमत और ईमानदारी में दिन रात एक कर दिए और अपने सारे काम सारे प्रोग्राम कैंसिल करके नरगिस दत्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर खुदा की मर्जी के आगे इंसान की कब चली है।
1: नरगिस दत्त 3 मई सन 1981 के दिन सुनील दत्त को अकेला छोड़कर चली गईं और इस तरह सुनील दत्त का सबसे अजीज दोस्त मोहसिन और हमदर्द उनसे जुदा हो गया। सुनील दत्त की सेक्युलर शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी उस वक्त लोगों के सामने आई जब उन्होंने नरगिस दत्त की वसीयत के मुताबिक उनकी इस्लामी रसूम के मुताबिक तदफीन की।

0: सुंदर अजम और हौसले का ही दूसरा नाम था। जब सन 1981 में कैंसर के मुजीमस से नरगिस का इंतकाल हो गया तो वो जैसे टूट से गए, पर जल्द ही उन्होंने खुद पर काबू पाया और इसी मौजू पर फिल्म दर्द का रिश्ता बनाई, जो अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म थी। सुनील दत्त ने इस फिल्म की तमाम आमदनी कैंसर अस्पताल में बतौर अतिया दे दी। इसके अलावा टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर वार्ड नरगिस दत्त के नाम पर खुलवाया ताकि कैंसर से हत्या जंग जारी रखी जा सके।
1: बाज इतफाकत भी बड़े अजीब होते हैं। फिल्मसाज और हिदायतकार महबूब खान ने राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त को दो सगे भाइयों के तौर पर फिल्म मदर इंडिया में पेश किया था। ये दोनों फिल्मी दुनिया में कामयाब हुए। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से शादी की। दोनों ने आसपास ही बंगले खरीदे। दोनों के घर पहले एक एक लड़का पैदा हुआ और बाद में दो दो लड़कियां और चौथी कोई औलाद नहीं हुई।
0: दोनों ने अपने अपने बंगलों में अपने अपने थिएटर बनवाए। दोनों प्रोड्यूसर बने। दोनों ने अपने अपने लड़कों के लिए फिल्म बनाई और दोनों के लड़के हीरो बने। राजेंद्र कुमार के लड़के कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की लड़की नम्रता दत्त से हुई और दोनों एक दूसरे के समधी बने। ये सब हकीकतें हैं, मगर हसीन इत्तेफाक भी।

मसीहा दर्द का सामने भी आप सुन रहे थे जनाब अनीस अमरोही की तहरीर का द फीचर का ये दूसरा हिस्सा। ये फीचर सुनील दत्त की शख्सियत और खिदमात के हवाले से था आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर। ये खिराज अकीदत था उर्दू सर्विस की जानिब से। पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी, मालूम थे दानिश असगर जैदी, सलाहकार थे शगुफ्ता यासमीन और अली मोहतशिम रजा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, दिन के 12 बजे अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप मुजीब अख्तर से खबरें सुनिए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अकवाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारतीय मईशत आलमी इक्तिसादी बुहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारत के GDP की शरणुमू का अंदाजा 2025-26 में 7.7% लगाया गया है, जबकि 2024-25 में ये 7.1% थी। रूस के साथ व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हमनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ज़ाती तौर पर बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख खत्म की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अखबार में तफसील से भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के लिए अकवाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरेश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न होने वाला हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराहकुन बातें करके काउंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जनरल असेंबली को दी गई काउंसिल की सालानी रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज के इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के साथ सख्त एहतियात दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वादे मौकफ को दोहराया है कि नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खिताब भारत का टूट और नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिले वापसी इलाक हुआ था। उम्र खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसायल को नहीं छुपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों

अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: अपनी बुराइयों को छुपाते हो?
1: सामिन, भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था राबिया बसरी, पेश कर रहे थे जनाब शाह इमरान हुसैन, और पेश है मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के कुछ और नगमे।

इंसान जाग उठा, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मौसीकार थे एस डी बर्मन। मिली सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार की मौसीकी से जयनवा। फिल्म है एक ही रास्ता, आवाजें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

0: आज के मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम में सामिन आप सुन रहे थे सोहेल दत्त की फिल्मों के नगमे। आज उनका यौम पैदाइश है। यह प्रोग्राम ख्याल अकीदत था उर्दू सर्विस की जानिब से अपने जमाने की मारूफ अदाकार सोहेल दत्त के लिए। मीडियम में भी 1971 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन का एक बजा है, अब आलमी खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असमिल्ला से आलमी खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारत की GDP की शरह नमो का अंदाजा 2025-26 में 7.7% लगाया गया है, जबकि 2024-25 में यह 7.1% थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ज़ाती तौर पर बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रणवानंदा ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान के बार बार इसकी रट लगाने और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और रहेगा, जिसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। जहां पी हरीश जनरल असेंबली में पेश की गई काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जे में लिए गए भारत के इलाकों में नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली चुनाव के लिए आम चुनाव कराने के पड़ोसी मुल्क के मंसूबों पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। वहां कल ये इंतखाबात होना है। भारत ने अपना ये जाना माना मौकिफ दोहराया है कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है वो भारत का अटूट अंग है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, जो 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ मुकम्मल कानूनी और नाकाबिले तंसीख इल्हाक का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती

0: लेबनान से इसराइली फौजों की मुकम्मल वापसी की शर्त शामिल की जाए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बैलिस्टिक दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैलिस्टिक खलीज बंगाल के खित्ते के पार खुशहाली, तरक्की और राबते की समत में पेशकदमी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने बाहमी तआवुन और यकजहती के जज्बे के साथ बैलिस्टिक के मेंबर मुल्कों के साथ तआवुन और इश्तराक का तहिया कर रखा है। शतरंज के ग्रांड मास्टर आर प्रगनानंदा ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारत की GDP के शरह नमू का अंदाजा 2025-26 में 7.7% लगाया गया है जबकि 2024-25 में यह 7.1% थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम सब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जाती तौर पर बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी है। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए अक़वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल की रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारत की जीडीपी की शरह नमू का अंदाजा 2025-26 में 7.7% लगाया गया है, जबकि 2024-25 में यह 7.1% थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हमनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जाती तौर पर बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये थी इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। समय दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: कुल सही गैस किया है तो इस फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम। जी हां, साहिब बीबी और गुलाम 1962 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक बेहद प्रतिष्ठित और सदाबहार क्लासिकल हिंदी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया है और निर्माण एवं सह निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। इसके साथ साथ गुरुदत्त ने इस फिल्म में अभिनय भी किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मीना कुमारी छोटी बहू के रूप में है, गुरुदत्त भूतनाथ के रूप में है, रहमान छोटे बाबू के रूप में है और वहीदा रहमान जवा के किरदार में शामिल हैं।

श्रोताओं, ये फिल्म साहेब बीबी और गुलाम बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसे गुरुदत्त के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल के सामंतवाद और जमींदारों के पतन को दर्शाती है। ये फिल्म बिमल मिश्रा के मशहूर बंगाली उपन्यास साहेब बीबी गुलाम पर आधारित है। श्रोताओं, आपको बता दें, ये फिल्म 29 जुलाई 1962 में रिलीज हुई। हालांकि ये व्यावसायिक रूप से उतनी ज्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म ने कुल 84 लाख की कमाई की, फिर भी समीक्षकों ने इसकी सराहना की। कलाकारों के अभिनय, विशेष रूप से मीना कुमारी के अभिनय और वीके मूर्ति के छायांकन की सबसे अधिक प्रशंसा हुई।

श्रोताओं, साहिर बीबी और गुलाम फिल्म का संगीत हेमंत कुमार ने दिया था और गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। फिल्म के कुछ बेहद लोकप्रिय गाने आज भी चाव से सुने जाते हैं। श्रोताओं, इस फिल्म ने कुल 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, अबरार अलवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और वीके मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार मिला।

श्रोताओं, बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक सीधा साधा युवक भूतनाथ काम की तलाश में कलकत्ता आता है और एक बड़ी हवेली में रहने लगता है। वह छोटी बाबू की खूबसूरत लेकिन बेहद अकेली पत्नी छोटी बहू के संपर्क में आता है। छोटे बाबू को शराब पीने और वेश्याओं के कोठे पर जाने की लत होती है, जिससे परेशान होकर छोटी बहू उन्हें घर पर रोकने की हर संभव कोशिश करती है। अपने पति का प्यार पाने और उन्हें रोकने के लिए छोटी बहू भी शराब पीना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसकी आदि हो जाती है। भूतनाथ और छोटी बहू के बीच एक पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता पनपता है, जहां भूतनाथ उसका शुभचिंतक या फिर यूं कहें गुलाब बन जाता है। अंततः यह कहानी इस पूरे परिवार और साम्राज्य के दुखद अंत की ओर ले चलती है।

श्रोताओं, फिल्म कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने यह फैसला लिया था कि वो कभी किसी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे और यही वजह थी कि साहेब बेबी और गुलाम फिल्म के निर्देशक उनके लेखक दोस्त अबरार अलवी ने किया था। साथ ही वहीदा रहमान इस फिल्म में मीना कुमारी का किरदार यानी छोटी बहू की भूमिका निभाना चाहती थी, पर उनकी कम उम्र को देखते हुए गुरुदत्त ने मना कर दिया था। श्रोताओं, फिर वहीदा रहमान ने अबरार अलवी से कहकर अपने लिए इस फिल्म में रोल लिखवाया और फिल्म का हिस्सा बनी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह का कहना कि भारत आई में आर्थिक अनिश्चितता के समय दुनिया की सबसे तेजी में बढ़ रही प्रमुख आर्थिकता वक्त पर है। भारत ने कहा कि विदेश मंत्री अस्थान नई दिल्ली में व्यापार निवेश संपर्क ऊर्जा समेत मुख्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने आज के हिता के मामलों की चर्चा करेंगे। पंजाब के सड़क हादसे में घटोघट 9 नेताबाद के बाल हो जख्मी। मॉरिशस में इबोला वायरस के फैलन के प्रतिक्रम वजो पिछले 21 दिनों में कांगो युगांडा के दक्षिणी सुदान की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के दाखिले को अस्थायी पाबंदी लगा दी है। 48 का फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से है। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह ने किया कि भारत अजिहे समय में दुनिया की सबसे तेजी में बढ़ रही प्रमुख आर्थिकता वजह अगर बहुत सारे देश आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। माली साल 2025-26 7.7% की रजिस्टर्ड जीडीपी विकास दर का हवाला देते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह प्राप्ति पिछले 12 साल बने भारतीय आर्थिकता के मुश्किलेपण इसकी ताकत में दर्शाती है। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई हेठ भारत ने आर्थिक विकास में स्थिरता विश्वास और सहयोगता नाल जोड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण नवीनता बुनियादी ढांचे उत्तमता ध्यान केन्द्रित करने श्री मोदी की अतुट वचनबद्धता और आर्मी चुनौतियां विचों देश में अगे वधाने की उन्होंने योगता ने भारत में प्रोसमन वसीला तो विश्व पद्धत से सम्मानित आर्थिक शक्ति वाले देश को बदल दिता है। उन्होंने किया कि शानदार विकास का ही नए मौके पैदा होना और 140 करोड़ भारतीयों की आशा उम्मीदों को मजबूत करना जारी है। पहला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय आर्थिकता भी बेहद मजबूत है तो आलमी आर्थिक संकट के बावजूद देश ने माली साल 2025-26 7.7% मजबूत विकास दर दर्ज की है। कल शाम दमन में करीब 2,970 करोड़ रूपये के विकास प्रोजेक्टों की शुरूआत करने के बाद एक बड़े इकट्ठ में संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही आर्थिकताओं में एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर अस्थान नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल बात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग दौरान दोनों तरह व्यापार निवेश संपर्क ऊर्जा के लोगों के संबंध समेत मुख्य क्षेत्रों में सहयोग प्रदान के उद्देश्य नाल आपसी हितों मामलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्रालय के बुलावे मंत्री जयसवाल ने कहा कि दौरा भारत और नेपाल के साथ विशेष भागीदारी में होर मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश विकास सहयोग लोगों के लोगों के संबंध व्यापार और निवेश समेत आपसी हित के होर क्षेत्रों में शामिल करने वाले विशाल एजेंडा साझा करते हैं। इस दौरान नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा जो कि भारत के 3 दिनों दौरे ते ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमएसए अजीत डोवाल नाल मुलाकात की थी। भारत और नेपाल के दूत के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने नेपाल भारत दोवाले संबंधों को होर मजबूत करने के उद्देश्य नाल वख वख मुद्दों पर चर्चा की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्लोवेनिया से नवनियुक्त हुए विदेश मंत्री टोन का

सारे पीड़ित को परिवार के मेंबर्स मैन यहाँ स्वस्थ में मात्र है जो आप देख के रिश्तेदार दिया उसका ब्याज परिवार विच प्रवाह कर जा रहे सन। कई पीड़ितों की मौके से ही मौत हो गई जो कि जख्मियों ने फिर उसको अस्पताल के फरीदकोट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। पुलिस हल्के ने आकाशवाणी को दिखाया कि बाई लोगों की कुछ हालत गंभीर हुई। सीनियर पुलिस अधिकारी हादसे वाली थान को पहुंचे तो स्थानीय लोगों की मदद नाल बचाव मुहिम चलाई गई। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधु ने पंजाब के राज्यपाल के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक कुमार चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के खेल मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली उपराष्ट्रीय मात्रा के वक्त मुद्दों पर व्यापक चर्चा की थी। नौजवाना खास करके सरहदी इलाकों के लोगों को हुनर विकास प्रोग्रामों प्रभावशाली ढंग जोड़न बारे भी विस्तार न गलबात हुई। दोनों शख्सियतों ने 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण प्राप्त करने की नौजवानों की शक्तिकरण और हुनर विकास महत्वपूर्ण थम दसिया कि इस दिशा में निरंतर कोशिशों की जरूरत के जोर दिता। केंद्रीय सभ्याचार के सैर सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठ किया कि भारत की सोच समर्था पिछले 12 साल 2.8 GW तो वक्त 155 GW हो गई है। इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 40 लाख सूर्य ऊर्जा न प्रकाश बालने के खेतीबाड़ी खेतर सूर्य समर्था का दुगना होना चुगिरदे की संभाल के नाम में प्रगति का सबूत है। भारत की नोएडा अथॉरिटी AAI ने देश भर में हवाई यात्रा करने वाले मुसाफरों के टुकड़े संपर्क में मजबूत करने लिए 2 प्राइवेट कैब कंपनियों समझौता पत्र एमओयू से दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में AAI ने कहा कि इन समझौते मुसाफरों को विश्व पद्धर के मुसाफर केंद्र की यात्रा अनुभव में प्रदान करने की आत्मी वचनबद्धता की पुष्टि करते हैं। इसी तरह किया गया कि कैश भारत के प्रमुख हवाई अड्डा के मुसाफरों लिए सहज किफायती भरोसेमंद कैब सेवा प्रदान करेंगे। मॉरीशस ने उन्होंने विदेशी नागरिकों के दाखिले से अस्थायी तौर पर पाबंदी ला दी है जिन्होंने पिछले 21 दिन में कांगो युगांडा के दक्षिणी सुडान की यात्रा की थी या इस बार गुजरे ने। एक कदम इबोला वायरस के फैलन के प्रतिकरण भी चुका गया। स्थानक नागरिका को कारोबारी या विद्यार्थी परमिट रखने वाले विदेशी नागरिकों को देश में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि जेकर उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने किसी भी देश की यात्रा की थी तो उन्होंने 21 दिन में क्वारंटीन करने की लोड़ होगी। प्रभावित देशों को आने वाली यात्रा में प्रवेश स्थानों से स्क्रीनिंग और जोखिम मूल्यांकन भी लाजमी होगा। भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज श्रेयस भरत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने सत्तवार टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी की थी। उन्होंने अपना आखिरी मैच फरवरी 2024 विशाखापट्टनम में चेन्नई के खिलाफ खेला था। मारवाड़ अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। यह मैच आफ्टरनून 12:30 बजे शुरू होगा। औरतों की स्टार फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच गोवा के मडगांव में 6:30 बजे शुरू होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्कात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सही बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तस्दीक की है। पंजाब में आसू फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। आईएमडी ने कल तक केरलम और माही में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और क्रिकेट में शिवराज अय्यर को भारतीय टीम T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी पहली मरतबा टीम में शामिल हुए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्कात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सही बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीकेकार के तहत आमतौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्कात और रियासती सरकारी तमस्कात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीकेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर खनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्या समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सिफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गर्ज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में आग लगने के हादसे के सिलसिले में केशव नेगी नाम के होटल के एक बावर्ची को गिरफ्तार किया है। इस माह की 3 तारीख को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया था और इसमें 21 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दीगर 40 जख्मी हो गए थे। इससे कबल पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल और दीगर मुतालिका दफात के तहत होटल के मालिक को भी हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में मजीद पूछताछ और तहकीकात जारी है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और इम्तिहानात के पेपर फिर से जांचे जाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर बोर्ड ने कहा कि

0: अब इतवार की आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला दरख्वास्त दाखिल करने के अमल को मुकम्मल करने की खातिर तलबा को इजाफी वक्त फराहम करने के लिए किया गया है। इससे कबल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जून थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी के एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन, जिनका ताल्लुक एक ही कुनबे से था, वो अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां ब्यास नदी में बहाने के लिए वहां जा रहे थे। कई लोग मौके पर ही हलाक हो गए जबकि जख्मियों को इलाज के लिए फिरोजपुर सिविल अस्पताल और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस जराये ने आकाशवाणी को बताया कि 22 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। सीनियर पुलिस अहदेदारान हादसे के बाद जल्द ही हादसे के मकाम पर पहुंचे और मकामी लोगों की मदद से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। जख्मियों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बहुत से मुल्कों को इक्तसादी गैर यकीनी का सामना है, भारत एक सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बड़ी मईशत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने 2025-26 के माली साल के दौरान अंदरूनी मुल्क 7.7% शरह तरक्की का जिक्र करते हुए ये बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक केरलम और माही में कहीं कहीं बहुत शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारतीय आम का लुत्फ लेने और उसे फरोग देने के सिलसिले में दूसरे मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आज अमरीका के सिएटल में एहतमाम किया गया। फलों के राजा आम के 100 से ज्यादा सरकर्दा दरामदकार इसमें शामिल हुए और यहां आमों की कई अकसाम को नुमाइश के लिए रखा गया था, जिनमें महाराष्ट्र से अल्फांसू और केसर, आंध्र प्रदेश से बागनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश से लंगड़ा और दशहरी और गुजरात से राजापुरी शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिएटल में भारतीय कौंसलर जनरल ने गुज़श्ता बरस जुलाई में यहां आम की भारतीय अकसाम को मुतारफ कराने की पहल की थी और भारत और ग्रेटर सिएटल इलाके दोनों में मुख्तलिफ मुतालिका फरीकों के साथ शराकत दारी कायम की ताकि अमरीकी सारिफिन के लिए कॉस्टको जैसे बड़े रिटेल आउटलेट्स में भारतीय आम की प्रीमियम अकसाम दस्तियाब कराई जा सके। इस साल अप्रैल में कॉस्टको के सीईओ के साथ एक मीटिंग के बाद इन कोशिशों में नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके बाद कॉस्टको के स्टोर्स में महाराष्ट्र से अनार की भगवा किस्म और इसके बाद केसर आम सारिफिन के लिए मंगवाया गया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात प्रोग्राम में भारतीय आमों की कई तरह की अकसाम के बारे में बात की थी और आम की पैदावार करने वाले किसानों की इस फल को आलमी बाजार तक ले जाने के लिए सताइश की थी।
2: आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
1: भारत सरदस्त आम की पैदावार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 2.60 करोड़ मेट्रिक टन सालाना आम की पैदावार होती है और 1000 से ज्यादा आम की अकसाम पाई जाती है। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सकाफत और सैर सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत की शमसी बिजली तैयार करने की सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों के लिए 16 रुकनी T20 टीम का ऐलान किया है। श्रेयस अय्यर को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, तिलक वर्मा टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मरतबा टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में मर्दों के 18 साल से कम उम्र के एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जाँच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तोसी की है। पंजाब में आसुफ फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। आईएमडी ने कल तक केरल और माही में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors and government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 international captain. Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And now the news in detail. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Akte, Akashvani News, Mumbai.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key sectors including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Meanwhile, External Affairs Ministry spokesperson Ranbir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
5: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
3: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Defence Minister Rajnath Singh today said that India continues to stand out as the world's fastest growing major economy at a time when many countries are facing economic uncertainty. Referring to the registered GDP growth rate of 7.7% in the financial year 2025-26, Mr. Singh said that the achievement underscores resilience and underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. In a social media post, Mr. Singh said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has combined economic growth with stability.

0: to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 I captain, where Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट

0: का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल है। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
0: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया

0: पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका के सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश के आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयद सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। दोपहर के 2:30 हुए हैं और समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हिंदी फिल्म का इतिहास जब भी लिखा जाएगा कुछ नाम ऐसे होंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसे ही एक नाम है गीतकार राजेंद्र कृष्णा, एक ऐसे शब्द शिल्पी जिन्होंने प्रेम को शब्द दिए, विरह को स्वर दिया और भावनाओं को ऐसी अभिव्यक्ति दी जो आज भी श्रोताओं के दिलों में गूंजती है। 5 दशकों से अधिक लंबे रचनात्मक सफर में राजेंद्र कृष्ण ने हजारों गीत लिखे। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सहजता। वे कठिन भावों को भी इतनी सरल भाषा में व्यक्त करते थे कि हर श्रोता उन्हें अपना महसूस करता था। आइए आज उनके कुछ सदाबहार और लोकप्रिय गीतों के माध्यम से उनके रचनात्मक संसार की सैर करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अनारकली से, जो भारतीय फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर माना जाता है।

अभी आपने सुना गीत ये जिंदगी उसी की है। ये गीत राजेंद्र कृष्ण की संवेदनशील लेखनी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेम और समर्पण की भावना को जिस खूबसूरती से उन्होंने शब्दों में ढाला वह इस गीत को अमर बना देता है। राजेंद्र कृष्ण ने अनेक संगीतकारों के साथ काम किया लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी रहीं जिन्होंने संगीत प्रेमियों को अनमोल रचनाएं दी। अब सुनते हैं ऐसी ही एक कालजयी प्रस्तुति। फिल्म का नाम है नागिन। ये गीत आज भी उतना लोकप्रिय है जितना अपनी रिलीज के समय था। संगीत है हेमंत कुमार का, स्वर है लता मंगेशकर का। गीत के बोल हैं, मेरा दिल ये पुकारे।

राजेंद्र कृष्ण की लेखनी में प्रेम की कोमलता और भावनाओं की गहराई सहज रूप से दिखाई देती है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो अपनी मधुरता और सरलता के कारण आज भी लोगों की सुबह पर है। फिल्म का नाम है भाई भाई। इस गीत को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने और आवाज दी थी गीता दत्त ने।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। श्रोताओं, उनके गीतों की खूबी यह थी कि वे सीधे दिलों से निकलते थे और सीधे दिल तक दस्तक देते थे। शायद यही कारण है कि बदलते समय के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई थी। अब बारी है उस गीत की जिसे हिंदी फिल्म के संगीत में खूबसूरत प्रेमों में गिना जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने अनेक ऐसे गीत लिखे जो समय के साथ अधिक मूल्यवान होते गए। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण ने प्रेम, विरह, रहस्य और दर्शन हर भाव को अपनी लेखनी में स्थान दिया। ये बहुमुखी प्रतिभा का ही परिचय था कि उन्होंने अपने समय के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शामिल उन्हें कर दिया। अब सुनते हैं उनका एक गीत जिसने शास्त्रीयता और लोकप्रियता के बीच सुंदर संतुलन स्थापित किया। फिल्म का नाम है छाया। इस गीत को स्वरबद्ध किया है सलील चौधरी ने और इसे स्वर दिया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा,

बहुत ही खूबसूरत सा गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण के गीतों में भावनाओं की गरिमा और भाषा की सादगी का अद्भुत संयोजन अर्थात मेल दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके गीत पीढ़ी दर पीढ़ी लोकप्रिय बने रहे। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि लिया है हमने फिल्म खानदान से। 1965 में प्रदर्शित इस फिल्म को भारतीय फिल्म संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल किया गया था। इस गीत के संगीतकार हैं रवि और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में एक ही कलाकार में हमने हिंदी फिल्म संगीत के महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण के कुछ सदाबहार गीतों का आनंद लिया, और चूंकि संदेश भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं एक ही कलाकार के संदर्भ में, जिसमें से हमें संदेश भेजा है दिग्दर्शन गौर, गगनदीप थांडी, बबलेश पवार, स्वर्ण सिंह, मसरूर हसन, धर्मेंद्र छिप्पा, तुलसी मस्कीन, हरजिंदर शिंदे, धर्मेंद्र छिप्पा, अनिल मोहन, देवशंकर टमुरिया, हीरामणि वर्मा, संजय ढींगिया, इशाक मोहम्मद, संदीप मक्कड़, सुदर्शन मुखी, नवी हसन, अजीत भवसार, इनके संदेशों का बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने अपने शब्दों से भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध बनाया। उनके गीतों में भावनाओं की सच्चाई

0: भाषा की सरलता और मानवीय संवेदनाओं की गहराई दिखाई देती है। यही कारण है उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने दशकों पहले थे। इसी के साथ मैं एक ही कलाकार कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाजत चाहूंगा और चलते चलते आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं, जो कि बहुत लोकप्रिय गीत है। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म पड़ोसन से। गायक कलाकार है किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद। तो आइए सुनते हैं, आनंद लेते हैं इस आखिरी गीत का।
1: चतुर ना

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3 बजने को है, अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम।

तीन बजकर 30 मिनट पर हिमाचली लोकगीत हम आपको सुनाएंगे और शाम 4 बजे फिल्मी नामों का सफर शुरू होगा।

0: काजर एक साबिक सिफारतकार हैं जिन्हें 30 साल का तजुर्बा है। उन्हें स्लोवेनिया में वजीर आजम जानेस चांसना की क्यादत में दाएं महाज की नई मखलूत हुकूमत के तहत बाजाबता तौर पर हलफ दिलाया गया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने भारत के क़याम अमन फौज की मेजर अभिलाषा बारक को 2025 के पुरवक़ार अक़वामे मुत्तहिदा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सरफराज किया है। मेजर बारक लबनान में अक़वामे मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स में भारत की बटालियन में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मेजर अभिलाषा बारक को अक़वामे मुत्तहिदा क़याम अमन फौज के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर एक तकरीब में ये अवार्ड अता किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर और जबरन कब्जे के में लिए गए भारत के इलाकों में नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने के पड़ोसी मुल्क के मंसूबों पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। वहां कल ये इंतखाबात होना है। भारत ने अपना ये जाना माना मौकफ दोहराया है कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है वो भारत का अटूट हिस्सा है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, जो 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ मुकम्मल और कानूनी और नाकाबले तस्खीर खाक का नतीजा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाकर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान के बार बार की रट लगाने और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और रहेगा, जिसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। जनाब पी हरीश जनरल असेंबली में पेश की गई कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्हें फिलहाल ऐसी किसी मीटिंग का कोई फायदा नजर नहीं आता। पुतिन ने यह तबसरा गुज़श्ता रोज सेनेट सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के अहम इक्तसादी फोरम की दौरान किया, जो ज़ेलेंस्की के उस खुले खत के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने बिलमुशाफा मुलाकात की अपील की थी ताकि दोनों लीडरान जंग के खात्मे के लिए बातचीत कर सकें। सदर पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की के खत का कुछ हिस्सा गुस्ताखाना था और उन्हें उसमें खलूस नजर नहीं आया। ज़ेलेंस्की ने बाद में जवाब देते हुए कहा कि उनकी तजवीज को पुतिन की जानिब से मुस्तरद किया जाना यह जाहिर करता है कि क्रेमलिन जंग खत्म करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवें तर्स के जंगजू तैयारे सिखोई SU-57 की पेशकश की है और भारत में इसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज भी रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों की 16 रुकनी T20 टीम का ऐलान किया है। श्रेयस अय्यर को T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। तिलक वर्मा के टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा T20 टीम में शामिल किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। भारत ने पाकिस्तान की इस बात के लिए मजम्मत की है कि वह अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैला रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी है और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। सूर्यवंशी को पहली बार भारत की क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू।

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है
1: और तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: होली को तो कुछ भी हो सकता है।

जामिनी सिनेमा के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लेकिन पेश है हिमाचली लोकगीत।

चर्चा में आप हिमाचली लोकगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं और दूसरा विश्व की नशरियात ले सामने पेश है फिल्मी नगमे। तमाम समय की खिदमत में अब्दुल्ला की जानब से पुरखलूस आदाब।

कभी फिल्म का जी टाइटल सॉन्ग आपने सुना, आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, अय्यब यादों की बारात फिल्म का गीत होगा ना, लता मंगेशकर आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में।

शमीन ने, मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आइए अब किशोर कुमार को सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

7 CID 909। इस प्रोग्राम आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आइए अब आशा फिल्म बनाऊंगा लता मंगेशकर का गाया हुआ।

को सही बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीकेकार के तहत आमतौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती तमस्सुकात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीकेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तिजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर खनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खुसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्कियात समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल ने कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गर्ज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने स्लोवेनिया के नए मुकर्रर करदा वजीर खारजा टॉम काइजर को आज मुबारकबाद दी है और उनके साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। टॉम काइजर एक साबिक सिफारतकार हैं जिन्हें 30 साल का तजुर्बा है। उन्हें स्लोवेनिया में वजीर आजम जेनेट जनासा की क्यादत में दाएं महाज की नए मखलूक हुकूमत के तहत बाजाबता तौर पर हलफ दिलाया गया। सामी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा है कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE ने उसने कहा है कि तलबा के मफादात की खातिर यह फैसला किया गया है, ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने आइंदा राज्यसभा चुनाव के लिए लिमानेनी रमेश को पार्टी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से एक सरकारी बयान में यह ऐलान किया गया। लिगामेनानी रमेश आज अपने नामजदगी के कागजात दाखिल करने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक रमेश 2015 से जनसेना पार्टी और उसकी कयादत से वाबस्ता रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बहुत से मुल्कों को इक्तसादी गैर यकीनी का सामना है, भारत एक सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बड़ी मईशत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने 2025-26 के माली साल के दौरान अंदरूनी मुल्क 7.7% शरह तरक्की का जिक्र करते हुए ये बात कही। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी के एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए और 22 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन, जिनका ताल्लुक एक ही कुनबे से था, वो अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां ब्यास नदी में बहाने के लिए वहां जा रहे थे। बहुत से अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए फिरोजपुर सिविल अस्पताल और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। पुलिस जराये ने आकाशवाणी को बताया कि 22 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाकर अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान के बार बार
इसके

नमस्कार, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी ए। सभा दी शुरुआत च आओ सुन रहे हां सराइकी प्रोग्राम चोक माहिती।

रेडियो दास सराय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते प्रोग्राम खेन के हाजिर हाँ। कुछ बातें कुछ गीत इस प्रोग्राम विच असा तुहा को सराय के गीत सुनवे सा ते नाल नाल कुछ काम दिया गल्ला दसे सा। पहला गल करें दे हाँ बचत बारे। रब ना करे कोई मुश्किल आन पवे तो कोई वो पैसे भी ना होवन ता किंज करे सा। इस वेले ता बचत ही काम आवदी है। हुने बचत किवें करे सा तुहा को दसें दे हाँ ना। बैंक विच बचत खाता खुलवा घिनो FD भी करवा सकते हो। इंदा ब्याज मिलदा रहंदा है ते फिर नकद रकम कदहा भी कढ़ाई जा सकती है। पोस्ट ऑफिस विच भी पैसा सुरक्षित रहंदा है। बचत पत्र भी खरीदे जा सकते हैं ते जीवन बीमा भी बहु वधिया तरीका है। बाकी इंजे फिजूल खर्चे तू बचो। बचत दा मकसद यही है कि किसी तू कर्जा न लहाना पवे ते बुढ़ेपा भी सुखी वसे। ते फिर आज तू ही बचत शुरू करो ते आओ सुनेंदे हाँ एक गीत जीशम खान रोखड़ी दी आवाज़ विच।

0: भाई आशिक मरदे रूप वटाउंदे इश्क कदे नहीं मरदा कलयुग दे विच जम पे आशिक ते अज भी जगना चरदा रांझा विच कनेडे वड़िया मिर्जा कालेज पढ़दा नाल पाइया दे पाले दुश्मनी भाई वखरी खेती करदा गेड़ समय दे मिल पे आशिक मरदा की ना करदा इस तो अगे दी गल नाटक करदा भाई इस तो अगे दी गल नाटक करदा
1: इश्क इश्क हो इश्क इश्क
0: हीर ते साहबा दोस्त होइया रांझा मिर्जा भाई पूंजीवादी दे वेखो कारे अकल सूचक नु आई शमीर ते कैदो होए सियाने कीवा ना रहा शुदाई एस तो अगे दी गल नाटक दसदा भाई भाई एस तो अगे दी गल नाटक दसदा भाई
1: इश्क इश्क इश्क इश्क हो
2: हड़े तक नहीं बोड़िया आखिर मैं हुणे पहुंचे पतंदर नु वक्त दी पौरा भी कदर नहीं पालें दे 12 साल का हिसाब कठा पूरा करू
3: लगता है आ गया
4: ही। ओए लंग गया ओए जट्टा दे बुए खुले।

0: ओए साहिबा तू ओए आ की मुंह ते कपड़ा जा लपेटिया किन्नी आरी कह तेनू बंदे अंगो आया कर डरा के रखता नहाया दस
1: की सोचिया फिर
2: मैं तेनू किन्नी बारी कह कि मैं हाजे अपना करियर बनाना मेनू कोई काली नहीं व्याह दी
0: ओए पर मेनू ते है
2: की
0: मतलब एक तो मैं अगे बहुत परेशान है उतो तू भी सूत आंदी समझ दिया दी की करा मैं तेरा
2: पर जिंदगी च व्याह ही सब कुछ नहीं हुंदा मिर्जा बी प्रैक्टिकल
0: ओए कल कोल कुछ नहीं जो होना आज ही हो एथे नाले मेनू लगदा है कि तू हुन मेरे नाल प्यार नहीं करदी हां
2: बहुत प्यार करदी हां
0: सच्ची
2: मुच्ची
0: हाय ओए
2: पर प्यार ना टिड दे मसले हल नहीं हुंदे
0: ओए सानू केड़े मसले
2: जरा सोच बिना नौकरी तो की भविष्य हो साडा की खावांगे असि की करेंगे अपने बच्चे
0: मैं भी गया गुजरे नहीं साहिबा के तेन दो वक्त दी रोटी ना खवा सका और बथेरी जमीन है जट को
2: पर मैं खेती नहीं कर सकती
0: चल कोई ना मैं आपे पका लू रोटी
2: समझा कर मिर्जा जेहो जेही जिंदगी मैं चाहनी हां तू नहीं समझ सकता
0: यार समझ क्यों नहीं सकता तू समझाएंगी तो समझूंगा ना
2: तेनू पता मैं की चाहनी हां
0: की
2: मैं चाहनी हां आप विदेश सेट होइए वड्डा आकार कारा क्लब यू नो हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल
0: ओए तेरी नियत नहीं बदल गई हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल
2: फिर मर्दा वाला शक तेरे तो बिना तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती अड़िया
0: सच्ची
2: मुच्ची
0: फिर अपना पंजाब माड़ा
2: पंजाब गंदगी दा ढेर शोर धुआं ए भी कोई जिंदगी है बाकी दरकत छड अपने प्यार दी निशानी जंड ते लभ जाने किधरे
0: ओए जंड भालदी है फिर ताणी मराणा जट नू की होया
2: छड अड़िया मैं ते तेनू चिढ़ांदी सी गुस्से च किन्ना सोहना लगदा है
0: मैं तेनू किन्नी बारी कह साहिबा मेरा मखौल ना करया कर तू बाज नहीं आंदी
2: चल मान जा हुण मान जा मान जा मान जा चल ठीक है नवे दौर च नवी जिंदगी शुरू करिए
0: अच्छा मतलब जाजे चढ़िए
2: हाँ एनआरआई बनिए एनआरआई
0: आहो ताडे प्यो दा जहाज खड़ा जे बार चढ़ जाओ जाके ओए बाहर जाना कोई इतना सौखा नहीं है कुछ सोचा है तू
2: आइडिया
0: बोल
2: तू आइल्स कर ले स्टडी बेस ते बाहर जावांगे
0: नकला मार के मैं दसवीं पास कीती हूँ और पढ़ाई नहीं हुंदी मेरे तो नाले सारे बम मेरे ते ही छट्टिया कर तू
2: फिर तो एक ही तरीका है
0: की
2: मैं कर लेनी हूँ
0: ओ तू कर ले तेरा की है
2: पर खर्चा
0: खर्चा ओ खर्चा मैं करूंगा कमलिए हद मेरा जो कुछ है तेरा ही ते है तेनू तो पता ही है साहिबा के समा किन्ना खराब है पैसे दी दौड़ ने चंगे चंगे रिश्ते पलीत करते मैं डरदा साहिबा
2: पर अपना प्यार ते अमर है मिर्जा
0: ओए हाँ तू सच कह रही है साहिबा तू किन्नी चंगी है मेरा दिल करदा मैं तेनू अपनी बाहा च
2: फोन आ गया
0: साहिबा मेरी गल सुन ओए आई लव यू साहिबा ओए आई लव यू

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम लड़ीवार नाटक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। एक देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य

पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाई अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब इससे देखिए फायदा तो कम हो रहा है, लेकिन नुकसान ज्यादा हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि एक तो खेती में इससे लागत बढ़ रही है और साथ ही साथ जो खेत की मिट्टी है, मृदा है, उसका स्वास्थ्य बेकार हो रहा है। जल, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और जो भी उत्पाद मिलता है हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से, वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये हम जानते हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सलाह जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है, विशेषज्ञ है, वो किसान भाइयों को दे रहे हैं। हमारे किसान भाई रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती करें ताकि अच्छा उत्पाद सबको मिल सके।
1: बिल्कुल शशि भाई, और भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है और साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के नए नए तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं, तो किसान भाई जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है तो किसानों को जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति

0: परिचित होने की।
1: बिल्कुल, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही आप किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में आप किसान भाइयों को अधिक लाभ होता है, क्योंकि जैविक उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकते हैं। और किसान भाइयों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है। अब किसान भाइयों, जैविक खेती तभी होगी जब आपके पास जैविक खाद होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा। अब वो जैविक खाद कैसे तैयार करें, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और फिर खेती में इसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो अच्छी बनी रहे और खेती में लागत कम आए, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सागवान जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण के बारे में। तो डॉक्टर सीमा सांगवान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जैविक जो खाद है वो क्या है और उसका महत्व क्या है।
2: जैविक खाद वह खाद है जो पौधों एवं पशुओं के अवशेषों, गोबर, फसल अवशेषों तथा अन्य जैविक पदार्थों के अपघटन से तैयार होती है। यह जैविक खाद मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाती है, मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता है उसमें बहुत सुधार करती है, जो मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या को बढ़ाती है और फसलों को एक संतुलित पोषण प्रदान करती है। इसके नियमित प्रयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम होती है, जिससे आपकी लागत भी कम होगी और टिकाऊ कृषि को एक बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल, अब बात करें जैसे कि कौन कौन से प्रकार के जैविक खाद उपलब्ध हैं, और जैसा कि आप जानते हैं खरीफ फसलों की बिजाई का समय चल रहा है, तो हमारे किसान भाई किन किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: सबसे पहले हमें यही जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी जैविक खाद हमारे पास है, उपलब्ध होती है। अगर बाजार में जाके देखें या घरों में भी, आप इसमें से बहुत सारी खाद है जो बना सकते हैं। सबसे पहले आती है गोबर की खाद, जो हमारे किसान भाई है, सबके घरों में पशु होते हैं जो गोबर निकालते हैं, उस गोबर को इकट्ठा करके आप उस गोबर से खाद बना सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होती है फसलों के लिए और पौधों के लिए। उसके बाद कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है केंचुओं को इस्तेमाल करके। इसी तरह से हरी खाद बनाई जा सकती है और जैव उर्वरक, जिसका आप सभी ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैव उर्वरक, जैसे कि हम अपने पूसा संस्थान में भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जैव उर्वरक बनाते हैं, वहां एक सेल काउंटर भी है जहां पर यह सब उपलब्ध है। तो ये जितने भी हमारी रासायनिक खाद है उसको हम कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा परसेंटेज इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अगर हम ये जैविक खादें इस्तेमाल करें तो। और अगर खरीफ फसलों की बात करें, ये समय है खरीफ फसलों की बिजाई चल रही है, तो इन खरीफ फसलों में जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द आदि में बुआई से 2-3 सप्ताह पहले अगर उस खेत में आप 5-10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छे से ये खाद मिला दें तो इससे फसल की जो प्रारंभिक वृद्धि होगी वही इतनी बेहतर होने लगती है और वो पोषक तत्व जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वजह से हम रासायनिक अपनी खादें डालते हैं, वो बहुत आसानी से हम इनको इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं।
1: जैसे कि जैव उर्वरकों की हम बात करें तो क्या है ये जैव उर्वरक और जैविक खाद की तरह इनका इस्तेमाल होता है?
2: हाँ, जैव उर्वरक भी इसी तरह से है, जैसे कि हमारे पास जैव उर्वरक अब हमने स्पेसिफिक बना दिया, जैसे गोबर खाद है उसमें तो एक बहुत सारे तरह के आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे जो वो काम करेंगे, चाहे संतुलित पोषक तत्व देने हैं, कुछ भी देना है उसका काम करेंगे। लेकिन जैव उर्वरक स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास राइजोबियम का कल्चर है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अगर नाइट्रोजन चाहिए पौधे में तो वो राइजोबियम डाल के आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास कल्चर होते हैं, राइजोबियम का है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पायरलम है। इसी तरह से फॉस्फेट का सोलिबलाइजर उपलब्ध है जो फॉस्फेट को घुलनशील बनाता है और वो पौधा आराम से ले लेता है। इसी तरीके से पोटाश के भी घुलनशील जीवाणुओं का एक जैव उर्वरक बनाया गया है। और इन्हीं के साथ साथ माइकोराइजा, शायद हमारे किसान भाइयों ने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी डिमांड कह लीजिए और उसकी जो जागरूकता है वो इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि माइक्रोराइजा एक ऐसा बायोफर्टिलाइजर है जो एक किसान को आंखों देखी वो फर्क दिखाता है 30-35 दिन के अंदर, क्योंकि जड़ों में विकास करता है, जड़ों में अपने आप को स्थापित करता है, उसके बाद वो जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं, वो नींव इतनी मजबूत हो जाती है उस फसल की या उस पौधे की जिसमें वो माइक्रोराइजर डलता है, कि उसके बाद उसमें वो न्यूट्रिशन जो है, जितना भी पोषक तत्व है जो जमीन में है, जो पौधा वैसे नहीं ले पा रहा था, लेकिन माइक्रोराइजा डालने के बाद और वो अच्छी जड़ स्थापित होने की वजह से वो बहुत अच्छे से उन पोषक तत्वों को और पानी को भी बहुत आसानी से वो पौधा

0: अपने आप अंदर ले लेता है और उसके पूरे उसमें वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल, तो जो हमारे किसान भाई मान लीजिए रासायनिक खादों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको कितना लाभ होता है, लागत में कितनी कमी आती है?
0: अगर देखिए हमारे पास जितने भी जैव उर्वरक हैं वो आपको 25 से लेकर 30% तक भी वो फायदा देते हैं। कि अगर फॉस्फोरस की बात करें, अगर आप माइक्रोराइजर डालेंगे तो आप 15 से 25% तक फॉस्फोरस जो डीएपी के थ्रू डाल रहे थे उसको कम कर सकते हो। तो इसी तरह से लागत नाइट्रोजन के केस में भी है कि वो भी यूरिया आप कम कर सकते हो इसी तरह से 25 से 30%। अगर आप ये राइजोबियम और ये सब इस्तेमाल करेंगे, कल्चर इस्तेमाल करेंगे, जोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम, इसी तरीके से पोटाश और जिंक सोलिबलाइजर भी है। और सबसे बड़ी बात कि रासायनिक खाद जो है वो बहुत महंगी है और ये बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि ना तो प्रदूषण होगा इसकी वजह से, ना पर्यावरण में कोई और दिक्कत आएगी, ना जल का प्रदूषण होगा, ना वायु का प्रदूषण होगा। और कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जीव जब हम दोबारा इनको डालेंगे तो ये और सूक्ष्म जीवों की भी वृद्धि करेंगे और उस जो हमारी मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाएंगे।
1: आपने बात की थी गोबर की खाद की, तो पशुपालन हमारे किसान भाई करते ही करते हैं खेती के साथ साथ में, तो जो किसान भाई जैविक खाद के रूप में गोबर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैविक खाद कितने साल में बन जाता है? किसान भाई अपना इकट्ठा करते रहते हैं गोबर।
0: जैविक खाद सालों में नहीं बनता, इसके लिए दिनों की ही जरूरत होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की बात करेंगे तो ये गोबर की खाद जो है उसका इस्तेमाल करके और इसमें जो अवशेष है जैसे पौधे लगे होते हैं उसकी पत्तियां गिरती हैं, उन पत्तियों का इस्तेमाल करके या जो हमारे किचन में जो वेस्ट आता है उन सबको इकट्ठा करके अगर हम ये खाद बनाना चाहें तो 45 से 60 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी खादें तैयार की जा सकती हैं। और इनका थोड़ा सा तरीका अलग अलग है लेकिन आप उस तरीके को फॉलो करें, जो कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं, बहुत सिंपल तरीके हैं। कोई भी किसान भाई या जो युवा हैं वो कोई भी इसको पढ़ के आसानी से अपने घरों में तैयार कर सकते हैं।
1: तो जैसे आपने बताया वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता होती है?
0: यंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक केंचुआ होता है जो एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है जिसे एसिना फाइटिडा के नाम से जाना जाता है, और केंचुआ खाद बनाने के लिए जो ये केंचुआ इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले अगर वर्मी कंपोस्ट किसी को बनाना है घर पे तो वो सबसे पहले क्या करे कि छायादार स्थान पर ईंटों या सीमेंट की सहायता से एक बेड बनाएं पहले, और उस बेड के अंदर सूखी पत्तियां, फसल अवशेष या घरों में जो हमारी रसोई का अवशेष है और आंशिक रूप से सड़ा हुआ जो गोबर है उनकी परतें बनाई जाती हैं, परत उसको भरा जाता है और नमी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी किया जाता है और फिर उसमें केंचुओं को छोड़ दिया जाता है और फिर उस बेड को हम बोरी से या किसी घास के उससे परत से ढक देते हैं। और उसके बाद जब बीच बीच में उसको ऊपर नीचे उसको घुमाते हैं ताकि वो जो वायु है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से चली जाए और वो जो बन रहा है वो अच्छे से बनता रहे, और 45 से 60 दिनों के अंतर वो वर्मी कंपोस्ट की तरह तैयार होता है। इस तैयार खाद को छानकर अलग किया जाता है और केंचुओं को पुनः दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम अगली खाद बनाने के लिए। तो ये भूरे रंग की दानेदार खाद की तरह तैयार होती है जो कि बहुत ही लाभकारी है हमारी फसलों के लिए और पौधों के लिए।
1: तो जो भी हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो खासकर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
0: देखिए सबसे पहले तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर सोचेंगे तो इसमें एक जीवित चीज है केंचुआ। अगर वो केंचुआ बहुत ही ज्यादा गर्मी अगर वहां हो जाए तो भी वो मर जाते हैं, ज्यादा पानी भर जाए तो भी मर जाते हैं। तो सबसे पहले गर्मी और पानी का आपको एक संतुलन रखना होगा और हमेशा ये इकाई हमेशा एक छायादार जगह पे बनानी चाहिए आपको, वहां पे ही रखना चाहिए। बेड में 60 से 70% नमी बनाए रखें, ऐसा ना हो कि पानी ऊपर तक भर जाए या ऐसा जमा होने लगे। और उसके बाद ताजा गोबर, प्लास्टिक, कांच, धातु या रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें गोबर भी जो है थोड़ा सा सड़ा हुआ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं, तो ये प्लास्टिक और ये कांच वगैरह उसमें ना हो। और बहुत अत्यधिक गर्मी, धूप और अन्य कीटनाशक जो है वो ना इस पे छिड़के जाए क्योंकि केंचुओं को बचाना बहुत आवश्यक होता है। और समय समय पर नमी और तापमान जो कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी आपको जांच करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो वर्मी कंपोस्ट की बात हम कर रहे हैं तो जो हमारे खासकर युवा साथी हैं और युवा किसान भी हैं वो चाहते हैं तो अपने खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करें, अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करें, और दूसरी बात आती है कि निर्माण कर रहे हैं तो क्यों ना व्यापारिक स्तर पर निर्माण किया जाए ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए भी इसका उपयोग लाया जा सके। तो किस तरह से आप रोजगार की दृष्टि से हमारे युवा साथियों को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कहना चाहिए?
0: जी, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की अगर दृष्टि से देखेंगे तो व्यवसाय के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है क्योंकि एक लाभकारी ग्रामीण उद्यम है। किसान कम लागत में उपलब्ध जो गोबर होता है, कृषि अवशेष होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा, एक रॉ मटेरियल हर चीज को बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है।

0: ये रॉ मटेरियल आपके पास सब कुछ है, आपके पास गोबर खाद है, आपके पास कृषि के अपशिष्ट हैं, उनका उपयोग करके सिर्फ आपको केंचुआ जरूर एक बार खरीदना होगा, वो भी आप एक बार खाद बनने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्तमान जैविक खेती में वैसे भी प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, वर्मी कम्पोस्ट की कहें या और जैव उर्वरकों की मांग कहें, ये बहुत बढ़ रही है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में चल रही है, तो इसके साथ साथ वर्मी वॉश और केंचुओं की बिक्री से भी अधिक आय की जा सके, कि जैसे आपके पास केंचुए हैं वो भी अपने आप को हर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ेंगे, तो उनको भी बेचा जा सकता है जो वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे। तो इस तरह यह रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभकारी एक उपाय हो सकता है आय कमाने का।
1: बिल्कुल, क्षेत्र कोई भी हो, कुछ भी हमारे किसान भाई शुरू करना चाहते हैं, बात हम वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की कर रहे हैं, तो कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी इसकी चलती है ताकि वो सीख करके अपना जो खुद का प्लांट लगा सके और वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण कर सके?
0: जी हाँ, कम्पोस्ट की ट्रेनिंग, फार्मयार्ड मेन्योर की ट्रेनिंग और वर्मी कम्पोस्ट की ट्रेनिंग है, ये आप आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में कहीं पे भी देखेंगे, वो बहुत आसानी से आपको कहीं ना कहीं वो विकल्प मिल जाएंगे। नई दिल्ली में भी ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो हमारे किसान भाई आकर देख भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाता है, उनको वो पिट्स दिखाई जाएंगी, किस तरह से बेड तैयार होते हैं, किस तरह से वो जब खाद बन जाती है तो उसकी क्वालिटी को कैसे टेस्ट कर पाएंगे थोड़ा सा, कि देख के कि कैसी वो खाद आपकी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तो वो सारे मापदंड उनको वो सब सिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है।
1: डॉक्टर सीमा सांगवान जी, इन दिनों भारत सरकार का खेती बचाओ अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत संतुलित उर्वरक प्रबंधन की बात की जा रही है, तो इसमें जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है?
0: जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जो हमारा अभियान है हमारे मिनिस्टर साहब ने चलाया है, ये इसी पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से जो हमारी रासायनिक खादें हैं उनको छोड़कर हमें ये जो जितनी भी जैविक खादें हैं, जैसे कि कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, और अगर हम जैव उर्वरक की बात करें तो जैसे कि पूसा माइक्रोराइजा, पूसा डीकम्पोजर, पूसा संपूर्ण, पूसा बायोपोटाश, बायोफॉस, बायोजिंक, एजोटोबैक्टर, हम इस अभियान के जरिए ये सब हमारे किसान भाइयों को अलग अलग गांव में जाकर हर रोज यही अलग अलग टीम्स में हम जाते हैं और यही अवेयरनेस हम जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरह से रासायनिक खादों के उपयोग की बजाय वो इनका इस्तेमाल शुरू करें और फिर देखें कि किस तरह से बीमारियां भी कम होंगी और प्रदूषण भी कम होगा। सबसे पहले उसमें अगर मेन बात करें तो सबसे पहले हम सॉइल टेस्टिंग की बात उनको समझाते हैं कि जिस तरह से एक शरीर को चेक किया जाता है कि उसमें किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से उसको वो पोषक तत्व दिया जाए, इसी तरह से हमारे किसान भाइयों को भी हम इस अभियान के जरिए यही समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी मृदा का चेकअप कराएं, समझें कि उसमें किस चीज की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें पहले से पूर्ति है लेकिन हम ऊपर से बिना जानकारी के उसको डाले जा रहे हैं, जो कि जमीन में नीचे जा रहा है या फिर वो पानी में घुल के हमारी नदियों में मिक्स हो रहा है, जो कि हमारे पशु भी पीते हैं और हम लोग भी शायद पीते हैं, तो वो रसायन जो है वो हमारे शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आता है, तो उसके बजाय सबसे पहले हमें सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, अपने मृदा का टेस्ट कराओ, उसमें ये समझो कि किस चीज की पूर्ति करनी है और उसके हिसाब से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करो, उनका चयन करो और उनको डालो, क्योंकि जितना जैव उर्वरक इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जो पोषक तत्व है और मृदा की शक्ति है वो उतनी ही बढ़ती रहेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर सीमा सांगवान जी, हमारे किसान भाई जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके खेत की मृदा स्वस्थ रहे और स्वस्थ अच्छा उत्पादन मिल सके, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। डॉक्टर सीमा सांगवान जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किसान बहन भाइयों, आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं मूलचंद शर्मा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश और कलाकार थे मूलचंद शर्मा।
1: नीलम बहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और औषधीय पौधों की खेती में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है।
0: बिल्कुल, और इस मिशन का उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है और फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं विकसित करना है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर युवाओं के लिए बागवानी और प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
1: बिल्कुल नीलम बहन, इस मिशन में केंद्र सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जिसमें पहली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो पूरे देश में बागवानी के विकास के लिए काम करती है। दूसरी योजना है पूर्वोत्तर और हिमालयी

0: राज्यों के लिए बागवानी मिशन जो दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लिए काम करती है। तीसरी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज के लिए काम करती है। चौथी है नारियल विकास बोर्ड जो नारियल की खेती और उत्पाद के लिए काम करती है। और पांचवी है केंद्रीय बागवानी संस्थान जो नागालैंड में स्थित संस्थान द्वारा क्षमता निर्माण के लिए काम करती है।
1: बिल्कुल, और इस मिशन के तहत वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो सामान्य राज्यों में कुल लागत का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा स्टोरेज और कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35% और उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH के बारे में। और अब नीलम बहन, समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए। लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और ठीक 10 सेकंड्स हुए हैं और हमारे श्रोता जानते हैं कि ये समय होता है आपको चुनिंदा गजलें सुनवाने का। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं पंकज उधास साहब की इस गजल के साथ।

और अब कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले ताई की आवाज में सलोनी सी ये गजल।

0: श्रोताओं, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। एक देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन देश के युवाओं की आकांक्षाओं, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि युवा कड़ी मेहनत, इनोवेशन और समर्पण के जरिए देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
3: आज का ये प्रोग्राम शानदार है और ये कह रहा है कि देश का युवा देश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ये भारत को आगे बढ़ाने की, नई ऊंचाइयों को छूने की ये जिम्मेदारी आज हमारा युवा ले रहा है। भारत का युवा मेहनती भी है, विजनरी भी है, क्रिएटिव भी है और साहसी भी है। देश के हर मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में देश के खड़ा है।
1: कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के सदस्य मैथिली ठाकुर, उद्यमी अमन गुप्ता, अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ साथ कई कंटेंट क्रिएटर्स और खिलाड़ी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया।

0: है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के सेक्टर 18 और सेक्टर 9 में पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। श्री गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस कैंप के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने विनोबा कुंज कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री बिरसा मुंडा का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट और प्रेरणादायी स्थान है। श्री गुप्ता ने कहा कि धरती आबा के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरण के प्रतीक थे। उन्होंने यह बात आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी भगवान श्री बिरसा मुंडा जनजातीय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और संग्रहालयों में उनके प्रतिनिधित्व के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। एक रिपोर्ट।
1: अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक संस्थाओं और स्वदेशी जीवन पद्धति की रक्षा का एक सशक्त प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जनजाति समुदाय आर्थिक शोषण, सामाजिक विघटन और परम्पराओं के शरण का सामना कर रहे थे, बिरसा मुंडा ने उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का नया संचार किया। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जनजाति गौरव दिवस मनाने और जनजातीय धरोहर के दस्तावेज करण के प्रयासों का स्वागत करते हुए श्री गुप्ता ने इन्हें भारत के इतिहास की अधिक समावेशी समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संग्रहालयों की भूमिका पर बल देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संग्रहालय जिन कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, वे यह निर्धारित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने राष्ट्र, अपने इतिहास और स्वयं को किस प्रकार समझेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संग्रहालयों में जनजातीय समुदायों के अनुभवों, आकांक्षाओं, ज्ञान परंपराओं, सृजनात्मकता और राष्ट्रीय जीवन में योगदान को भी सार्थक रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख आधार बताया तथा युवाओं के लिए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले श्री संधू ने मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यवसायियों से बातचीत की। दिल्ली के मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज रघुवीर नगर क्षेत्र का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने लोगों से विभिन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं पर बात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने श्री सिरसा से सड़कों की स्थिति, नालियों की सफाई, पानी की लाइनों और सीवेज से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। वहीं श्री सिरसा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी न किए जाने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां आयोजित चिकित्सकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर दिन रात समर्पण और सेवा भाव के साथ लोगों की देखभाल करते हैं, साथ ही उनका योगदान केवल इलाज

0: तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने आज नरेला बवाना रोड स्थित दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्थापित एनएबी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। श्री इंद्राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दृष्टि बाधित जनों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा जीवन की सुख सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में यह केंद्र एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री इंद्राज ने कहा कि दिव्यांगजन कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार कल प्रकाश विहार शाहबाद एक्सटेंशन में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और नालियों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेगी। बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वामी दयानंद अस्पताल में नवनिर्मित उन्नत ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: श्री प्रवेश वाही ने अस्पताल में लगभग 1,70,00,000 रुपए की लागत से स्थापित दो अत्याधुनिक 4K लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिस्टम और आर्थोपेडिक तथा 35,00,000 रुपए की लागत वाली ट्रॉमा सर्जरी के लिए आवश्यक सी आर्म मशीन का भी लोकार्पण किया। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और सटीक सर्जिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर महापौर श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और अस्पताल की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों ने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो माइनिंग, कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय सुधार तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें साइट पर संचालित गतिविधियों, कचरा प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइयों को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक नए शिशु सदन केंद्र का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल अधिक समावेशी और काम के लिए जन केंद्रित माहौल को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 600 वर्ग मीटर में यह केंद्र बच्चों को एक अनुकूल, सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करेगा। यहां बच्चों को सीखने, खेलने, आराम करने के साथ साथ उनके विकास की भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंडर

में कांस्य पदक जीतने पर हॉकी टीम महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञाना नंदा ने वीसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस जीत पर उन्हें बधाई दी। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानून माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंडिया प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, यूं तो हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात की शुरुआत 1936 से पहले हो चुकी थी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का बाजाब्ता कयाम 8 जून 1936 में अमल में आया, जिसके 90 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की शानदार रिवायात रही है। मुसीकी का प्रोग्राम हो या नौजवानों का प्रोग्राम, या बराह रास्त कमेंट्री हो या फिर किसी हिंदुस्तानी जबान का अदब हो, सब ने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। इन रिवायात में एक रिवायत आकाशवाणी से नशर होने वाले मुशायरों की भी रही है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों का कलाम यहाँ से नशर किया जाता रहा है। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के स्टूडियो में एक मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें शायरी के शायकीन ने भी शिरकत की। ये मुशायरा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया गया। आइए सुनते हैं उसी मुशायरे का पहला हिस्सा। निजामत के फराइज जनाब मुइन शादाब अंजाम दे रहे हैं।
2: आज का ये जश्न जो आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा है, किसी इदारे का जश्न नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी का, बल्कि पूरी दुनिया का जो मास मीडिया है, और जिस तरह से सकाफत को बचाने की जो कोशिशें दुनिया भर में हो सकती हैं, या कौमी यकजहती का जो पैगाम हो सकता है, आज का ये प्रोग्राम उन तमाम चीजों का जश्न है। तो आइए हम गुजारिश करें कि जहां आकर हमें ये लगता है कि तंजो मिजाज का वो सफर, अगर हम मुशायरों के हवाले से, उसके वकार के हवाले से बात करें, जो दिलावर फिगार और नाजिल खयामी और सागर खयामी से होता हुआ हम तक पहुंचा था, कि वो सफर ठहर गया है पॉपुलर मिरठी पे आके। तो मैं जनाबे पॉपुलर मिरठी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप पुरजोर इस्तकबाल कीजिए जनाबे डॉक्टर पॉपुलर मिरठी।
3: शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए, गजल के चंद अशआर हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाइए कि बने हो जो रहबर वगैरह वगैरह, बने हो जो रहबर वगैरह वगैरह, है शोहरत का चक्कर वगैरह वगैरह, और गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर, गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर, वसीम और जौहर वगैरह वगैरह, गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर, वसीम और जौहर वगैरह वगैरह, गले सावनी रुत में मिलने लगे हैं, गले सावनी रुत में।

0: मिलने लगे हैं नदी और समंदर
1: वगैरह वगैरह,
0: नदी और समंदर वगैरह वगैरह, दिखाती है अब तो नई शायरा भी, दिखाती है अब तो नई शायरा भी तरन्नुम का जौहर। सदाई ये उठी मेरे शेर सुनकर, मुकर्रर तकर्रर वगैरह वगैरह, मुकर्रर तकर्रर वगैरह वगैरह, जहाँ देखिए आज टकरा रहे हैं, जहाँ देखिए
1: आज टकरा रहे हैं
0: मोहन्नत मुजक्कर
1: वगैरह वगैरह,
0: जहाँ देखिए,
1: जहाँ
0: देखिए, यहाँ देखिए आज टकरा रहे हैं मोहन्नत मुजक्कर वगैरह वगैरह, और देखिए कि सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं। ये देखिए नौ में कि सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं, गवाइए सुकनवर
1: वगैरह वगैरह,
0: सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं, गवाइए सुकनवर
1: वगैरह
0: वगैरह वगैरह, तिरन्नुम के मारो हुओं को खिलाओ दही और शक्कर वगैरह वगैरह, और देखें कि अदम में बाहर दौर जिंदा रहेंगे, जिगर और अजगर
1: वगैरह वगैरह,
0: जिगर और अजगर वगैरह वगैरह, और मियां पॉपुलर तोड़कर फेंक भी दो, ये मीना ये सागर वगैरह वगैरह, ये मीना ये सागर वगैरह वगैरह। और देखिए गजल की चंद अशार और देखें कि पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर। और शेर देखिए कि जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर, जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर,
1: डाकुओं क्या मिल गया
0: शायर का जबड़ा तोड़कर, और कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर, कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर, और देखता बीवी को था और सांस आती थी नजर, देखता आदिल भाई देखता बीवी को था और सांस आती थी नजर, रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर, रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर, और तेरे इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया, अब कोई है डॉक्टर जैसे हो इसका तोड़कर,
1: फिर पढ़िए,
0: तेरे इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया, अब तू ही है डॉक्टर जैसे हो इसका तोड़कर,
1: इसका तोड़कर।
0: उनकी शेर देखिए कि क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार का, घर से निकला भी तो जालिम घर का जीना तोड़कर, क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार का, घर से निकला भी तो जालिम घर का जीना तोड़कर, और पॉपुलर मैंने कहा था उससे मत अंगड़ाई ले, क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर, क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर। और एक गजल के चंद अशार और देखिए कि एक बीवी कई साले हैं, एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होंठों पे ताले हैं,
1: खुदा खैर करे,
0: खुदा खैर करे उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे, और कूचे यार का तय होगा सफर अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं,
1: खुदा खैर करे
0: पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। और शेर देखे के क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस ले, सांप कुछ हमने भी पाले हैं,
1: खुदा खैर करे, वाह वाह वाह,
0: क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस ले, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे, और ऐसी तब्दीली तो हमने देखी ना कभी, अब अंधेरे ना उजाले हैं,
1: खुदा खैर करे
0: अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे, और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारो, मन के वो उतने ही काले हैं,
1: खुदा खैर करे
0: मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे, हर वर्क पर है छपी गैर मुहज्जब तस्वीर, कितने बहुदा रिसाले हैं,
1: खुदा खैर करे
0: हर वर्क पर है छपी गैर मुहज्जब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। आइए फिर कुछ कतार, फनकार हम हैं जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है, और बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारा भी मुंह में जबान है,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है, اب

0: दर्द से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तो मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। तो मुझे मेरी शबनम फूलते जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगे नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाद अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाद अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ, पछताए मेरे घर में जरा सा बड़ा के हाथ। चार ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ।
1: बहुत शुक्रिया जनाब पॉपुलर मेरठी साहब। आइए हजरात एक और बड़ा अहम नाम उर्दू शायरी के जो चंद मुनफरिद लहजे हो सकते हैं उसमें उन साहब का नाम शामिल है हमारे मोहतरम शायर जिनको मैं आवाज देता हूँ। पहले उनके कुछ शेर सुनाता हूँ। हर घर में कोई तहखाना होता है, हर घर में कोई तहखाना होता है, तहखाने में एक अफसाना होता है, नाखून की बेचैनी बढ़ती जाती है जैसे जैसे जख्म पुराना होता है। और क्या शेर कहा है कि आसानी से राह नहीं बनती कोई, दीवारों से सर टकराना होता है। तो दीवारों से सर टकराने वाला शायर और तहों में उतरने वाला शायर तहखानों की, जिसे हम आलम खुर्शीद के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। आलम खुर्शीद साहब
2: बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समाप्त फरमाए कि रस्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: रस्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे। रस्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए। और सौ काम जरूरी थे ना आना था ना आया, सौ काम जरूरी थे ना आना था ना आया, उसको तो बहाने ही बनाने थे। कि सौ काम जरूरी थे ना आना था ना आया, उसको तो बहाने ही बनाने थे बनाए। और वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था,
1: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था। बा, बा, बा,
2: बा। वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था, हमको भी कहीं रंग जमाने थे
1: जमाए।
2: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था,
1: बा, बा, बा, बा।
2: हमको भी कहीं रंग जमाने थे जमाए। होना था पशेमा ही पशेमान हुआ वो, होना था पशेमा ही
1: पशेमान हुआ वो,
2: पशेमान हुआ वो, हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। होना था पशेमा पशेमान हुआ वो, और हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। और हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई।
1: मैं वाह वाह वाह वाह। हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई,
2: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, उसको भी फसाने ही सुनाने थे।
1: वाह वाह वाह।
2: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, और उसको भी फसाने ही सुनाने थे सुनाए।
1: वाह।
2: और फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे। फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे आए। और जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा।
1: वाह वाह वाह।
2: जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा,

0: वाह,
1: ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में, और इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में।
0: वाह,
1: इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में, और मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो।
0: वाह वाह वाह,
1: मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो, हाँ छलकनी चाहिए इतनी खुशी आवाज में।
0: वाह,
1: साथ रो सकते नहीं
0: महसूस ही
1: कर लीजिए दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज़
0: भाई। वाह वाह वाह,
1: साथ रो सकते नहीं, साथ रो सकते नहीं, महसूस ही कर लीजिए
0: क्या कहने हैं
1: दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में। आखिरी शेर है गजल का कि शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर।
0: वाह वाह वाह,
1: शायरी है, शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर, लाख चाहें छुप नहीं पाती नमी आवाज में।
2: तारीख बयान कर दी उन्होंने गजल की जबान में जनाबे नौमान शौक साहब। आइए अलीगढ़ से एक ऐसे हम शायर को ज़हमत सुखन देते हैं, इनका ताल्लुक तो रांची झारखंड से है, वहाँ वो प्रोफेसर थे, अब शोबे उर्दू में उनका ट्रांसफर हुआ है अलीगढ़ के। इस्तकबाल कीजिए सरवर साजिद साहब का, प्रोफेसर सरवर साजिद साहब।
3: गजल का मतलब मुलाहजा करें।
2: इरशाद,
3: शौक से आप नहीं समते सफर में रहिए।
2: आहा, क्या बात है, क्या बात है।
3: शौक से आप
2: नहीं समते
3: सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में रहिए। शौक से आप नहीं समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में रहिए। शेर देखिए कि दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए।
2: आहा, क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह,
3: दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे
2: बढ़िए,
3: उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए। तमन्ना है तो आगे बढ़िए, उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए। शेर देखिए कि देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते
2: हैं,
3: देखिए उनकी ये शोखी
2: के कहे जाते हैं,
3: के कहे जाते हैं हम है साहिल पे खड़े आप भंवर में। देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते हैं हम है साहिल पे खड़े आप भंवर में रहिए।
2: वाह,
3: शब गुजर जाएगी झूठी ही कहानी कहिए।
2: क्या बात है, क्या बात है।
3: शब गुजर जाएगी झूठी ही कहानी कहिए, ऐसे चुपचाप ना उम्मीदें सहर में रहिए। ऐसे चुपचाप ना उम्मीदें
2: क्या कहनी है बाबा,
3: सहर में रहिए। और इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद,
2: इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद,
3: इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद, मोम का जिस्म लिए आग के घर में रहिए। मोम का जिस्म लिए
2: आग के घर में रहिए,
3: मोम का जिस्म लिए
2: आग
3: के घर में रहिए। शौक से आप नहीं समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में। दूसरी गजल का मतलब मुलाहजा करें कि बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए।
2: वाह, बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए,
3: बिछड़े हुओं की फिर से
2: तमन्ना न कीजिए,
3: तमन्ना न कीजिए, बेकार है अब बैठ के रोया।
2: वाह वाह वाह,
3: बेकार है अब बैठ के रोया। शेर देखिए कि मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने, मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने, सहरा में गर्क अपना सफीना न कीजिए।
2: वाह वाह वाह,
3: मौजों से कीजिए जंग तो कुछ बात भी बने,
2: बहुत खूब,
3: सहरा में गर्क अपना सफीना न कीजिए। शेर देखिए कि दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं,
2: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं,
3: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं, हर अजनबी परिंद को चाहा न कीजिए।

0: दो चार दिन के बाद चला जाएगा कहीं, हर अजनबी परिंद को चाहा न कीजिए, मंजिल की जुस्तुजू है तो यकसुई चाहिए, मंजिल की जुस्तुजू है तो यकसुई चाहिए, हर दो कदम पे रास्ते बदला न कीजिए, हर दो कदम पे रास्ते बदला न कीजिए। शेर देखिए कि वाबस्ता कितनी यादें हैं माजी की आंख से,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: क्या वाबस्ता भाई, कितनी यादें हैं माजी की आंख से, एक मशवरा है आईना देखा न कीजिए,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: एक मशवरा है
1: आईना देखा,
0: आईना देखा।
1: बहुत खूब मोहतरम सरवर साजिद साहब, आपकी इस शायरी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मुशायरा AIR@90 यानी 90 बरस मुकम्मल होने पर यह मुशायरा मुनक्किद किया गया। बहुत शुक्रिया।
2: सामने अभी आप ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद मुशायरा सुन रहे थे, निजामत कर रहे थे जनाब मुईन शादाब। सामने इस मुशायरे का बकिया हिस्सा हम 16 तारीख यानी हफ्ते के रोज सुनवाएंगे। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, वक्त रात्रि के 8:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और अभी आपने ये सुना चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को लिखा रजत अरोरा ने और संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने। आप जुड़े आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म फिजा से सुनिधि चौहान की आवाज में। आप जान हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:40 होने को है। फिलहाल हमें इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़ना होगा यहीं पर, लेकिन मिलेंगे आपसे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।

0: closely to maintain security, our long and uniquely open border.
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा. दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है. दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है.
2: श्री खनान ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा. सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं. श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: कानूनी साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली डॉक्टर टॉक फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए careerairforce.gov.in या AFCAT.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित

सात पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। रात के 9:15 हुए हैं। अब हमारी तीसरी मजलिस की नशियात का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए आपको इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम से मुतारिफ करवा दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे एक फनकार के तहत भूपेंद्र की गाई हुई गजलें। खबरों का वक्त रहेगा 9:45। कुछ बातें आपके सेहत के हवाले से आपको देंगे हम हेल्थ टिप्स के तहत 9:55 पर। 10 बजे आप सुन सकेंगे अनवर अजीम का तहरीर करदा ड्रामा लोंगी। आप सबकी फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम तामिल

इरशाद का वक्त रहेगा रात 10:30। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुन सकेंगे खबरें बड़े सगीर से। 9:45 पर बज़्म मौसिकी के तहत आप सुनेंगे राग कोमल ऋषभ असावरी में ख्याल विदुषी ललित जे राव से। आलमी खबरों का वक्त रहेगा रात 12 बजे। क्लासिकी मौसिकी में आप सुन सकेंगे पंडित बलराम पाठक से सितार पर राग यमन। 12:30 पर प्रोग्राम पेश किया जाएगा आखिरी शब। रात 12:50 पर आप सुनेंगे खबरें और 1 बजे ये मजलिस खत्म हो जाएगी।

अभी आपने भूपेंद्र की आवाज में ये गजल सुनी। इसे लिखा था नक्श लालपुरी ने और इसे मौसिकी से तरतीब दिया था जयदेव ने। अगली गजल जो आप सुनेंगे उसको लिखा है बहादुर शाह जफर ने, आवाज भूपेंद्र सिंह की।

0: इसके साथ ही एक फिल्म का प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब वक्त है खबरों का।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप शबाना बेगम से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की माशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीब इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदाम और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया महाजाराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने असलाहत के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुकता नजर पेश किये। इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिक मामलात पर भारत सरकार खासतौर पर वजीर आजम को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल के अरकान के साथ साथ वजीर आजम के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉ PK मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सरफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमूई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तयन करने से मुतालिक तरीकाकार में तरमीम की है। सारफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जाब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज किए गए हैं जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुटुंबों से ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जहां मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुंबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्द आब करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम

नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों, ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉक्टर मानविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसिल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अवलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तहत एक नुमाया पहल है। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुस के नजदीक ईरान की साहिली निगरानी और राडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी अहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप 3री बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहिरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांस्य का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर परगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगी मील से उनकी लगातार उमदा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तय में ख्वाहिशात का इजहार भी किया। 19 साल सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इंफ्रादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही सविता ने 2027 के फीडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने 6ठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन ताइडे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमू तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ पाहित क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتصادی صلاحکار کونسل کے ساتھ میٹنگ کی اور ملک کے معاشی کایا پلٹ اور

करें जो डिजिटली ना होकर आप मैन्युअली करें, तो उससे आपके जहन पर, आपकी सेहत पर अच्छा असर होगा और आप डिजिटल काम करने से भी थोड़ी देर के लिए जब दूर होते हैं तो आपकी जिंदगी में, आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अपने जिस्म का, अपने जहन का, अपने दिल का, हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। बस इतनी सी बात है कि डिजिटल दौर में भी अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हमें कोई ना कोई चीज इस तरीके की अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए जो हमें सेहतमंद रखने के लिए फायदेमंद साबित हो। आज के लिए बस इतना ही हेल्थ टिप्स में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए जनाब अनवर अजीम साहब का तहरीर करदा ड्रामा लोमड़ी।

0: बारिश में तो बड़ा परेशान
1: कर। अरे अरे भाई अरे
2: अरे दिखाई दे रहा है लोग खड़े हैं।
3: अरे हटो बच्चों हटो हटो। अरे सर पीछे हटो।
4: अरे अरे देखते नहीं यहाँ मेन साहब खड़ी है और तुम हो के अपने गाड़ी रेले पहले चले जा रहे हो सर पर।
1: अबे लम्बे अबे भाग पानी की बाल्टी उठा के अबे देखता नहीं सारा कट्ठा क्यों ना भाग गया। अरे तू तो घुट घुट क्या था खेल जा रही है। अबे एक ढाबे लगाऊंगा चल जल्दी से।
2: नो तो हम क्या करें चाचा पानी बिजली पर अपना जोर है का।
1: अबे सो तो ठीक है पर तू उधर क्या बार बार ताके चले जा रही है और यहाँ पे सारा कट्ठा क्यों ना भाग जा रही है।
2: हम समारा तुम अपना कथा चुना हो।
1: अबे लंडे मेरी बात तो सुन के आने लगे।
5: ये तो एक एक करके निकल गए। मैं तो अकेले रह जाऊंगी थिएटर के सामने। ये कैसी रात है। ओ माय गॉड कहीं पास ही बिजली गिरी है। और देखो मेरे साथ तमाशा कल्चर की भूखी हाउ स्टुपिड ऑफ मी। जान बूझ कर डालते हैं पहिए पानी में। अगर मेरा बस चले तो
6: क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ।
5: थैंक यू मगर आप हैं कौन।
6: आपको बायोडेटा चाहिए या लिफ्ट। देखिए आपकी वजह से मैं भी भीग रहा हूँ।
5: आपको कैसे मालूम कि मैं उसी तरफ जाऊंगी जिधर आपका घर है।
6: देखिए यंग लेडी आप मुझसे जिरह मत कीजिए मैं आपको जानता हूँ।
5: आप मुझे जानते हैं।
6: जी
5: बट यू आर अ टोटल स्ट्रेंजर टू मी।
6: शुरू शुरू में सभी टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं। चलिए जल्दी बैठिए गाड़ी में। मेरे माँ बाप भी शुरू शुरू में टोटल स्ट्रेंजर्स थे मगर देख लीजिए अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाड़ी में बैठिए। निमोनिया होने के बाद घर पहुँचने से अच्छा है कि निमोनिया होने से पहले हम घर पहुँच जाएं।
5: वेरी फनी व्हाट द हेल डू यू मीन।
6: अजी गाड़ी में बैठिए। किडनैप करने को बहुत सी खूबसूरत गुड़िया इस शहर में है। मेरा रास्ता वही है जो आपका है। मैं जरा आगे तक जाऊंगा। मैं भेड़ियों के इस जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता आपको। आखिर मैं आपको जानता हूँ।
5: लेकिन मैं तो नहीं जानती आपको। अच्छा लीजिए बैठ गई आप गाड़ी में।
6: दैट्स लाइक अ गुड गर्ल।
5: अब चलिए।

0: आप तो बिल्कुल ठीक कहे हैं।
1: चलिए मैं आपको फ्लैट तक छोड़ा।
0: पेट्रोल की आखिरी बूंद पर यहाँ तक पहुँच गए।
1: कुछ नहीं, बस जरा बारिश थमे तो मैं कनस्तर लेकर निकलूंगा पेट्रोल की तलाश में।
0: इतनी रात के? आप अंदर आइए, मैं कॉफी बनाती हूँ आपके लिए।
1: थैंक यू, थैंक यू।
2: कम ऑन गाइस, बॉटम शुड बी अप इन वन गो।
0: आप तो बिल्कुल शॉक लग रहे हैं।
1: शॉक नहीं।
0: ओ ये हर वीकेंड को यही होता है।
1: ओ
0: वो फ्लैट देख रहे
1: हैं,
0: सामने की खिड़की में सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ दो तीन नौजवान रहते हैं, उनसे चलाने में उनको बहुत मजा आता है। सीना जानते हैं वो?
1: इसमें क्या शक है? वो तो मैं देख ही रहा हूँ।
0: ये शो तो चलता रहेगा। पानी खोल गया। आप ही आई, कॉफी के बड़े फायदे होते हैं।
1: इसमें क्या शक है? और इस म्यूजिक के भी फायदे हैं, कॉफी के भी फायदे हैं, बारिश के भी फायदे हैं। क्यों भाई जगदीप?
0: लीजिए, आ गई आपकी कॉफी।
1: थैंक यू। और अब आप?
0: मैं भी पीऊंगी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको बदलने के लिए कपड़े ऑफर नहीं कर सकती।
1: मैं जानता हूँ आपका इतना अच्छा सोफा भीग रहा है मेरे बैठने से। भाई ये तो किसी नॉवल की सिचुएशन मालूम होती है।
0: वो क्या चीज है जगदीप साहब, यही नाम बताया ना?
1: जी जी जी जी जी।
0: जो नॉवेल की सिचुएशन और जिंदगी की सिचुएशन में अंतर पैदा कर सकती है। है ना? कैसी है आपकी कॉफी, कड़वी तो नहीं है?
1: नहीं, जैसी भी है अच्छी है, बहुत अच्छी है। आखिर मैं कब तक बैठा रहूंगा? I'm such a misuse here.
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बारिश के रुकने का इंतजार कीजिए, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई।
1: सो तो ठीक है। ये कितनी डरी हुई है, क्या मैं इसको लोमड़ी दिखाई देता हूँ? क्या बात है, आप कुछ खोसी गई?
0: जब म्यूजिक इतना तेज हो तो न जाने क्यों मन में हौसला होने लगता है। कभी कभी तो ये बहुत वायलेंट हो जाते हैं और दरवाजे पर आकर गाते हैं, नाचते हैं और दरवाजे पर मुक्के मारते
1: हैं।
0: ओह माय गॉड,
2: ओपन द डोर।
0: जीने क्यों नहीं देते? सुना सुना, मैं बेचारी औरत हूँ। क्यों? इसीलिए कि मैं अकेली हूँ।
1: लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
0: आप घबराइए नहीं, अभी तक तो आपके कपड़े भी भीगे, अब आपका माथा भी भीगा नजर आ रहा है।
1: मुझे लगता है आप घबरा गई हैं। ऐसा है कि आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए।
0: मैं तो खोलूंगी, क्या मुझे अकेले जीने का अधिकार है?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलिए, आप इस वक्त अकेली नहीं है। देखिए ये लोग बहुत ज्यादा बिफरे हुए हैं।
2: चलो दोस्तों अभी चलते हैं। लेकर मेक अप माइंड।
0: <laughs> अंदर से बिल्कुल पहने की निकले।
1: नहीं वो
0: अरे मैं तो भूल ही गई, कॉफी का पानी खोल खोल कर बावला हो गया होगा। जाने इन लोगों को मुझे अकेला देखकर क्या प्रोवोकेशन होता है।
1: अजीब किसी को भी होगा।

0: ये जो आपके चेहरे पर अंदाज है ना, जैसे तूफान आकर घुस रहा हो, ये अंदाज किसे प्रोवोक नहीं करेगा। मैं एक बात बताऊं आपको?
1: बताइए।
0: बात जब की है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैं बड़ा खिलंड रहा था,
1: और
0: अब तो मैं कह रहा था कि माय गॉड, तो मैं कह रहा था कि स्कूल जाते हुए मुझे एक बड़ा छतनार सा जामुन का पेड़ मिलता था, अकेला गंभीर काले काले रसीले जामुनों से लदा हुआ, मुझे बड़ा प्रोवोकेशन होता था।
1: अच्छा।
0: और आप ही आप मेरा हाथ पत्थर उठा लेता था सड़क से, खूब जामुन गिरते थे, पर पेड़ वैसा ही गंभीर खड़ा रहता था मेरे पत्थराव से जैसे उसके तन पर जो भी ना रहेंगी हो।
1: अच्छा। तो ये बात है, आपको लगता है मैं वही पेड़ हूँ, है ना? एक बात बताइए। हाँ लीजिए, कॉफी
0: लाइए।
1: फ्लेवर अच्छा लगता है ना आपको कॉफी का?
0: फ्लेवर फ्लेवर फ्लेवर जी, वाह।
1: कॉर्ड पर सुई अटक गई है शायद।
0: ये रात हमेशा याद रहेगी। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि कुछ होने वाला है। क्या मैंने यहां आकर गलती की है? धोखा खाया मैंने अपने आप से? नहीं, शायद औरत दुखी है। दुखी औरतें न जाने मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है। सो कूल एंड सो डेंजरस। इसलिए कि तुम बड़े घामड़ शिकारी हो। लेकिन तुम, मेरा पिछला अनुभव तो ऐसा नहीं था। अनुभव तो आदमी के बदलते रहते हैं। सो तो है।
1: क्या सोच रहे हैं?
0: सोचना क्या है, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि आपने लोमड़ी की इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है दीवार पर। मध्यम रोशनी में इसकी आंखें चमक रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल में हवा तेज चल रही है और उसके जोर से लोमड़ी की भूरी दुम फूल रही है। लेकिन लोमड़ी क्यों? सच कहता हूँ, मैंने पहले कभी किसी के ड्राइंग रूम में लोमड़ी की तस्वीर नहीं देखी।
1: अच्छा, क्या आपने बहुत से ड्राइंग रूम देखे हैं?
0: नहीं नहीं, बहुत तो नहीं नहीं नहीं, हाँ काफी।
1: ओह, दैट रिमाइंड्स मी, कॉफी का पानी।
0: क्या वो कुछ भाप रही है? माय गॉड, दिस

0: उसका चेहरा। हाय, उसके लिए तो मैं अंधेरे कुएं में भी कूद सकता हूँ।
1: बाहर फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने किचन से झांक कर देखा था।
0: अच्छा,
1: बाहर तो लॉन पानी में डूब गया है।
0: गॉड।
1: और सारी रोशनियाँ पानी में नहा रही
0: है
1: और चमक रहे हैं।
0: रोशनियाँ पानी में नहा रही है।
1: हाँ।
0: अच्छा आइडिया है।
1: मैं आइडिया की नहीं
0: जी,
1: एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ।
0: अनुभव, यू मीन अनुभव।
1: लीजिए कॉफी।
0: थैंक यू। लाइए।
1: पहली वाली से अच्छी बनी है ना?

0: मैं तो ब्लैक पीऊंगी, अपने लिए दूध खुद डाल लीजिए।
1: अरे दे दीजिए, मैं भी ब्लैक पी लूंगा।
0: अरे अभी तो आप दूध की पी रहे थे, फिर क्या हुआ?
1: वो बात ये है कि मैं नए नए अनुभव के लिए जीता हूँ।
0: और लोग किस लिए जीते हैं? जीवन तो खुद ही एक अनुभव है।
1: नहीं, ये बात मैंने फिलोसॉफिकल सेंस में नहीं कही थी।
0: माय फुट, फिलोसॉफिकल सेंस?
1: ये आप क्या कर रही हैं? मैंने इस तूफानी रात में आपको लिफ्ट दी, मैं तो ह्यूमन वैल्यू उसकी।
0: जी हाँ जी हाँ, बैठ जाइए। कॉफी इस तरह मत पीजिए जैसे कड़वे खून पी रहे हो।
1: आप तो कमाल करती है, यकायक आपके तेवर बदल रहे हैं। अरे मैं तो काफी को सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ।
0: Can we talk as two adults?
1: Adults? तो इतनी देर से हम और क्या कर रहे हैं? आखिर हम दो adults ही तो हैं।
0: अकेले? अकेले औरत के साथ? अकेले घर में? और क्या चाहिए अब आपको? अब आपको लोमड़ी की तस्वीर कैसी लग रही है?
1: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको और पास से देख लू, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आई फाइंड इट इररेसिस्टिबल। ओह गॉश, व्हाट अ लवली एनिमल।
0: एंड सो वाइल्ड।
1: ये तो जंगली जानवर है। देखिए, आपको अपने पास आदमी जंगली नजर नहीं आते? दोषते रहते हैं एक दूसरे को।
0: जगदीप जी, छोड़िए सब, आइए काम की बात करें। क्या आपने कभी थिएटर में काम किया है?
1: थिएटर और मैं? यू मीन मैं और थिएटर? ये ख्याल कैसे हुआ आपको?
0: मैंने आपको हमेशा थिएटर का आदमी जाना।
1: हमेशा थिएटर? क्यों बना?
0: अपनी सूरत रात भर वो इसी तरह ललक ललक कर आते रहेंगे, और जब मैं हाथ नहीं आऊंगी तो नाचते गाते लौट।
1: ये तो पागल कर रहा है।
0: अरे आप तो लोमड़ी की तरह उछल कर चढ़ गए सोफे पर। क्या क्या मैं आपको खा जाऊंगी?
1: ये आप कैसे कर सकती है? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकती। आप तो वेजिटेरियन
0: है।
1: किसी ने नहीं, मैं तो सिर्फ गेस कर रहा था।
0: अब गेस कीजिए, क्या होने वाला है?
1: क्या होने वाला?
0: आई एम गोइंग टू इट। लेकिन एक बात बताइए
1: जी,
0: आपका एड्स टेस्ट हुआ है?
1: What do you mean? ये तो सरासर जुल्म है। मैं और एड्स, ये आपको कैसे शक हुआ?
0: आप अपनी सूरत तो देखिए, यकीन हो जाएगा। इतनी रात गई? बस ठीक है, रहो सोफे पर, पहले फोन सुनकर अभी आती हूँ, फिर समझती हूँ आपसे।
1: यार चाहते तुम कहाँ फंस गए? ये औरत तो पगली पगली, और इसके पड़ोसी भी, और पीछा करो बच्चों अनजाने शिकार का। दुखी औरत का उदास चेहरा, भीगी भीगी सी आगे।
2: हेलो हेलो, जरा जोर से बोलो। हाय संजू।
1: और भागो रेत की लहरों के पीछे। ओ गॉड,
2: ओफो, अरे तुम सुबह क्यों रही हो भाई? क्या हुआ? हिस्ट्री बंद करो और बताओ क्या हुआ।
3: इतनी सख्ती से मत बात करो मुझसे, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी चाहिए। तुम किसी तरह आ जाओ मेरे पास मंजू।
2: संजू दीदी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?

0: निकलना ही नहीं चाहती इस घर से, तो कैसे निकलोगी? तुम 50 की हो, 15-16 की नहीं। जिस दिन तुम ये जता दोगी अपने आप पर, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई तुम्हारी खिड़कियों से नहीं झांक रहा बाबा, जो देख रही हो वो परछाइयां हैं, लोग नहीं। तुम खुद अपने आप को पागल बना रही हो।
1: अरे तुम तो बिल्कुल छूट नहीं पड़ गई मेरे पीछे, तुम्हारी रड़ी रड़ाई बातें मैं कब तक सुनूं?
0: ओफो दीदी सुनो, मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे सुनो।
1: नहीं तुम मेरी सुनो, आज आज मेरी सारी खिड़कियां खुली छोड़ दी है, दरवाजे भी, किसी ने आकर मुझे नहीं डराया। मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली के तार टूट गए हैं, कॉलोनी के न जाने कितने पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, बिजली चमकती है तो दीवार पर थमोदर दिखाई देता है, और वही जो तुमने मुझे दिया था। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरे दरवाजा खुला छोड़ दिया है, तेज हवा आ रही है और
0: हेलो हेलो। हाँ अरे संजू, ये क्या हुआ, तुम चीखी क्यों थी?
1: कोई आ गया था कोई दरवाजे से, मुझे ऐसा लगा अभी पिछली चमकी तो मैंने देखा कबूतर अपने फ्रेम में है, वो देखो तैयार।
0: संजू संजू मेरी प्यारी बहन, जाओ जाकर सो जाओ, जागती रहोगी तो डरोगी, सो जाओगी तो डर भी सो जाएगा। अच्छा बाय बाय।
1: बाय बाय
2: बेचारी पगली।
3: अच्छा तो ये आपकी बहन थी?
2: कौन आपकी बहन थी?
3: वही जिनसे आपने बात की। बहुत दुखी मालूम होती है आपकी बहन, बेचारी।
2: जगदीप साहब मैं आपको कच्चा खा जाऊंगी। यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, आप इतने फैमिलियर कब से हो गए? हम तो बिल्कुल अनजाने हैं ना, बस थिएटर के बाहर इत्तेफाक से मिल गई बारिश में। रात पर बारिश और मैं अकेली, आपका दिल पसीज गया और आपने जान पर खेलकर मुझे लिफ्ट दी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल की आखिरी बूंद पर जिंदगी का कितना लंबा सफर तय हो गया, इससे भी ज्यादा तय हो सकता था, पर ये मेरे खिलंडड़े मनमौजी पड़ोसी आपके सपनों पर टूट पड़े हैं ना। और मैं जानती हूँ आपकी कार में अब भी इतना पेट्रोल है कि शहर के दूसरे सिरे पर आसानी से पहुंच सकते हैं आप।
3: शहर के दूसरे सिरे पर क्या है?
2: सिमेट्री कब्रिस्तान।
3: नो प्लीज नो नो नो, मुझे रात को कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है।
2: अच्छा, और किसी अकेली औरत के ड्राइंग रूम से? और आपने ये क्यों कहा, बहुत दुखी मालूम होती है आपकी बहन?
3: वो बात यह है कि जब आप फोन पर बात कर रही थी तो आपके चेहरे पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा था।
2: बड़ा आया कहीं का शिकारी
3: जी? हाँ? क्या कहा शिकारी? मैं सब देख रहा हूँ, लुमड़ी फ्रेम में है। नहीं, लुमड़ी सोवे पर है। लुमड़ी नहीं, ये तो बंदर है, मंजूस मंकी।
2: अरे आज ये लोग एलिमेंट्स में है।
3: वो लोग मुझे मंजू का बंदर कह रहे हैं और आप उनका दिल बहा रही हैं। देखिए मंजू जी, आधी रात कब की ढल चुकी, शायद अब पानी नहीं बरस रहा, मैं जा सकता हूँ।
2: जगदीप साहब आप बहुत डरपोक हैं। हाँ? कौन है दरवाजे पर, कौन है?
4: मैं हूँ जहर, द किंग ऑफ हिप्नोटिज्म, आई एम द किंग।
2: वही लंबे बालों वाला गिटारिस्ट?
4: यस, आई एम द किंग।
2: अच्छा अच्छा, मगर इतनी रात गए क्यों?
4: रात भाई, अब तो रात कब की हुई चुकी, अब तो हमारे यहाँ भी म्यूजिक रात का ढेर है, आप दरवाजे क्यों नहीं खोलती मिस मंजू?
2: जाओ भाई जाओ, मैं भी थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। जाओ, तुम्हारा गीत कल सुनूंगी सुबह को, कल तो वीकेंड है ना।

0: came on duty. Okay. I'm walking back to the hell.
1: अरे अरे जगदीश साहब, मेरे पाँव पकड़ने की क्या जरूरत है?
2: आपके पाँव, आपके पाँव कितने कोमल है। देखिए कुछ और मत समझिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
1: जगदीप, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, क्या हम दोनों एडल्ट्स की तरह बात नहीं कर सकते?
2: वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जरूर कर सकते, जरूर कर सकते।
1: तो फिर ये आपने ड्रामा क्यों किया?
2: ड्रामा? कैसा ड्रामा भाई? मैं तो इतना भी नहीं जानता कि ड्रामे में टाइमिंग नाम की क्या चीज होती है।
1: आप जिगर थाम कर बैठिए और सुनिए। ड्रामा ये है कि आप अनजानेपन का ड्रामा एक जमाने से खेल रहे हैं।
2: मैं
1: ठीक वक्त से आपकी गाड़ी मेरी चार्टर्ड बस के अड्डे पर पहुंच जाती है हर दिन इसी वक्त, फिर आपकी गाड़ी चार्टर्ड बस के साथ साथ चलती है। जहाँ रुकती है वहीं आप भी रुकते हैं। जब मैं यहाँ गेट पर उतरती हूँ तो आप मुझे देखते रहते हैं। जब ऊपर पहुँचकर अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो आपकी गाड़ी गेट पर खड़ी होती है, और जब मैं घर की सारी रोशनियाँ बुझा देती हूँ तो आप खिसक जाते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो मैं रोशनियाँ फिर जला देती हूँ। क्या हम बिल्कुल अनजाने हैं अजनबी? जगदीप साहब, आप सांप क्यों सूंघे?
2: सांप? कैसा सांप? कौन सा सांप?
1: आप जितने काइयां बनते हैं उतने हैं नहीं। आपने आज थिएटर के गेट पर जो ड्रामा खेला था,
2: कौन सा?
1: और जिस तरह आपने मुझे शीशे में उतारने की कोशिश की, उसमें कितनी सच्चाई है? सचमुच आपकी कार में पेट्रोल नहीं है?
2: देखिए, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं इसी बारिश में बाहर चला जाता हूँ। जाता हूँ, मगर
1: मगर क्या?
2: वो बाहर वो जो होंगे गिटार वाले,
1: तो क्या हुआ?
2: और जो वो मेरे पीछे पड़ गए
1: तो आप भी नहीं, सभी मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हैं।
2: क्या?
1: लोमड़ी की तरह आते हैं और शिकार करके चले जाते हैं।
2: तो क्या आप शिकार हो चुकी है
1: जगदीप साहब? जानते हैं मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन क्रूर लोगों को नहीं झेल सकते हैं, और आप बहुत ही क्रूर किस्म के जानवर हैं।
2: मजू जी, ये आपने क्या किया? आपने बाहर का दरवाजा क्यों खोल दिया? मंजू जी, अब मुझे बताइए, मुझे बताइए, इन लोगों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। मंजू जी,
1: अब आप घेरे को तोड़कर जा सकते हैं।
3: इस लोमड़ी को तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, यहाँ ये रहता है, वहाँ मैं भी रहता हूँ,
4: और मैं जानता हूँ,
3: जानता हूँ इसके
1: खेलना नहीं चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग इससे यहाँ खेलो। इसको तुम लोग अपने फ्लैट में ले जाओ।
3: चलिए लोग हमारे
1: पास लोगों की तफरी है, क्रेजी इंजॉयमेंट, और अब सन्नाटा है। मेरा दिल धड़कना भूल चुका है। अब इसी तरह सुबह हो जाएगी, और तब हर सुबह की तरह मैं अपने आप से कहूंगी, कोई भी औरत अपने अकेलेपन में इतनी अकेली नहीं होती जितनी वो दिखाई देती है, बेसहारा और कसूरवार।

ना चाहो जो आंख लग जाए और ये सब धूप से धुल जाए। अब यहां कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं।

अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, खुशी वाडे। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राधा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र छाबड़ा। बुल्दाना महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं राजू माथे। अश्विनी चुग ने हमें पैगाम भेजा है और इनके साथ हैं आशु चुग और गोविंद चुग, पंचकुला सेक्टर 9 से। दबीरुल हसन, भुवन प्रकाश गौतम, शबनम अनवार, अमीर खुसरो रोड, गंज डुंडवारा से। अगला नगमा आप सबकी समातों की नजर, फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज लता मंगेशकर की है और मौसिकी शंकर जयकिशन की। फरमाइश भेजी है इस नगमे की मोटाला महाराष्ट्र से राज सरकटे, मिलन सरकटे और इनके साथ ही। मीर हसन निंदवानी, यार मोहम्मद खान निंदवानी, साकिब हसन निंदवानी, तंगवानी से। नेहरू चौक पैटर्न से डॉ सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। के संजीव डाबेराव, डॉ रसिका डाबेराव, डॉ कौस्तुभ डाबेराव, विदर्भ से ये शामिल हुए थे। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम। किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीड़ शहर से। रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन, किशनगंज बिहार से। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी। सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन सोनार, कुसुम और सरोज सोनार। चमनपुरा उदयपुर से सबीहा खानम, फरीदा खानम, फरीदा शबनम, रईसा खातून। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा।

नवा फिल्म कश्मीर की कली से है, आवाज आशा और रफी की है और मौसीकी तरतीब दी है ओपी नैयर ने। फरमाइश है बुल्दाना वर्चिंगी महाराष्ट्र से, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू कटीला से। मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री छिपा कॉलोनी खंडवा से। हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, प्रतीक्षा संधु। पटियाला से मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, हार्दिक बट्टा। अहमद भाई फूलवाले, जूही इकबाल फूलवाले और शमीम अहमद रईन, ये शामिल हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से। नरोत्तम गौर, हिमांशु गौर, यश गौर और इनके साथी लेक सिटी उदयपुर से। एम असलम सैफी, जाहिद अली सैफी, आबाद खान, बलराम गेट कासगंज से। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमल अनेजा। दिनकर सालवे, गंगा सालवे, रंजीत थोरात, शुगर फैक्ट्री गेवराई से। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, फजल।

पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, अर्जू जजोरिया। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रदान खुराना। दिल्ली यमुना विहार से अफसाना खातून, डोनट बापू और हेमा रानी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समरप्रीत पंचोलिया। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमर राज और दिव्या भारती। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सितारा परवीन और असमानास अंसारी। तो आप सबकी फरमाइश पर लीजिए ये नगमा।

स्थानीय निगम की फरमाइश में भेजी है। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से आलिम पटेल मुजाहिद पटेल नदीम पटेल ने। गुलनाज बेगम हाशमी सैयद आलम हाशमी मोहम्मद आलम हाशमी अजमेर शरीफ राजस्थान से। सिद्धार्थ अर्चना ताई और प्रणय और इनके साथी ये हैं राहुल नगर अमरावती से। कैलाश फूलमाली दीपक फूलमाली और वेदिका फूलमाली अहमदपुर खेगांव खंडवा से। सुरेश नारंग आशु नारंग सहारनपुर से। उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत की सुतासु पाखुड़ झारखंड से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी और गीतिका भानु। मिंटू टोमस पिंकी अरोड़ा पंजाब से शामिल हुए हैं। किशन सपकाल आशा सपकाल और साईराज सपकाल सोनिया सपकाल शास्त्री नगर बीर शहर से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से शामिल हुए हैं। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओंकार गायकवाड़। टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। अल्तमश समीना और हसन लाला जुमा नगर खंडवा से। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा निवान शर्मा। यूनुस खत्री और इनके साथ हैं शबनम और अकरम ये हैं ठीकरी मध्य प्रदेश से। खाजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद नजीब खान अशरफ खान। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप और इनके साथी लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अच्छा आपका रिपीट मैसेज है, बार बार मैसेज मत भेजिए और लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी द्रीस मुल्ला जी ये हैं कर्नाटका से। रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो अलीजा नायाब और इनके साथी। विजय सरलकर रतनमाला आरती और इनके साथ हैं इनके हलेखाना मोताला महाराष्ट्र से।

मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर जी, आपका शामिल हो चुका है, बार बार मैसेज मत भेजिए। नासिर शेख और इनके साथ हैं नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा फिल्म ताजमहल से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

माफ कीजिएगा, ये नगमा मैं आपको सुनवा चुकी हूँ। अगला नगमा जो आपको सुनवाने जा रहे हैं, दिल एक मंदिर फिल्म से है, रफी मोहम्मद रफी की आवाज है, शंकर जयकिशन का की मौसिकी है। लीजिए सुनिए ये नगमा।

मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार, ताज मंजिल, लक्कड़ बाजार खंडवा से। मुल्लापुर दाखा से आपका शामिल हो चुका है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, गांव भरासी हिसार से। बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, झज्जर हरियाणा से। अहमद नगर महाराष्ट्र से मोहम्मद नसीरुल हुसैन पटेल, अमीना पटेल। फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकरम, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, बंगाली पंजा से। नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन और साथी नालापारा बाग छोटे साहब रामपुर से।

सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव से। पटियाली रोड गंजुनवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा हबीबा। आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिका अली खान, कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत यूपी से शामिल हुए हैं। इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉ मोहम्मद आसिफ रजा झारखंड गिरिडीह से शामिल हुए हैं। अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर। शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली तामराम चेन्नई से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ये शामिल हुए हैं। सुधीर नूतन ने शमूलियत की है मॉडल टाउन करनाल से। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत हुजरे सांगली जिले जिला जत शहर से। तो आप सबकी फरमाइश पर अगला नगमा फिल्म चोरी चोरी से है। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं और मौसिकी शंकर जयकिशन की।

सुभाष योगी राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू कृष्ण कॉलोनी हांसी से, कलावती सोनी प्रथम सोनी प्रवीण सोनी गुजरात गांधी ग्राम से, जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा केथल हरियाणा से, बसंत सिंह चंद राजकुमार कुलदीप गांधी अलीका डाबवली से, के झा राजेश सांभले पाटिल जी ये शामिल हुए हैं मधुबनी बिहार से, मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी और इनके साथी कॉलोनी नांगली डेरी नजफगढ़ से, हरेन पांड्या नरेन पांड्या भूषण पांड्या गुवाहाटी असम से,

फैज खत्री, अफसाना हुरैन और इनके साथी गायत्री कॉलोनी खंडवा से। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन। श्रीमती सरोज चौरसिया और सुरेश चौरसिया फारूकाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अंसारी, फैजल अलीम अन सिद्दीकी पश्चिम थोक गंज डुंडवारा से। सुहेल अहमद शाहजेब खांडकोट से। मनोज जेठवा, आशा जेठवा बोराव के नगर श्रीरामपुर से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर आज के तामिल इरशाद प्रोग्राम का यह आखिरी नगमा।

इसके साथ ही आज का तामिल इरशाद प्रोग्राम बस यहीं पर खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर।

दरअसल बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। सिंगापुर ने उन सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगा दी जिनमें भारतीय बिरादरी को निशाना बनाया गया था। गोवा में भारत ने बांग्लादेश को हराकर खवातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप रिकॉर्ड छठी मरतबा जीती है और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में पाबंदियों की धमकी के जरिए भारत के इख्तदार आला को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का उल्टा असर होगा। सेंट पीटर्सबर्ग में बैन अवी इकतसादी फोरम के मौके पर सरकर्दा आलमी खबर एजेंसियों के सरबराहों से गुफ्तगू करते हुए सदर पुतिन ने भारत के आजादाना फैसला साजी के अमल और मुल्क के मफादात का तहफ़ करने के उसके अहद को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा गैर मुल्की दबाव के कतः नजर खुद अपने मफादात की बुनियाद पर ही फैसले किए हैं। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज के तालमेल के साथ फजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आमनाए हुरमुस के नजदीक ईरान की साहली निगरा और राडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइल को बीच में ही रोक दिया गया जबकि 7 पर मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मॉरिशस ने उन गैर मुल्की शहरियों पर आर्जी तौर पर सफल पाबंदी नाफिज कर दी जिन्होंने गुज़श्ता 21 रोज के दौरान कांगो युगांडा और जनूबी सूडान का सफर किया है वहां से होकर गुजरे हैं या वहां कयाम किया है। ऐसा इबोला वायरस के हालिया मामला के सिलसिले में किया गया है। मॉरिशस के शहरियों और गैर मुल्कियों को जिनके पास काम करने रिहायश कारोबार या तालिबे इल्म की हैसियत तरदीशुदा इजाजत नामा है उन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी लेकिन अगर पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने इन मुल्कों से किसी भी मुल्क का दौरा किया तो उन्हें लाजमी तौर पर 21 दिन तक क्वारंटीना में रहना होगा। भारत अमेरिका फौज ने फौजी अमले के दरमियान 29वीं बातचीत हुई है जिसकी मुश्तरका तौर पर सदारत हिकमत अमली से मुतालिक फौजी अमले के नायब सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमरीकी फौज बहरे एलकाइल के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल रावेल ने की। इस्तेमाल ख्याल में बाहमी दिफाई इश्तराक कार्रवाई करने के एक दूसरे की सलाहियत में इजाफा पेशावराना तबादलों की वसूल देने और मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात के सिलसिले में फौजी इश्तराक को मुस्तकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। यूक्रेन के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों में कल रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर ही रहने को कहा गया। इस हमले से बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने मनसब से मुलाकात की पेशकश को नामंजूर कर दिया था। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खिदमत में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबी भी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपने तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुतसिल इलाकों में सिक्योरिटी बरकरार रखने के करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। कल नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खाजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायत की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है। नेपाल भारत को अवलीन तरजीह देता है। उन्होंने भी कहा कि नेपाल और भारत में दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार

0: पर राग यमन पंडित बलराम पाठक से क्लासिकी मौसीकी के तहत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम आखिरी शब। आखिरी शब प्रोग्राम के साथ हिना मौज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। ये पहला नगमा मुकेश और गीता रॉय की आवाजों में।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है। जैसे मैं कहती हूँ

रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में पाबंदियों की धमकी के जरिए भारत के इख्तदार आला को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का उल्टा असर होगा। सेंट पीटर्सबर्ग में बैन अवी इकतदी फोरम के मौके पर सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों से गुफ्तगू करते हुए सदर पुतिन ने भारत के आजादाना फैसला साजी के अमल और मुल्क के मफादात का तहफ़ करने के उसके अहद को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा गैर मुल्की दबाव के कत नजर खुद अपने मफादात की बुनियाद पर ही फैसले किए हैं। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के ताल्लुक बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका के मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुस के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और राडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मॉरिशस ने उन गैर मुल्की शहरियों पर आर्जी तौर पर सफरी पाबंदी नाफिज कर दी है जिन्होंने गुज़श्ता 21 रोज के दौरान कांगो, युगांडा, जुनूबी सूडान का सफर किया है, वहां से होकर गुजरे या वहां कयाम किया है। ऐसा इबोला वायरस के हालिया मामलों के सिलसिले में किया गया है। मॉरिशस के शहरियों और गैर मुल्कियों के जिनके पास काम करने, रिहायश, कारोबार या तालिबे इल्म की हैसियत तस्दीक शुदा इजाजतनामा है, उन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने इनमें से किसी भी मुल्क का दौरा किया है तो उन्हें लाजमी तौर पर 21 दिन तक क्वारंटीना में रहना होगा। भारत अमरीका फौज से फौजी अमले के दरमियान उलझती हुई बातचीत हुई, जिसकी मुश्तरका तौर पर सदारत हिकमत अमली से मुतालिक फौजी अमले के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमरीकी फौज बहरे उलकाइल के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो वॉबेल ने की। इस तबादले ख्याल में बाहमी दिफाई इश्तराक कार्रवाई करने के एक दूसरे की सलाहियत में इजाफे, पेशावराना तबादलों को वसत देने और मुश्तरक सिक्योरिटी मफादात के सिलसिले में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। यूक्रेन के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों में कल रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर ही रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर होती है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने मंसूब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खिदमत में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबी भी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपने तवील मुफीद एतबार से खुली सरहद से मुतसिल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के मुताबिक हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। कल नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी, मुश्तरक सकाफती और मजहबी रिवायत की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अवलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में ख्याल है कि चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों का निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। मरकज ने वजन से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत यकसानियत आ सकेगी। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मस्कुरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमू मकदार और पैकेट के मियारी साइज का तयन करने से मुतालिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक

0: विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशेर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting.

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन, कैसे
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया?
1: क्या हुआ?
2: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है।

0: कि वो फूलमती आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो, मैं बोलता हूँ।
2: फूलमती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

तब हा हा दैया गाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जग के मोहन मन में माये नित्य सरत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

है। तौबा तौबा ये जवानी, ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. Union Minister of State for Communications and Rural Development, Dr. Pemasani Chandrasekhar, yesterday inaugurated the Samriddhi Kendram at Narkoduru village in Andhra Pradesh, Guntur district, marking a major step towards rural digital transformation. The centre has been established under the central government's BharatNet Udyami initiative. With this, Narkoduru has become the third village in India and the first in Telugu states to host the integrated rural development model, built at a cost of 1.16 crore.

0: पलवा देंगे वरना पलवा अगर न होते आखा भरम तुम्हारा
1: आशिकी
0: आओगे मातम से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 3 बजने को है अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। NCP प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said, they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shakti Kant Das, also attended the meeting. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchand Singh attended the inaugural ceremony of two-day State Krishi Mela 2026 at the City Convention Centre in Imphal yesterday. Speaking on the occasion, the Chief Minister said, in line with the vision of Prime Minister Narendra Modi, greater emphasis should be placed on the use of organic fertilizers in place of chemical fertilizers and appealed all to reduce dependence on chemical fertilizers in agriculture. In a joint operation, the Border Security Force BSF and police recovered a large quantity of narcotics from the Raghna border area under Dharmnagar police station in Tripura yesterday. According to police headquarters, 9,427 Yaba tablets were found abandoned near the border fencing. The seized tablets are estimated to be worth around 50 lakh rupees in the illegal market. A case has been registered under the NDPS Act. An investigation is underway. Delhi police has refuted the claims circulating on social media and news reports regarding the registration of FIR against protesters at Jantar Mantar. In a statement, the police clarified that no FIR has been registered against the protesters. The police have urged citizens not to believe or share unverified information. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka and Kerala and Mahi today. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. The weather agency has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds very likely at isolated places over East Rajasthan and South Interior Karnataka for today. IMD said coastal Andhra Pradesh and Orissa are likely to experience heat wave conditions today. Russian authorities said Ukraine has launched an unprecedented attack on and around St. Petersburg as the city hosts the final day of Russia's annual economic forum. Governor Alexander Drozdyenko said more than 140 drones were shot down over the surrounding Leningrad region. He has urged residents to remain indoors for the first time since the war began more than 4 years ago. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said his country's drones had covered a distance of 1,000 kilometers to the St. Petersburg region, targeting the enemy navy's arsenals and a base in Kronstadt. Zelensky is expected to visit the UK today for talks with some of Ukraine's staunchest European allies, Prime Minister Sir Keir Starmer, German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron. An Israeli strike killed at least 7 Palestinians, including 2 women, in Gaza yesterday, health officials said, as mediators restarted talks in Cairo with Hamas and other factions over safeguarding a strained ceasefire agreement. Medics said 7 people were killed and 15 others, including children, were wounded when an Israeli airstrike targeted a large tent encampment in the heart of Gaza City. A ceasefire brokered by US President Donald Trump has failed to halt Israeli attacks and left Israel in control of more than half of the enclave. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलें। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज में गजल ए मोहब्बत।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी, और लीजिए अब पेश है राधिका चोपड़ा की आवाज में ये गजल दर्द उल्फत।

अरिजीत सिंह श्री घनश्याम वसवानी की आवाज में गजल मोहब्बत में दिखावे।

0: इसके साथ ही आज की गजलों का ये कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: 그럼 어쩌나 앞삼아 보다해.
1: 아카시와니 딜리카지 AIR 라이브 뉴스 24x7 चैनल है. रात्रि के 4:20 हुए हैं. लीजिए प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा. इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन. कलाकार हैं जी रघुरमन. आपने प्रस्तुत किया है रागम मध्यमवती. संगीतकार हैं श्री श्यामा शास्त्री. आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है एमबी चंद्रशेखर ने और वायलिन पर साथ दिया है वीएस आनंद ने. तो लीजिए प्रस्तुत है जी रघुरमन का बांसुरी पर बजाया रागम मध्यमवती.

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन। कलाकार थे डी रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया राग मध्यमती। संगीत दिया था श्री श्यामा शास्त्री ने। मृदंगम प्रसाद दिया था एम बी चंद्रशेखर ने और वायलिन प्रसाद दिया था वी एस आनंद ने।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। बैंडविड्थ 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आज शनिवार है, आज रविवार है। संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026 सुबह की 4:58 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: जीत श्री साहिब जी सहाय

दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे ताण नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कहो प्रसाद दी देग हाजर है दारो प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: नानका जोगल चले पा चौंकण मुलन आया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओम ओ चढ़ पया बेतगर गया महला पहला
1: लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख

वे तगा पे वते बढ़तांगे अवरा कते लहर कर कड़का गलत सेरा सुन वेखा लोका है बेडान मन अंदा ना उस जान पौड़ी साहिब।

पौड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे ता सही कार कराए सी। सो सेवक सेवा कर जिसनो हुक्म बनाए सी, हुक्म नहीं होवे प्रमाणता कसमे का महल पाए सी। कसमे पावे सो करे मरहोच दया सो फल पाए सी, ता दरगे पैदा जाए सी।

0: तेन घर ब्राह्मण पूरे नाद लाभे आवे अविसार कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरम धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे प्रभु
1: मथे टिक्का तेर धोती का खाई हथ छुरी जगत का सार नील वस्त्र पैरों में परवान।

ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣ ਲੈ।

0: जिन पट अंदर बाहर गुजरते पले संसार तिनने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग से रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाना ही किसे केरी बात सच ना दरवाट ऊपर सच मंगा जब देता खाए दीवाने को कर में कहा मैं तुम्हें मेल दर ले लेका पीड़ छुपे मान का जब तेल पौड़िया पे ही करना कियो
1: पौड़िया पे ही करना क्यों गल पे ही तै धारी है देख कीता अपना धड़क ची पक्की सारी है जो है सोचा उसी सब को आई बारी है जिसके जी प्राण है कि सह मनो सारी है अपन हथी अपना हाथ ही काज सवार।